0: स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने अभिषेक लोढ़ी द्वारा गाया राग नट भैरव सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुद्दुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त

0: रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस फॉर काउंटिंग ऑफ वोट्स टुडे फॉर द असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। द काउंटिंग विल बिगिन एट 8 दिस मॉर्निंग। Counting of postal ballots will be taken up first, and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 union territory. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu, and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st May and the counting will be held on 24th May. We have a report.
2: All arrangements have been made for today's counting and personnel have already entered the centres. Out of 294 seats, the counting of votes for 293 assembly constituencies will be held today. A three-layer security arrangement has been established at each counting centre with the deployment of district police, state police and central forces. A total of 200 companies of central forces have been deployed across the venues. Section 163 of the Bharatiya Nyay Suraksha Samhita has been enforced within 100 meters of the counting centers, and the commission has warned of strict action against any dereliction of duty during the process. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: Tamil Nadu recorded a historic and peaceful polling in all the 234 constituencies spread across all the 38 districts. Our correspondent has filed this report.
3: Today is the day to know the choice of the voters for 234 constituencies. It is also a day to find out whether the prediction of the exit polls as projected by various agencies, TV channels and individuals are true.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता मातृभाषा की शक्ति, आलेख डॉक्टर पूनम सिंह का। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। कवि केदारनाथ सिंह के शब्दों में कहूँ तो मातृभाषा घर आंगन अपने और अपनों के बीच लौट आने की भाषा है, अपने ही जड़ों में लौटने और परिवेश से जुड़ने की भाषा है। भाषा दुनिया का नायाब करिश्मा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के सुंदर स्वरूप का अंकन भाषा के बिना संभव नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा भाषाओं के उद्भव विकास की अनंत यात्राओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रही है। वहीं लोक परंपराएं, लोक संस्कृति जन जन से निर्मित लोक भाषा में अभिव्यक्त होती है। लोक के स्पंदन से बनी मातृभाषा हमारी समावेशी संस्कृति को ज्ञान के सहजतम रूप में अभिव्यक्त करती है। सही मायने में यह भारत देश के मस्तिष्क और मन की भाषा है। इन दोनों के बिना मनुष्यता की जय यात्रा अधूरी है। मातृभाषा माँ जैसी भाषा, जो ममता के सुंदर ध्वनियों से निर्मित, विश्वास के मजबूत धागे में पिरोए शब्दों से सजी आत्मीय भाषा है, क्योंकि आत्मीय होने की शर्त है विश्वसनीयता। यह विश्वास अकेले का नहीं, जन का है। यह लोक मत के अनुभव की कसौटी पर कसे हुए दहकते जीवन की आग में तपे हुए सच की शक्ति की भाषा है, जिसकी विश्वसनीयता के तकिए पर सिर टिकाए एक आम इंसान सबसे अधिक मुखर, लोकतांत्रिक और कल्पनाशील हो सकता है, और तो और सबसे अधिक मौलिक चिंतन कर सकता है। सूचनाओं की अतिव्याप्ति ने हमारी विचारणा शक्ति को कुंठित कर रखा है। मातृभाषाएं ही मौलिक चिंतन के द्वार खोल सकती हैं। यह शिक्षा अर्जित भाषा के मुकाबले ज्यादा

0: संप्रेष्य है। हमारे भक्त कवियों ने ज्ञान की सहज धारा प्रवाहित करने के लिए अपनी मातृभाषा को चुना। कबीर की दृष्टि में भाखा बहता नीर है, जिसमें अमूल्य विचार, संस्कार, चिंतन सदियों तक प्रवाहित होते रहते हैं। मातृभाषा ही भाषाई विविधता में फैली दुनिया भर की संस्कृतियों से परस्पर संवाद और सामंजस्य स्थापित कर सकती है, क्योंकि मातृभाषा मैं की नहीं, हम की भाषा है। कवि केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां इसका साक्ष्य हैं। लोकतंत्र के जन्म से बहुत पहले का एक जिंदा ध्वनि लोकतंत्र है यह, जिसके एक छोटे से हम में तुम सुन सकते हो करोड़ों मैं की धड़कने। मातृभाषा कृषि केंद्रित व्यवस्था की भाषा है, जहां किसान लुप्त होती कृषि व्यवस्था का ठेठ मुहावरा है, जो लोगों की भूख को अपनी सांसों से खींचता हुआ धरती पर अन्न बोता हुआ हमें तृप्त करता है, इसीलिए वह अन्नदाता है। आदिवासी और श्रम आधारित समुदाय संस्कृति का ज्ञान विज्ञान मातृभाषा की शक्ति में निहित है। मातृभाषाएं हमारी भाषाओं की आत्मा है, जिनका विश्वास आज भी त्याग मूलक समता आधारित संस्कृति पर अडिग है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों का पोषण मातृभाषाओं में ही निहित है। वैश्वीकरण और सूचना क्रांति ने समूचे विश्व में एक जैसी संस्कृति की व्यवस्था दी है। भाषाई विविधताओं ने सांस्कृतिक विविधताओं को खूबसूरत रंग दिए हैं। यह अपने मौलिक चिंतन अन्वेषण से प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किए बिना भी विकास की नई अवधारणाएं रच सकती है। यही कारण है कि मातृभाषा की शक्ति असीम है।
1: श्रोताओं अभी सुन रहे थे चिंतन मातृभाषा की शक्ति। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 45।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेंढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदर पूर्वक श्रद्धा नथ हो पति के वचन सुनने लगी।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का बाल कांड का भाग 45 सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 7 बजने को हैं, 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता असम पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः। मतगणना प्रातः 8 वादने प्रारप्स्यते। प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति, तथा वैद्युतिकी मतदान यन्त्राणां गणना प्रातः 8:30 प्रारप्स्यते। असमराज्ये 26 अधिकैकासनेभ्यः, केरलम राज्ये 44 अधिकैकासनेभ्यः, तमिलनाडु राज्ये 34 अधिक 200 आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र 30 विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिम बंगाले 93 अधिक 200 आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मई मासस्य 21 दिनांके भविष्यति, तत्रैव मतगणना च मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: भारतीयान्तरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्यामेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेसएक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणं कृतम्। 90 अधिकैक किलोग्राम मिता मिशन दृष्टिः नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मितः बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रहः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फालता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के

0: प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सआई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st of May and the counting will be held on 24th May. We have a report.
2: All arrangements have been made for today's counting and personnel have already entered the centres. Out of 294 seats, the counting of votes for 293 assembly constituencies will be held today. A three-layer security arrangement has been established at each counting centre with the deployment of district police, state police and central forces. And the commission has warned of strict action against any dereliction of duty during the process. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: Tamil Nadu recorded a historic and peaceful polling in all the 234 constituencies spread across 38 districts. Our correspondent has filed this report.
3: Today is the day to know the choice of the voters for 234 constituencies. It is also a day to find out whether the prediction of the exit polls as projected by various agencies, TV channels and individuals are true. As people are likely to gather around counting centres, state and paramilitary personnel have been posted outside the centres to strengthen security and divert traffic accordingly. The counting will begin with postal ballots and then the EVMs. With Sushil Tiwari, Joy, reporting for Akashwani from Chennai.
4: Janadesh 2026.
5: Special program on results of assembly elections in Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
4: Today, the 4th of May 2026.
5: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
4: For in-depth analysis.

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियों में मैं किरण आपका स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए। तो श्रोताओं, अपने विचार सुझाव बताने के लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। श्रोताओं, कहा जाता है कि बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है, पर कई बार ये होता है कि जिसे असली घर बताया जाता है यानी कि ससुराल, वहाँ हर पल बहू को बेगाना समझा जाता है। और कई बार तो ससुराल वाले बहू को बेटी तो क्या, बहू का भी सम्मान नहीं देते। बहुत सी बार देखा गया है कि ससुराल में बहू को कोई हक नहीं होता कि वह खुलकर सांस ले सके, अपनी इच्छा से कुछ कर सके। हर छोटी बड़ी बात के लिए ससुराल वालों की आज्ञा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हो रहा है हमारे आज के इस नाटक में।

0: अरे बहू, दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दे रही क्या?
1: मम्मी जी, मेरे हाथ आटे में सने हैं, आप खोल दो प्लीज।
0: अरे तो हाथ धो लेना, 24 घंटे पानी आता है हमारे घर में।
1: अच्छा ठीक है, खोलती हूँ।
2: अरे कितनी देर हो गई, घंटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या?
0: अरे आपकी लाडली बहू, दरवाजा खोले तब ना।
2: क्यों, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है क्या?
0: अरे अगर बहू खोले तो उसमें क्या बुराई है, सास हूँ मैं उसकी।
2: तो सास दरवाजा नहीं खोल सकती, चाहे दरवाजे पे किसी का दम निकल जाए?
0: हाँ हाँ, आप तो बस हर समय मुझे बातें सुनाने के लिए तैयार रहते हो, और तो किसी पर बस नहीं चलता।
2: तुम काम ही ऐसा करती हो।
0: इस घर में तो कोई मुझे आराम से पेपर भी नहीं पढ़ने देता।
2: नहीं नहीं, तुम पेपर पढ़ो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ।
1: पापा जी चाय।
2: अरे बहू, तुम मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे दो, वहीं पी लूंगा।
1: जी ठीक है पापा जी।
3: अरे अरे छोटी मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं?
1: एक कबाड़ यहाँ से हटा रही हूँ काका।
3: नहीं नहीं, इसको मत छेड़िए, अगर बड़ी मालकिन ने देख लिया ना, पूरा घर सर पर उठा लेंगी।
1: क्यों?
0: अरे ये गोपी कहाँ मर गया? गोपी, ओ गोपी।
3: आया मालकिन, आप कोई सामान मत छेड़िए, सब ऐसा ही रहने देना बेटा।
2: आज क्या बनाया है खाने में?
0: मुझसे क्या पूछ रहे हो, बहू से पूछो।
2: अरे भाई, तुम्हारे ऑर्डर के बिना तो घर में हवा भी नहीं घिसक सकती।
4: माँ आज फिर ये खिचड़ी।
2: ओहो
0: क्यों, खिचड़ी में क्या बुराई है, रात के समय हल्का खाना ही ठीक रहता है।
2: खिचड़ी कभी कभी ही अच्छी लगती है, रोज रोज कौन खाता है ऐसा खाना।
0: तुम लोगों की सेहत का ध्यान रखना भी एक गुनाह है यहाँ पर।
2: सेहत नहीं, बचत कहो बचत।
0: तुम कहना क्या चाहते हो, क्या ये सब मैं अपने लिए करती हूँ? अगर मैं बचत ना करूँ ना, तो तुम बाप बेटा सब उड़ा दो।
4: कोई बात नहीं पापा, खा लो अब।
2: क्या खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा।
0: अच्छा अच्छा, ये नाटक बहू को करके दिखा रहे हो?
2: मैं नहीं, तुम तमाशा दिखा रही हो। जब अलमारी में रखी मिठाई में और नमकीन में कीड़े लग जाएंगे ना, तब भी बहू तमाशा देखेगी।
3: बिटिया अंधेरा हो गया है, अंदर जाकर पढ़ लो, अंधेरे में पढ़ोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी।
1: काका अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी देर और यहीं बैठूंगी।
3: अच्छा अब समझ में आया ना इस घर का माहौल?
1: हाँ काका, समझ में तो आ गया।
0: गोपी, ओ गोपी।
3: आया मालकिन।
2: अरे बहू, यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी हो?
1: पापा जी मैं अकेली कहाँ हूँ, ये सारे पेड़ पौधे हैं ना मेरे साथ, इनसे मन बहला रही हूँ।
2: अरे वाह बेटा, एक तुम हो जो इन पेड़ पौधों को भी जीवित समझती हो, और एक तुम्हारी सास है जो जिंदा इंसानों को भी मुर्दा समझती है।
4: अरे रमा, आज चाय तुम यहीं ले आओ, मैं और पापा यहीं बैठकर चाय पियेंगे।
1: जी ठीक है, अभी लाती हूँ।
2: सुधीर बेटा, मैंने जो तुम्हारी माँ से शादी की है, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता, पर तुम बहू को लेकर यहाँ से चले जाओ।
4: ये क्या कह रहे हैं पापा आप?
2: बेटा अगर जीवन में तुम्हें सुख और शांति चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, इस घर में तुम्हें कड़वाहट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
4: पापा ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा।
2: अरे मैं तो तुम दोनों को इस नरक से निकालकर दुनिया में रहने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ सारा दिन बहू के पीछे लगी रहती है, वो तो इसे नौकरानी बनाकर छोड़ेगी, पता नहीं बहू हमारे बारे में क्या सोचती होगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो तुम्हारी माँ की आदतों के बारे में अपने घर वालों को और बाहर वालों को बताएगी, तब क्या होगा।
4: नहीं पापा, मैं रमा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत समझदार है, देखा नहीं माँ की हर बात का कितना शांति और प्रेम से जवाब देती है।
2: हाँ बेटा वो तो है।
1: माँ जी वो जो कबाड़ रखा है उसे उठाकर गैरेज के कोने में रख दूँ?
0: खबरदार उस सामान को छुआ तो, तुम्हें क्या पता घर कैसे चलता है और कैसे बनता है।
1: अरे माँ जी मुझे मालूम है आपने इस घर को कितनी मेहनत से खड़ा किया है, पैसे तो कितनों के पास होते हैं पर सब सिर्फ दिखावा करते हैं।

0: पर आपने पैसों की कीमत समझी भी है और उन्हें संभाला भी है। और हाँ माँ जी, ये सामान बारिश और धूप में खराब ना हो जाए इसलिए गैराज में रखने के लिए कह रही थी। चलिए काका, ये सामान लेकर चलिए, ये डिब्बा मैं लेकर आती हूँ।
1: ठीक है बिटिया।
2: क्या समझती है ये, मेरी चापलूसी करके, मीठी मीठी बातें करके ये चाबियां हथिया लेगी, पर उसे पता नहीं ये चाबियां मैं उसे कभी नहीं देने वाली।
0: मौसी जी नमस्ते, आइए। माँ जी, माँ जी देखिए कौन आया है।
2: अरे शशि, तू अचानक से, आजा बैठ और सुना, सब ठीक तो है ना? यूं अचानक कैसे आना हुआ?
3: बस मन कर रहा था आपसे मिलने का, इसलिए चली आई। अरे दीदी, आपका घर तो बड़ा चमक रहा है, साफ सुथरा किसने किया ये सब?
2: अरे ये सब सुधीर की बीवी ने किया है।
3: वाह दीदी, आपकी बहू कितनी अच्छी है, घर से बाहर तक कितनी सफाई कर रखी है।
2: बस बस, ज्यादा तारीफ मत कर, वो तो मुझे खुश करने के लिए ये सब करती है, ताकि ये चाबियां मैं उसे दे दूं।
3: अरे नहीं दीदी, आपकी बहू तो सचमुच में बहुत समझदार है।
0: मम्मी जी, चाय तो बन गई है, नाश्ते के लिए क्या लाऊं?
2: नाश्ते के लिए देखो, शशि मीठा तो खाती नहीं है, तो ऐसा करो अलमारी में से कुछ नमकीन ले आओ।
0: जी, और वो चाबी?
2: हाँ हाँ, ये लो चाबी।
3: दीदी, खाने का सामान ताले में रखने की आपकी आदत अभी तक गई नहीं।
2: अरे तुझे क्या पता, अगर मैं ध्यान ना रखूँ ना तो ये लोग सारा घर ही लुटा दें।
0: मम्मी जी, नमकीन तो खराब हो गई है और मिठाई में भी कीड़े लग गए हैं।
2: क्या? ओहो, अच्छा जा, अब ऐसा कर, शशि के लिए कुछ पकौड़े बना के ले आ।
0: जी ठीक है। मम्मी जी, ये लीजिए पकौड़े, आप लोग खाना शुरू करो, मैं और बना कर लाती हूँ।
3: दीदी, आपकी बहू सचमुच बहुत अच्छी है, इस तरह कड़ा रुख अपनाकर उसे अपने से दूर मत करो। आप भी वही गलती कर रही हो जो मैंने की, और अब देख लो, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर दूसरे देश में जाकर बैठ गए।
2: हाँ शशि, कह तो तू ठीक ही रही है।
3: हाँ दीदी, रमा आपके घर की खुशी है, उसे सीने से लगा कर रखो।
0: मम्मी जी, मौसी, ये क्या, आप लोगों ने तो अभी तक पकोड़े खाए ही नहीं, और मैं तो और बनाकर ले आई।
2: हाँ भाई खाएंगे, पर तुम्हारे साथ बैठकर, आ जाओ हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे।
4: अरे भाई, मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतना बड़ा परिवर्तन।
3: जीजा जी, ये तो आपकी बहू का कमाल है।

श्रोताओं, ससुराल में बहू सबकी इच्छाओं का ख्याल रखती है, सबका मान सम्मान करती है, पर बहू को पूरा सम्मान नहीं मिल पाता। बात बात पर ताने सुनने को मिलते हैं। अगर गलती हो जाए तो बस माँ ने कुछ नहीं सिखाया कहकर ताने मारे जाते हैं। हर काम ससुराल वालों की मर्जी से करें, यहाँ तक कि ससुराल वालों की मर्जी के बिना अपने माँ बाप और भाई बहनों से भी नहीं मिल सकती। इस विषय पर हम जानना चाहते हैं आपके विचार। तो श्रोताओं, अपने विचार सुझाव बताने के लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। और यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता भी नोट कर लें। पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। पता एक बार फिर से बता दूं, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। अब मुझे यानी किरण को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। कलाकार हैं पद्मजा चक्रवर्ती। इनसे सुनते हैं भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप पद्मजा चक्रवर्ती से भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 7:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा, और मैं हूं आपकी दोस्त कुसुम। आप सभी के लिए लेके आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।
1: बिल्कुल दोस्तों, और कुसुम देख रहे हैं आजकल हम कि मौसम का मिजाज कब बदल जाता है पता ही नहीं लगता। कभी बारिश है तो कभी एकदम तेज धूप हो जाती है।
0: मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना अर्चना कि लोग कितने परेशान थे, लेकिन
1: बिल्कुल
0: आज देखिए, कल से ही, आज क्या, कल रात से ही मौसम इतना सुहाना हो गया है, मौसम बदल गया है और एक हल्की सी
1: सही में
0: ठंडक सी है, मौसम काफी अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल कुसुम। और इस पर मुझे एक थोड़ा सा शेर याद आ रहा है। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था।
0: बिल्कुल, बहुत खूब अर्चना। जैसे ना कहते हैं कि आज का मौसम भी जैसे कोई दुआ बनकर आया है, ठंडी
1: बिल्कुल
0: हवाओं में सुकून का संदेश बिखरा है, बादलों की चादर और मिट्टी की खुशबू कह रही है, जिंदगी की भागदौड़ में भी प्रकृति ने हमें प्यार से पुकारा है। तो बातें बहुत सारी करेंगे हम,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अभी कुछ एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

0: दोस्तों वास्तव में जो है मौसम खराब जैसी कोई चीज नहीं होती, बस ये है कि अच्छे मौसम के अलग अलग प्रकार होते हैं। धूप जो है सुखद होती है और बारिश हमें ताजगी देती है और हवा जो है वो स्फूर्ति प्रदान करती है।
1: बिल्कुल अर्चना, सही कहा तुमने। और कहते हैं देखो, जब मौसम इतना खूबसूरत होता है ना अर्चना,
0: बिल्कुल
1: तो सिर्फ आसमान ही नहीं बदलता, इंसान के भीतर का माहौल भी बदलने लगता है। दिल
0: सही
1: थोड़ा हल्का हो जाता है, विचार थोड़े शांत हो जाते हैं, और ऐसा लगता है अर्चना जैसे प्रकृति कह रही हो, कुछ पल रुको, खुद को महसूस करो और जीवन को जियो। और कहते हैं ना कि जीवन

0: गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा
1: और साथ में हूं मैं आपकी दोस्त कुसुम।
0: और बात कर रहे हैं हम मौसम की। तो कुसुम, मौसम अगर सुहाना हो तो दिल भी करता है कुछ, मतलब दिल खुश हो जाता है हमारा। और
1: बेवजह ही खुश हो जाता है अर्चना। और
0: बिल्कुल
1: कहते हैं ना, कुछ तो चाहत होगी इन बारिश की बूंदों की, कुछ तो चाहत होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है जमीन पे आसमान तक पहुंचने के बाद।
0: वाह वाह कुसुम, बहुत ही अच्छी बात कही
1: बिल्कुल,
0: तुमने।
1: सबकी कुछ ना कुछ चाहत होती है अर्चना, और हमारी चाहत तो फिलहाल यही थी, हम सबकी थी कि इतनी गर्मी के बाद बारिश का मौसम आ जाए।
0: बिल्कुल, और ये है कि बारिश का मौसम आने के बाद हम सोचते हैं कि अपने सब गम और शिकवे भुला कर बिल्कुल वैसे ही तरोताजा हो जाएं। छोड़ दो सब गम और शिकवे जनाब, बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगता है।
1: वाह, क्या बात है।
0: तो इसलिए आप भी बदलिए दोस्तों थोड़ा सा, और मौसम के साथ मौसम के रंग में रंगिए।

0: साथी हो खूबसूरत तो मौसम भी बढ़िया हो जाता है। और देखो
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: अगर साथ हम जिसके साथ रहते हैं, अगर वो हमारे साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो मौसम का मज़ा और भी अच्छा हो जाता है अर्चना।
1: बिल्कुल कुसुम, ये तो है। दोस्ती भी बहुत बड़ी चीज़ है, और दोस्ती हो तो बहुत ही अच्छी, हो तो रंग लाती है, और दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है। दोस्ती वही सच्ची होती है जो जरूरत के वक्त काम आती है।
0: बिल्कुल, कहते हैं बिना पंख के उड़ने की जो होती है ना कि ख्वाब होती हैं, दोस्तों की दुनिया भी लाजवाब होती है। वाकई दो
1: बिल्कुल
0: जब
1: कुसुम,
0: दोस्ती होती है ना तो हम ये नहीं देखते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस दोस्ती में हम दोस्ती के रंग में रंग जाते हैं। अच्छे दोस्त फूलों की तरह होते हैं अर्चना, जिसे हम ना तोड़ सकते हैं ना ही छोड़ सकते
1: छोड़
0: हैं।
1: सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो कुसुम, और ठीक है, दोस्ती को बरकरार रखते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: वाकई अर्चना, दोस्ती का मौसम भी बहुत खास होता है। दोस्ती की मौसम की तरह होता है, कभी ठंडी हवा बनकर सुकून देती है दोस्ती, तो कभी बारिश बनकर दिल के हर दर्द को चुपचाप बहा ले जाती है।
1: बिल्कुल कुसुम, ये तो है,
0: सुहाना मौसम और सच्चे दोस्तों का साथ दोनों मिल जाए तो जिंदगी
1: बिल्कुल
0: खूबसूरत लगने
1: खूबसूरत
0: जाती
1: लगती
0: है।
1: है, और बारिश की बूंदों जैसा ही दोस्ती का रिश्ता होता है, धीरे धीरे दिल पर गिरता है और फिर पूरी जिंदगी महकाता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: और हमारा रिश्ता भी दोस्तों के साथ ऐसा ही बना रहे और कभी ना छूटे, और हम आपको ऐसे ही आनंदित करते रहें। और
0: अर्चना, इसी सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट हट दे गई होगी। जैसे बारिश की बूंदें धरती को ताजगी देती हैं, वैसे ही खुशियां आपके जीवन को महकाती रहें।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, मैं अर्चना और
0: और मैं कुसुम आप सभी से विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए।
1: नमस्कार, और सुनते हैं ये अंतिम पेशकश।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में CCTV निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
3: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ये मरीना बीच के पास है।

0: बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
0: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एम के स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं, तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता दो सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो दो जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव की मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्य भर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपलेख दर्रे पर

0: पाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट न सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों घरों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार।

0: पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपु लेख पर भारत की नेपाल को दो टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipu Lake Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
3: At this moment, the postal ballot is being counted, and after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair, and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers, and there are 77 counting centers in the state. And one thing I should mention that today 293 assemblies constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered repoll in Falta assembly constituency on that will be held on 21st May, and the result is on 24th May.
2: Thank you, Kalyan, for that update. We also have with us our correspondent Rakesh Dole from Guwahati for the latest update on counting from the state of Assam. Rakesh, what latest update you have for our listeners on counting in Assam?
4: Yes, in Assam, counting of votes for the general elections to the Legislative Assembly got underway a short while ago.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, जिसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू हो गई है। दोपहर तक इब्तदाई रुझानात आ जाने का इम्कान है। चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। आसाम में 126 असेंबली सीटों, केरलम में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। मगरबी बंगाल में आज 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है, जबकि फालता असेंबली के लिए 21 मई को दोबारा पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। केरलम में 140 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तफसील हमारे नवनिगार से।
1: केरलम में 140 असेंबली हलकों में पोस्टल वोटों की गिनती 43 मकामात पर अभी शुरू हुई है। शुरुआती रुझानात सुबह 9:30 बजे तक मिलने का इम्कान है। हुक्मरान एलडीएफ इत्तेहाद अपना इख्तदार जारी रहने की उम्मीद कर रहा है, जबकि यूडीएफ इत्तेहाद के इस मरतबा वाजा अक्सरियत हासिल करने का इम्कान है। दूसरी जानिब एनडीए पुर उम्मीद है कि वो केरलम में एक फैसला कुन ताकत के तौर पर उभरेगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: और अब तमिलनाडु में वोटों की गिनती के बारे में हमारे नामनिगार की एक रिपोर्ट।
2: आज 234 हलकों के लिए राय दहिंदगान को अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी। आज ये भी पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ एजेंसियों, टीवी चैनलों और लोगों के जरिए पेश किए गए एग्जिट पोल कितनी हद तक दुरुस्त हैं।

0: बात का इम्कान है कि लोग गिनती के मरकज में जमा होंगे और रियासत व नीम फौजी अमले को मरकजों के बाहर तैनात किया गया ताकि सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाया जा सके। वोटों की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू होगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी की कानून साज असेंबली के चुनाव के लिए वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी के तहत मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के 6 मखसूस मरकजों में जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुल 294 उम्मीदवार गिनती के इस अमल में अपनी सियासी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: पहले राउंड में वोटों की गिनती 17 असेंबली हलकों के सभी 6 मराकज में की जा रही है। इसमें पुदुचेरी खित्ते के 12 हलके भी शामिल हैं, जिनमें कराईकल में 3, माहे और यानम में 1-1 हलका शामिल है। बाकी 13 हलकों में दूसरे राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। उम्मीद है कि इब्तदाई रुझानात सुबह तकरीबन 9:30 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे। गिनती के मराकज के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट और माइक्रो मुशाहिदीन समेत कुल 859 एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ पोस्टल बैलेट्स के लिए 35 टैबलेट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट गिनती के लिए 166 टैबलेट्स लगाए गए हैं। वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी और रसाई के कंट्रोल इकदाम के तहत की जाएगी और चुनाव काम की जानिब से जारी किए गए QR कोड पर मबनी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद ही दाखिले की इजाजत होगी। पुदुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: उधर मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज सुबह गिनती के 77 मरकजों में शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: आज वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और गिनती के लिए चुनाव अमला पहले ही मराकज में पहुंच गया है। 294 सीटों में से असेंबली के 293 हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो रही है। गिनती के हर मरकज में 3 सतही सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जहां जिला पुलिस, रियासती पुलिस और मरकजी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी फोर्सेस की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 गिनती के मराकज के 100 मीटर के अंदर लागू कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इस हद को बढ़ाया भी जा सकता है। कमीशन ने इस अमल के दौरान फराइज में किसी किस्म की कोताही के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खबरदार किया है। भारत के चुनाव कमीशन ने फालता असेंबली हलके के लिए चुनाव को कलअदम और बातिल करार दिया था। फालता में 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे और 24 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। आज सिर्फ 293 हलकों में वोटों की गिनती हो रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: 5 रियासतों में 7 असेंबली सीटों के लिए हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती भी आज सुबह शुरू हो गई है। ये 7 सीटें हैं गुजरात में उमरेत, कर्नाटक में बागलकोट और दावनगिरी साउथ, महाराष्ट्र में राहौरी और बारामती, नागालैंड में कोरीदांग और त्रिपुरा में धर्मानगर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय बिरादरी के अफराद से गुफ्तगू की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि जमैका के वजीर आजम ने उनसे मुलाकात के दौरान भारतीय बिरादरी के ग्रां कदर तआवुन का जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं ने खासतौर पर बुनियादी ढांचे, इंसानी तरक्की और टेक्नोलॉजी पर मबनी हुक्मरानी और छोटे कारोबार के शोबों में जारी यकसर तब्दीली के बारे में तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत जमैका ताल्लुकात में हुई हालिया पेशरफ्त का भी जायजा लिया। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 10 तारीख तक जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के दौरे पर रहेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में एक शिमाली टेक सिंपोजियम का इफ्तिताह करेंगे, जिसका उन्मान है रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां टेक्नोलॉजी, सनत और सपाहगरी यकजा होते हैं। वजारत दिफा ने बताया कि इस सिंपोजियम से फौजी कार्रवाई को दरपेश चैलेंजों के लिए मुल्क ही में तैयार की गई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को नुमाया और मजबूत करने का एक फाल प्लेटफॉर्म फराहम होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका उन मुल्कों की रहनुमाई के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा जिनके जहाज आबनाए हुर्मुज में फंसे हुए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस कोशिश से सैकड़ों जहाजों और तकरीबन 20,000 जहाजरानों को मदद मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार और बेकसूर मुल्क ईरान जंग से मुतासिर हुए हैं और ईरान और अमरीका ने इन मुल्कों से कह दिया है कि वो इन पाबंदी वाली आबी गुजरगाहों से उनके जहाजों को बहिफाजत निकालेगा ताकि ये जहाज आज़ादी

0: फिलहाल गौरखोज किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने तजवीज का जायजा लिया था, उन्होंने इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई है जिससे अमरीका के किसी सख्त मौकिफ का इजहार होता है, क्योंकि ये बातचीत बिलवास्ता तौर पर सालिस के जरिए की गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि उसे अपनी 14 निकाती तजवीज पर अमरीका का जवाब मौसूल हो गया है और फिलहाल इसका जायजा लिया जा रहा है। ईरान में अफसरान ने कहा है कि इस मंसूबे में मुखासमत को खत्म करने पर तवज्जो दी गई है, इसमें न्यूक्लियर मामले पर कोई बात नहीं की गई है जो दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तजवीज पर शक का इजहार किया है कि जिससे इशारा मिलता है कि इससे अमरीका के खास तौर पर न्यूक्लियर बंदिशों से मुतालिक मुतालबात पूरे नहीं होते। इधर जनूबी लबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंग में मुआहदे के बावजूद शिद्दत आ गई है और दोनों ही तरफ से बार बार खिलाफ वर्जी की इत्तला मिली है। इसराइली फौजों ने फजाई हमले तेज कर दिए जिनमें हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जनूबी इलाकों के शहरियों से कहा गया कि वो ये जगह खाली कर दे क्योंकि फौजी कार्रवाई दीगर हल्कों में भी की जाएगी। दुबई से प्रसार भारती के खसूसी नामा निगार विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है और इसे 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक देरीना रास्ता करार दिया है और कहा है कि इस रास्ते से यात्रा कई दहाइयों से जारी है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने यह बात मीडिया के कुछ सवालों के जवाब में कही। ये सवालात सालाना कैलाश मानसरोवर यात्रा के सिलसिले में नेपाल की वजारत खारजा की तरफ से किए गए सरहदी मामलों से मुतालिक दावों के बारे में थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सिलसिले में भारत का जवाब मुस्तकिल और वाज़ेह है और ये कोई नया वाकया नहीं है। जहां तक इलाकाई दावों का जिक्र है तो जनाब जायसवाल ने इशारा दिया कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि न तो ये दावे मुनसफाना हैं और ना ही तारीखी हकायक और शवाहिद पर मबनी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के इलाकाई वसत के यकतरफा मसनूई दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि भारत दोतरफा ताल्लुकात में सभी मामलात पर नेपाल के साथ एक तामीरी बातचीत के लिए तैयार है जिसमें मुजाकरात और सिफारती कोशिशों के जरिए तस्फिया तलब सरहदी मामलात पर इत्तेफाकी राय कायम करना भी शामिल है। हैदराबाद में आजमीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन के लिए रवाना हो गया है। अकलियतों के फलाह बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामपल्ली में हज हाउस से बाकायदा तकरीब के दौरान आजमीन हज को रवाना किया। अजहरुद्दीन ने आजमीन हज को मशवरा दिया कि वो सऊदी अरब में खुद को इबादत में मसरूफ रखें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। उन्होंने उनसे यह भी अपील की कि वो सऊदी अरब के तमाम कवानीन और जाब्तों पर पूरी तरह अमल दरामद करें और तेलंगाना की तरक्की के लिए भी दुआ करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना सरकार आजमीन हज को बेहतरीन सहूलियात और तआवुन फराहम करने के तहत अहदबस्ता है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह के मौसमी हालात का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में इक्का दुक्का मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में आज गर्मी और हवा में नमी का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा था, जिसे उसने एक गेंद पहले ही 6 विकेट खोकर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
2: शुक्रिया असलम। मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों में वोटों की गिनती आज होने को आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी पहली खबर के तौर पर पेश किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक मगरबी बंगाल पर सबकी निगाहें मरकूज, इलेक्शन कमीशन ने वोट शुमारी के लिए किए पुख्ता और गैर मामूली इकदाम। रोजनामा इनकलाब ने खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में एक अहम कामयाबी के तौर पर दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किए जाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक भारत अब हर मौसम में जमीन के हर कोने पर नजर रख सकेगा। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामानी उम्र के वजीर किरण

0: जी जो के इस बयान को बड़ी खबर बनाया कि अपोजिशन पार्टियां जमहूरी इदारों को कमजोर कर रही हैं और ये कि मुल्क के अवाम वक्त आने पर उनकी ऐसी कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असम्बली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असम्बली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपु लेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: direction of the BJP, and
1: जनादेश 2026
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
3: जनादेश 2026 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की गिनती चल रही है और हम ताजा रुझान आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ को एंकर है निशित कुमार, साथ ही दो राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
0: यस, बिफोर यू वेंट इन टू द ब्रेक, उमेश, वी वर टॉकिंग अबाउट असम 33 seats for the BJP. It seems for the moment going their way out of the 38 trends, of course, trends very early days as of now. And we were talking about the West Bengal, Umeshji, this time 92%+ of voting that actually gave some direction to which way it probably, because generally it has been the trend, generally it has been like a feature that whenever there has been bumper voting or something like this happening, it has been like it goes the other way, as that is the anti-incumbent way.
4: अब बिल्कुल, और एक चीज़ और भी है जो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल जब आए थे तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल को नकारने की शुरुआत की थी।
0: yep.
4: उसको बहुत जोर शोर से नकारा भी था, लेकिन एक चीज़ ध्यान में, हम लोग क्या है ना, अपनी स्मृति बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी स्मृति बहुत कमजोर होती है। 2005 का दूसरा बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार जो जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो किसी भी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसमें एलजेपी को 29 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार जो बाद में मुख्यमंत्री बने वो बहुत पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन एलजेपी ने समर्थन नहीं दिया, तो बाद में हंग असेंबली भंग हुई थी। और फिर दोबारा जो चुनाव हुए थे, याद कीजिए, चुनाव आयोग के जो सलाहकार थे उस समय केजे राव, उन्होंने भारी संख्या में गैर बिहार के राज्यों से, पंजाब से, तमिलनाडु से फोर्स बुलाई। और आप जानते हैं कि सिवान जो सबसे मशहूर और सबसे चर्चित जिला होता था, जहां आप सोचिए कि सीधे सीधे पुलिस अफसर से वहां के एक व्यक्ति ने सीधे सीधे मुकाबला किया था, वहां पंजाब पुलिस ने चुनाव कराया था। कुछ कुछ यही स्थिति इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की है। जो
0: जी आई विल जस्ट इन द मीनवाइल देयर इज दिस ब्रेकिंग न्यूज दैट स्टालिन, मिस्टर उदय निधि स्टालिन, ही इज काइंड ऑफ नॉट लीडिंग एट दिस मोमेंट सो फार एज तमिलनाडु इज कंसर्न। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फॉर द मोमेंट।
3: जी बिल्कुल, अगर ताजा रुझानों की एक बार फिर बात करें तो असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीट पर आगे है, केरल में कांग्रेस 10 सीट पर आगे चल रही है, जबकि सीपीएम 2 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी वहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल, जिस पर सबकी नजरें हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे है, तृणमूल कांग्रेस 9 पर बढ़त बनाए हुए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके 12 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 5 पर बढ़त बनाए हुए है। संजीव जी, पश्चिम बंगाल की चर्चा की हमने, असम की अगर थोड़ी चर्चा करें, वहां पर हिमंता बिस्वा सरमा की जो छवि थी, उन्होंने मामा की छवि बनाई उन्होंने पूरे चुनाव में और काफी आक्रामक प्रचार किया, खासकर कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने, हमने देखा कि पवन खेड़ा ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद किस तरीके से मामले रहे, लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, एक तरफा बंपर जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है।
5: जी बिल्कुल, कांग्रेस वहां यू नो उन्होंने कोशिश करी कि तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को आगे करने की और एक तरह से जो पुरानी ट्रेडिशन थी उसको आगे चलाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पकड़ नहीं पाई, मतलब द ग्राउंड सिचुएशन को पकड़ नहीं पाई। तो हिमंता बिस्वा सरमा फर्मली इन सैडल हैं और जैसा कि एग्जिट पोल्स भी बोल रहे थे कि हिमंता बिस्वा सरमा बीजेपी लेड अलायंस पूरा बहुमत से आगे आ रही है, तो रुझान इनिशियल जो आए हैं, हालांकि ये इनिशियल है बहुत, और अभी पहले पोस्टल बैलेट फिर ईवीएम शुरू होंगे, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस डेंट नहीं कर पाई, कांग्रेस पकड़ नहीं पाई ग्राउंड सिचुएशन।
3: हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कि असम में क्या विकास के नाम पर मतदाताओं ने वोट किया या कमजोर विपक्ष का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला?
5: मैं कहूंगा कि दोनों सिचुएशंस हैं, लेकिन कमजोर विपक्ष ज्यादा निर्भर किया है इस इलेक्शन में। प्लस बीजेपी इस इलेक्शन को पोलराइज भी कर पाई है, जैसे कि उन्होंने घुसपैठियों की बात बहुत करी, जैसे ऑल टॉप लीडर्स अमित शाह इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर घुसपैठियों की बात की, घुसपैठियों को निकाल देंगे। फिर कांग्रेस ने थोड़ा सा कोशिश करी नेगेटिव राजनीति करने की कि हिमंत बिस्व शर्मा की वाइफ को और उनकी करप्शन को लाने की आगे कोशिश करी, लेकिन वो चला नहीं, वो उल्टा पड़ गया और वो कांग्रेस अपने उसमें एम्ब्रॉयल हो गई। तो ग्राउंड सिचुएशन, और अगर आप देखें कि इलेक्शन से कुछ देर पहले फॉर्मर कांग्रेस एमपी, कांग्रेस का सिटिंग एमपी, कांग्रेस के कुछ देर से जैसे लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरफ राजनीति जा रही है। राजनीतिक जो राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस, बहुत समझते हैं आगे कि कैसे आगे क्या चल रहा है। तो जिस तरह से एक से बाद एक दूसरे कांग्रेस के लीडर्स निकल रहे थे कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि बीजेपी स्ट्रांगली इमर्ज कर रही है।
0: राइट। इन द मीनवाइल Suvendu Adhikari of the BJP is leading from both the seats, that is Bhavanipur and Nandigram. This is big, this is humongous, Sanjeev ji. And also we were discussing about Assam. One thing, of course, is that how the Congress party kind of dealt into that negative campaigning, if we may say that. And the BJP mostly, of course, the incumbent Chief Minister, Mr. Sarma, has been very aggressive right from the very beginning. But at the same time, probably he has delivered on the ground as well.
5: That's right. Assam has been a traditional Congress stronghold. But over the years, Hemant Biswa Sarma was the blue-eyed boy of Mr. Tarun Gogoi, who was the chief minister for a very long time there. Now, the Congress tried to play its card on carrying on the legacy of Mr. Tarun Gogoi by putting forward his son, Gaurav Gogoi, as their leader. However, on the ground, it seems that the Congress has lost its charm on the ground, because Hemant Biswa Sarma knows the area, the state,
0: and also the pulse of the people. Yeah. Yes,
5: he so is, he's yes. been he's been focusing on the people. He's been focusing, and the BJP on the other hand is giving it a fillip by adding the angle of infiltrators and those who migrated from Bangladesh and all that. So on one side, development is going on. On the other hand, this narrative is also going on. So Congress could not actually capture the narrative in the state.
0: Right. Umesh ji, we were just discussing about West Bengal and the bumper voting which happened this time, 92%+. This is humongous. Now, there has been this talk of infiltration, the Rohingyas and all, crossing into the Indian side from Bangladesh and other parts as well. So now this time it seems the central leadership as well as the election commission, they have been kind of holding fort with very, that strong kind of iron face. How far do you think that the tightening of the screws so far as the security and these things are concerned has any bearing on these election results?
4: दो चीज़ें हैं। पहले तो आपके सवाल में दो चीज़ों का और इशारा है। पहला तो ये है कि घुसपैठ को लेकर के इस बार सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसको मुद्दा सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बनाया किसने था। खुद ममता बनर्जी ने।
0: Yes.
4: और अगर आप याद कीजिए 2011 के चुनाव

0: में
1: एग्जैक्टली यस
0: उन्होंने
1: यस
0: खुद
1: यस
0: तब के
1: यस
0: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी कि केंद्रीय बलों की निगरानी में पश्चिम बंगाल में चुनाव, तो वो खुद मानती थी कि उस समय पश्चिम जो वेस्ट बंगाल की पुलिस या कोलकाता पुलिस है उसकी निगरानी में चुनाव सही तरीके से नहीं हो सकते। उम्मीद ये हो थी की जा रही थी कि ममता बनर्जी जब आएंगी शासन में, जो आई भी 2011 में, तो आएंगी तो जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसको सॉल्व करेंगी, उसका उन समस्याओं का समाधान करेंगी। लेकिन ठीक उसी तरह से वो उसी राजनीति में पगती चली गई जिस राजनीति में पहले सीपीएम की लीड वाली सरकारें होती थीं और जिसका वो विरोध करती थीं। तो घुसपैठ तो उनका मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उनके हाथ से लपका है। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी जीतती हुई दिख रही है रुझानों में पश्चिम बंगाल में, वो भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी है ना, भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो
1: मुखर्जी
0: पहले हिंदू महासभा के नेता
1: उनका
0: होते थे,
1: गृह
0: उसी
1: राज्य है वो।
0: वही वही पश्चिम बंगाल से ही आते थे, कोलकाता
1: राइट
0: से आते थे।
1: राइट
0: तो एक तो बड़ा मलाल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, भले वो कहे ना कहे सार्वजनिक रूप से कि जहां के उसके संस्थापक थे वहीं वो नहीं अपनी
1: घर
0: कब्जा
1: घर
0: मतलब।
1: घर
0: हाँ,
1: छोड़ने वाली
0: और
1: घर
0: दूसरी
1: छोड़ने
0: एक
1: वाली
0: चीज और
1: बात
0: याद कीजिए कि लोग कह
1: है
0: रहे हैं ना कि बड़ा ट्रेमेंडस विकास हुआ है। 1967 में जो संबिद सरकारें बनी थी, 7 राज्यों में कांग्रेस सीधे सीधे हारी थी, तो उस समय विपक्ष का जो गठबंधन था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, उस गठबंधन में भारतीय जनसंघ भी शामिल था और उस भारतीय जनसंघ की ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 24 परगना जिले की एक सीट गोसाबा पर गोविंद चंद्र मंडल जीते थे। वो SC रिजर्व सीट थी और पहली बार जनसंघ ने 1967 में खाता खोला था और बाकी 57 सीटों पर वो नहीं हारी थी। तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मलाल रहा है
1: जी
0: भारतीय जनता
1: बिल्कुल
0: पार्टी का। और दूसरा जो घुसपैठ वाला मामला है ना, घुसपैठ के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत उछाला है, खासतौर पर 2016 के बाद से ही वो लगे हुए हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं
1: जी
0: आनंद?
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: पश्चिम बंगाल में इस समय 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों पर आगे नजर आ रही है और तृणमूल कांग्रेस को शुरुआती रुझान में 25 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। संजीव जी, तमिलनाडु में जो इस समय स्थिति बन रही है, 26 सीटों के रुझान आ रहे हैं, जहां डीएमके 11 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए है, AIADMK 6 पर आगे है, लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK। देखिए इस समय वो 6 पर आगे चल रहे हैं और AIADMK भी 6 पर आगे चल रही है। एग्जिट पोल में कुछ ने उनको ट्रिपल डिजिट में भी सीटें दी हैं, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप?
2: देखिए, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा आप देखेंगे काफ़ी अरसे से पर्सनालिटी बेस्ड रही है। चाहे वो M.G. रामचंद्रन हो, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो, और अब नया फैक्टर जो आ रहा है वो विजय है। तो विजय एक्टर रहे हैं तो, और उन्होंने यूथ के ऊपर बहुत उनका इन्फ्लुएंस रहा है। आपने देखा होगा उनकी रैलीज में कितना बहुत रश होता है,
1: जी,
2: और एक रैली में
1: महिलाएं भी
2: तो
1: बड़ी
2: हाँ,
1: तादाद में नजर
2: और
1: आई।
2: महिलाओं का भी सपोर्ट उसको है। तो आप देखेंगे यूथ और महिलाएं जहां जा रही हों, तो इसीलिए अभी सबसे बड़ी बात यह है तमिलनाडु में जो देखने वाली, कि द्रविड़ियन पार्टीज जो होल्ड करती थी फोर्ट, जो राज करती थी, पहले कांग्रेस करा करती थी बहुत पहले, लेकिन जब से द्रविड़ियन पार्टीज आई, जो रीजनल आइडेंटिटी को और लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए ये जो पार्टीज आगे आई, उसके बाद से आइदर वे DMK या AIADMK दोनों ऑल्टरनेटिवली पावर में आ रही हैं। कुछ 2 बार 3 बार आती हैं, फिर दोबारा दूसरे आ जाते हैं, लेकिन इस बार द्रविडियन पार्टीज को मतलब कि क्या वो पावर से बाहर जाएंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और TVK एक होप दे रहा है यूथ को वहां की और महिलाओं को, और अगर इन दोनों की सपोर्ट है तो आई थिंक महिलाएं 50% ऑलरेडी हैं और यूथ प्लस कर लो आप 25%, मतलब टोटल यूथ ऑफ 42% है वहां स्टेट में।
1: बहुत संक्षेप में, चूंकि हम न्यूज ब्रेक के लिए भी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी विजय को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी, उनके साथ एक समझौता करना चाहती थी। खबर यह भी थी कि राहुल गांधी TVK के साथ समझौता करना चाहते थे। क्या विजय को इस बात का अंदाजा था कि वो अकेले दम पर तमिलनाडु में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसलिए वो अकेले लड़े?
2: अकेले इसलिए भी लड़े उन्होंने कि अपनी आकलन कर लें कि कितनी उनकी पोजीशन है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे क्योंकि उनको मास बेस सपोर्ट था, उनकी

0: रैलीज में जैसे आए, हालांकि रैलीज एक यार्डस्टिक नहीं माना जाता, रैलीज ममता बनर्जी की भी लेफ्ट के टाइम बहुत होती थी, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, बट पावर में नहीं आ पाई, लेफ्ट को डिथ्रोन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जो जैसे लग रहा है, और प्लस बीजेपी के साथ वो पहले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो कुछ माइनॉरिटी वोट्स को एंटी हो जाती, तो प्री पोल अलायंस की जगह मुझे लग रहा है पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है अगर वो ऐसी इमर्ज करके आए, क्योंकि उनकी अगर पार्टी 3 फिगर में आए तो पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है।
1: Right, very briefly before we slip into a break, for Kerala, the LDF is leading in 8 seats, the UDF in 21, and most interestingly, the BJP as well is leading in 3 seats, the BJP plus, that is the alliance in Kerala. Umeshji, Sanjeevji will be slipping into a quick break for now for the news bulletins, and we'll be back at 9:10 a.m., just in 10 minutes from now. With more and more discussions and more analysis. So, listeners, just don't go away. Stay tuned, and we'll be back right now.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीट के लिए हो रही है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है। पश्चिम बंगाल में 293 सीट में से 54 सीट के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 41 सीट पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 11 सीट पर आगे चल रहा है। अन्य 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। राजकीय फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीट में से 26 सीट के रुझान मिल गए हैं। एआईएडीएमके गठबंधन 6 सीट पर आगे चल रहा है। डीएमके गठबंधन 13 सीट पर आगे है और अन्य 7 सीट पर आगे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की 140 सीट में से 31 सीट के रुझान मिल गए हैं। यूडीएफ 20 सीट पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 3 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि एलडीएफ 8 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। असम में विधानसभा की 126 सीट में से 43 सीट के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 36 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 7 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 1 सीट पर आगे है। उधर 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी हो रही है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलाकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धरनगर हैं।
3: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। नेपाल ने कहा कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर दी थी। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। यूरोपीय देशों के नेता 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के लिए आर्मेनिया पहुंच गए हैं। आज 30 से अधिक यूरोपीय नेता यूरोपीय राजनीतिक समुदाय सम्मेलन ईपीसी में शामिल होंगे। कल पहला यूरोपीय संघ आर्मेनिया शिखर सम्मेलन होगा। इसमें यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बीच कल यूक्रेन के राष्ट्रपति

0: This 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, said he had examined the proposal and described it as not acceptable. Meanwhile, United States will launch Project Freedom to guide countries with ships stranded in the Strait of Hormuz. President Donald Trump said this effort will help hundreds of vessels and some 20,000 seafarers. The India Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. It also predicted heavy rainfall at isolated places over Bihar, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand and West Bengal. Coastal Andhra Pradesh is expected to witness hot and humid weather conditions today. Amid intense summer heat, the national capital witnessed rain lashing several parts this morning. And that is the end of this news bulletin.
1: जनादेश 2026
2: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम
3: जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन सिर्फ आंकड़ों का नहीं इतिहास का दिन है। सुबह की हर किरण के साथ खुल रहे हैं लोकतंत्र के वो पन्ने जिन पर जनता ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम तक, तमिलनाडु से असम और पुदुचेरी तक हर राज्य एक कहानी कह रहा है, उम्मीदों की, संघर्ष की और सत्ता की। कहीं ताज बचेगा, कहीं तख्त बदलेगा, कहीं सपने सच होंगे तो कहीं वर्षों की मेहनत धूल में मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल जहां हर वोट एक संदेश है, केरलम जहां विचारधाराओं की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है, तो वहीं तमिलनाडु जहां सत्ता की बिसात पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। असम नेतृत्व की परीक्षा है तो पुद्दुचेरी जहां सत्ता की वापसी या बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। हर पल बदलते रुझान, हर क्षण नई हलचल और इन सब के बीच आपके साथ है आकाशवाणी। यह सिर्फ गिनती नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जिसकी हर धड़कन, हर अपडेट, हर मोड़ हम आपके लिए जनादेश 2026 में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे को एंकर निशित कुमार और हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं दो राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
4: वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ जनादेश 2026। एज आनंद वाज मेंशनिंग, वी आर कवरिंग ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली राइट फ्रॉम असम टू वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु टू केरलम टू पुडुचेरी। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग न्यूज एज वेल एज insights, political analysis, more and more. So just stay tuned. And for now, when it comes to West Bengal, the BJP is leading on 48 seats, up 21 from the last time, Trinamool on 29, down 24 from the last time, that is 2021. This is so very significant. And when it comes to Assam, the BJP is leading, the BJP Plus is leading on 42 seats. In Keralam, the LDF on 15 and the UDF on 31 seats. And BJP, more significantly, BJP Plus, that is, on 3 seats in Puducherry. Just one trend at the moment coming. And Sanjeevji, if we may begin with you again. When we talk about the West Bengal, 48 seats at the moment for the BJP, this is tremendous. Of course, as the exit polls would suggest that this would be neck and neck, but it seems to be going the other way around this time.
5: Yeah, it seems it's going one way. And for the BJP, which has been, it's for earlier the Jan Sangh and earlier the Hindu Mahasabha. You know, Hindu Mahasabha had a government in West Bengal in the pre-partition days. So it would be a return in power for the BJP. And, going by the trends, Mamata Banerjee is also trailing in her Bhabanipur constituency where Subhendu Adhikari is, leading. So for Subhendu Adhikari, who has emerged as the leader for the BJP, it will be a double triumph because last time also he defeated Mamata Banerjee
3: Nandigram.
5: From Nandigram. Mm. And this time he's contesting from Nandigram as well as Bhavanipur.
3: Yes.
5: So it will be a real double for him. And the indications right now are that the reign of Mamata Banerjee, you know, is coming to an end because all eyes are on West Bengal because this has been the most crucial election. And Mamata Banerjee has also fought, both Mamata Banerjee and the BJP have fought very strongly, you know, this time.
3: Right. And असम में जो ताजा रुझान है वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सरकार बनाने की तरफ भी आगे जा रही है। 40 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 9 पर आगे चल रही है। पुद्दुचेरी से पहला रुझान सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। दिलचस्प लड़ाई तमिलनाडु में जारी है जहां पर सत्ताधारी डीएमके 12 सीट पर आगे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पर आगे है लेकिन वहां पर सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके 14 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएडीएमके 6 पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त है। और सबसे बड़ी चर्चा जो पश्चिम बंगाल पर चल रही है वहां भारतीय जनता पार्टी ताजा रुझानों में 49 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 30 पर आगे है। कांग्रेस 2 पर आगे है जबकि अन्य जो है वो 1 पर आगे है। उमेश जी, अगर बंगाल की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे थे वहां पर बीजेपी और तृणमूल के बीच बहुत बड़ा गैप था लेकिन पिछले 15 मिनट में, यानी जो हमारे श्रोता समझ रहे हैं, जो पोस्टल बायलट का दौर लगभग समाप्त हो गया, आधे घंटे चलता है, अब जो है वो ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने उस गैप को कम तो किया है।
6: बिल्कुल कम किया है लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि उससे लगभग 60% ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और एक चीज़ देखना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी। पिछली बार 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 38 सीटें ऐसी थीं जो वो 5% मार्जिन से, उससे भी कम मार्जिन से वो सीटें हारी थी और करीब 43 सीटें ऐसी थीं जहाँ 10% के मार्जिन से वो हारी थी। इन सीटों पर उसने बहुत काम किया है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बताते थे कि हमने इन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि यहाँ करने के लिए बहुत ज़्यादा था। और एक चीज़ और है, जो अल्पसंख्यक बहुल 80 सीटें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो की लेकिन उस तरह से मेहनत नहीं की जैसे कि इन सीटों पर की। और जो रुझान में दिख रहा है वो वही परिलक्षित हो रहा है। हालांकि अभी ये बड़ा शुरुआती है।
3: जी उमेश जी, आपको रुकना चाहेंगे। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि महिला केंद्रित जो योजनाएं हैं उससे सरकार को बम्पर फायदा मिल रहा है। झारखंड में देखे तो हेमंत सरकार ने मैया योजना की शुरुआत की, वहां पर वो जीते। छत्तीसगढ़ में भी लाभ मिला, मध्य प्रदेश में भी लाभ मिला। यहां पर ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं। 1000 रुपए मिलते हैं हर महीने। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतेंगी 500 रुपए और बढ़ा देंगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो 3000 रुपए वो हर महीने हर महिला को देंगी। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में?
6: अब बिल्कुल, जब कोई सरकार जीत बनाने की स्थिति में कोई पार्टी आती है और कोई सरकार हारती है तो ये बहुत सारे फैक्टर तो काम करते ही हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता रहा है, देखा जाता रहा है कि जो सरकार में रहता और जिन्होंने दे दिया तो जनता और वोटर सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर जो रुझानों में दिख रहा है पश्चिम बंगाल में वैसा ही अगर ऐसा रहा तो निश्चित तौर पर जो भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वहाँ ये जो ट्रेंड रहा है ना कि जो दे रहा है उसी पर ज़्यादा भरोसा है तो उससे बदलाव आ रहा है। लेकिन क्यों बदलाव आ रहा है इसको भी हमें थोड़ा सा देखना और सोचना पड़ेगा। एक चीज़ है कि जैसे आरजी कर, अभी कुछ महीने पहले आप देखिए अगस्त 2025 में जो आरजी कर में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और जिस पश्चिम बंगाल में एक सवाल तृणमूल की ओर से उठता रहा कि ऐसे तो बहुत सारे पूरे देश में होते रहे हैं लेकिन जानते हैं उसका रिपरकर्शन क्या रहा। सरकार ने उसको जिस तरह से डील किया उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा, खासतौर पर वहाँ की महिलाओं में। और एक चीज़ आप देखेंगे कि जिस तरह से वोट डालने के लिए लोग गए हैं पश्चिम बंगाल से जो बाहर रह रहे थे, उससे भी लग रहा था कि कुछ न बदलाव तो वहाँ दिख रहा है, कुछ न कुछ होने जा रहा है। तीसरी चीज़ एक ये भी है कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो चला पूरे देश में चल रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ हर जगह हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में बना। तो ये जो कंट्राडिक्शन ममता बनर्जी ने, हम लोग ये ब्रेक के पहले जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि जो घुसपैठ का मुद्दा था, घुसपैठ के मुद्दे को किसने उछाला था, तो ममता बनर्जी ने, और उसी घुसपैठ

0: पैट को लेकर के एसआईआर से उन्होंने जोड़ दिया कि घुसपैठ की बजाय उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ के वासी हैं उनको नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया बहिर्गतो। पश्चिम बंगाल का समाज, जहाँ आप देखेंगे कि आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े धुरंधर वहीं से पैदा होते हैं, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसकी भी नींव आप देखेंगे तो वहीं, वंदे मातरम का 150 साल अभी हाल ही में बीता है, पूरे देश ने जिसको गाया। तो वो जो चीजें थी, बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिन मसलों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बनाया और उसका असर ये जो रुझान है उसमें दिख रहा है।
1: सो राइट, द बीजेपी हैज काइंड ऑफ हिट अ हाफ सेंचुरी व्हेन इट कम्स टू वेस्ट बंगाल एंड नाउ कमिंग बैक टू तमिलनाडु। संजीव जी, TVK, the party, it's leading on 14 seats. The first time, you know, this party has come into existence, and 14 seats, the DMK on 16, which is minus 15 from the last time, and AIADMK almost the same, like 9 plus 1 from the last time. So how big a factor do you see TVK playing when it comes to Tamil Nadu this time, when it comes to the formation of the government?
2: No, TVK certainly, you know, Vijay with, you know, he's been an actor and he has the fancy of the youth and the women in the state. So this time, since he's emerged very strong, and it's most likely that most of the parties like the Congress also tried earlier to ally with the TVK. So did the BJP, but Vijay decided to go it alone this time. So he's tried his time and tested his prowess on the ground. So every party will now try and, you know, ally with him in post-poll alliance, but it's likely that you know, the southern parties generally go with the central government. So it's likely that the BJP may, you know, ally with it post-poll alliance.
1: So mostly the TVK will have to, or rather would be playing the kingmaker role, if not the king itself. Now, Umesh, you know, coming to Assam now, in Assam as well, the BJP is kind of getting close to the half century mark. It's already on 49, and it's been like a clean sweep, just no contest at all when it comes to Assam.
0: It is on an expected line. यही उम्मीद की जा रही थी वहाँ कि इसी तरह से जीत हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को। और आप जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक अलग तरह के नेता हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि बाहर के लोगों को वो नेतृत्व नहीं देते हैं, लेकिन एक तरह से वो ना सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का चेहरा बन
1: चुके हैं। सुशील तिवारी फ्रॉम चेन्नई। सुशील जी, वेलकम।
3: Thank you so much.
1: Yeah, Sushil ji, yeah, please tell us the latest on the ground. What's happening there and how is the mood over there?
3: Actually, the mood is very energetic. We have just visited the nearby counting center, which is close to AIR, that is Queen Mary's College. So lots of police personnel are there. The quite tight security arrangements are there. But a major number of political workers are also standing to know the fate of their candidates, their party. As per the trends by Election Commission, the total trends are about 10 seats, five of which AIADMK is leading. TVK, the new entrant in the political arena of Tamil Nadu, is leading on three, and CPI and DMK are leading on one seat each.
4: जी बिल्कुल सुशील जी, पिछले कुछ समय में जब से ये चुनाव घोषित हुए और वहां पर लगातार जो विकास की चर्चा चल रही थी, और कहा जाता है कि तमिलनाडु में व्यक्ति प्रधान राजनीति है, तमिलनाडु के जो टीवी चैनल्स हैं जिस पर बहुत गहरी पकड़ मानी जाती है स्टालिन की, उन्होंने भी बाकी दूसरे पार्टियों को बराबर कवरेज देने की शुरुआत की पिछले एक महीने में, और राजनीतिक पंडितों ने कहा कि टीवी चैनल्स को लगने लगा है कि अब डीएमके के लिए काफी मुश्किल होने वाली है और टीवीके के विजय पूरी तरह छा गए। शुरुआती रुझान में टीवीके काफी बढ़िया करती नजर आ रही है, जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आई जब इस चुनाव को कवर करने के लिए आप तमिलनाडु के अलग अलग केंद्रों पर गए? तो
3: देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही इस बार निर्णायक साबित होने वाली है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में 4,75,000 से कुछ 4,75,00,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और इनमें जो एक बड़ी संख्या है, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 18 से 19 वर्ष यानी जो नए वोटर हैं वो 14,00,000 के आसपास हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और एक बड़ी संख्या युवाओं की जो 19 से 29 साल के यानी जो युवा वर्ग है और जेंजी है वो टोटल मिलाकर के 1 करोड़ से ऊपर है।

0: यानी एक चौथाई मतदाता ऐसे हैं जो व्यक्ति प्रधान राजनीति में आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे तो पूरी ही राजनीति उस पर रही है, लेकिन टीवीके का जो उदय है वो वास्तव में इन्हीं मतदाताओं को ध्यान में रख करके किया गया है। तो जहां एक और डीएमके के पास अपनी जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, उनका एक बेनिफिट था, उसका एक आत्मविश्वास था, उसको लेकर के वो चुनाव मैदान में थे, वहीं इन युवा मतदाताओं के भरोसे विजय ने राजनीतिक मैदान में अपना झंडा गाड़ने की तैयारी की थी। तो ये इस बार ये बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है वो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, तो धीरे धीरे जब तस्वीर स्पष्ट होगी कुछ समय के बाद, तो हम देखेंगे कि जो युवा मतदाता है उन्होंने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हुए, या फिर जो लोक कल्याण की योजनाएं रहे उनका फायदा डीएमके को मिला, या सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है उसका फायदा AIADMK और बीजेपी यानी एनडीए का जो अलायंस है उसने उठाने का कुछ प्रयास किया या उसे कुछ फायदा हुआ। जी
1: सुशील जी, जानकारी के लिए धन्यवाद, आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। संजीव जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
2: जी, मैं ये कह रहा था कि द्रविडियन पार्टीज जो 1957 में पहली बार डीएमके लड़ा, 57 में लड़ा और 67 में पावर में आ गया, तो 67 में जैसे जब 67 में जब पावर में आया तो ये लगभग 60 साल के बाद आज अगर विजय की पार्टी अगर किंग मेकर बनती है या पावर में आती है तो एक तरह से इट विल बी सनसेट फॉर यू नो द द्रविडियन पार्टीज। और जैसे AIADMK भी डीएमके से निकल के बना, तो अल्टरनेटिवली द्रविडियन कल्चर को, तमिल कल्चर को, तमिल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने से ये उभरा था, एजिटेशनल मूवमेंट से उभरा था, तो ये उस पार्टी का अंत होगा। और एक बार फिर ये देखेंगे कि विजय के जो एक्टर रहे हैं, पहले एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एक्टर्स हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन इन तमिलनाडु, तो एक तरह से उसकी रिटर्न होगी।
1: और आकाशवाणी के श्रोताओं, अगर आपकी दिलचस्पी कुछ वीआईपी सीट्स पर हैं तो हम आपको बता दें जो ताजा ट्रेंड्स चल रहे हैं। असम के रंगिया से भावेश कलीटा इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस समय बढ़त पर हैं, जबकि नलबाड़ी से जयंत इस समय आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इस समय कुछ और रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें जोरहट से, तो जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय आगे चल रहे हैं। गोलाघाट से अजंता नियोंग भी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। बोकाहाट से असम गण परिषद के अतुल बोरा भी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है इस समय चुनाव आयोग के पोर्टल के अनुसार, भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि वहां पर AIADMK के चेपॉक से अद्री राजम इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि चेपॉक थिरु वाली केनी से उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के बहुत बड़े नाम हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं। AIADMK के लिए अन्ना नगर से एस गोकुल इंद्रा पीछे चल रहे हैं। साइदापेट से भी डीएमके के सुब्रमण्यन मां पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है। अगर आप टीवी के चीफ विजय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपनी सीट से इस समय आगे चल रहे हैं।
3: Yeah, Umesh, talking of Tamil Nadu and the southern states in general, you know, the NDA or the BJP has been making its mark for quite some time now when it comes to Karnataka. But when it comes to Kerala or Tamil Nadu this time in particular, the BJP has been like trying for quite some time now, let's say for almost 8 to 10 years now, wherein they have kind of been pushing for that major push to either make some inroads or get a foothold into the Tamil Nadu politics. But this time as well, there was that concerted push by the BJP to make some kind of a strong, some kind of a foothold within the BJP politics. How do you see this turning out to be, so far as the results or the trends rather, for the moment, which we can see?
4: देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो तमिलनाडु में अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। अब आप देखते हैं, देखिए अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी कोयम्बटूर से आते हैं, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक बड़ा होजरी सेंटर है, बहुत बड़ा उद्योग केंद्र है खासतौर पर कपड़ा और होजरी का, तो वहां से आते हैं। वहां से वो दो बार 1998 और 99 में सांसद भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोशिश तो की। जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो कोयम्बटूर साउथ से विधायक भी रही है, तो इस बार वो चुनाव भी लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन भारत जो तमिलनाडु की राजनीति है, जैसा कि संजीव जी बोल रहे थे, वहां अभी भी वो पुराने जो दो प्रतिद्वंदी रहे हैं AIDMK और DMK, खासतौर पर 1967 में जब से DMK का उभार होता है। और ये देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि जिस कांग्रेस को उसने साफ किया आज वही कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आती है, और उसके पीछे उसकी छोटे भाई की तरह हर बार, एक चुनाव छोड़ दीजिए 1998 का, तो हर बार लगभग।
3: लेकिन संजीव जी, जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी, ये तो एक ट्रेंड बन गया है।
4: बिल्कुल,
3: तमिलनाडु की बात नहीं, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आप बिहार में चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, कई सारे तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ये जो धूर विरोधी थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तो तमिलनाडु में, और पिछली बार विधानसभा में 3% वोट 2021 में भारतीय जनता पार्टी का अपने सवाल पूछा था, सिर्फ 3% वोट ही मिले थे। तो अब केरल की बात है, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया और पिछली विधानसभा चुनाव में 15-16% वोट उसने हासिल किए थे, और इस बार वहां जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं, जिन्होंने फील्ड पर काम किया, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, सबका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में सीटों को लेकर के बहुत बड़ा उलटफेर भले न कर पाए, लेकिन इस बार वो अपना वोट शेयर बहुत बढ़ाने जा रही है। और वैसे तीन सीटें हैं जो निम्बम है तिरुवनंतपुरम की, जहां से वहां के पार्टी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कासरगोड से पुराने पार्टी अध्यक्ष जो हैं के सुरेंद्रन, और पलकड़। ये तीन सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि वो जीत सकती है। अभी रुझानों में पलकड़ में से दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से आगे
1: जी,
4: चल रहा
1: जी,
4: है
1: जी, तो, जी। आकाशवाणी संवाददाता राकेश धोले हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। और क्या स्थिति नजर आ रही है, जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वहां पर, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
5: जी, अभी तक के अगर ट्रेंड देखे तो अराउंड 59 सीट्स में बीजेपी प्लस जो है एनडीए जो है वो आगे बढ़ रही है, एंड कांग्रेस इज अराउंड 16 जिसमें लीड ले रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो धेमाजी में जो रोनू स्टेगू धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से, और धेमाजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से रोनू स्टेगू एजुकेशन मिनिस्टर है, वो आगे बढ़ रहा है। नोलबारी से जयंत मल्लभ बरुआ वो आगे बढ़ रहा है। गौरव गोगोई जोरहाट से है वो भी आगे हैं। तो इस तरह से अभी पहला राउंड अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ ही है, उसके नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। तो दिस इज द ट्रेंड। तो बेसिकली अगर हम कहें कि लोग किस तरह से वोट किए या किस तरह से वोट किए होंगे, तो हमें असम को जो है चार भाग में भाग कर सकते हैं, लाइक दी अपर असम। तो अपर असम हम लोग कहते हैं कल्चरल हार्डलैंड ऑफ असम, वहाँ की जो मुद्दे हैं दैट्स डिफरेंट। वहां पर जो हम लोग कहते हैं कि सिक्स जो एसटी स्टेट है, जो सिक्स कम्युनिटीज मोरान मोटोक अहोम कुस राजवंशी और टी ट्राइब्स जो आदिवासी थे, उन लोग एसटी कम्युनिटी मांग रहे थे, तो ये एक इशू है और दे आर वन ऑफ द डिसाइडिंग मैंने डिसाइडिंग फैक्टर्स है वहां पर। और लास्ट टाइम अगर आप असम की बात करें तो लास्ट इलेक्शन बीजेपी वहां पर बीजेपी प्लस एनडीए जो है वहां पर अराउंड आउट ऑफ 35-36 उन लोगों ने वहां पर 31 सीट जीते थे। तो ये द सेम थिंग दे वांट टू कंटिन्यू अगेन। तो ये जो मैंने आपको कहा कि जो एसटी स्टेटस है, उन लोगों ने प्रोमिस किए कि इन सब कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस देंगे, दिस कैन बी अ फैक्टर वन फैक्टर। फिर जो आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स की हम बात करते हैं, जो लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन पे ध्यान दिए थे, जैसे जिस कितने सारे इवेक्शन किए अराउंड 1.25 लाख हेक्टर्स जो लैंड इन लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट से इविक किए, फिर एंड देन बहुत सारे ऐसे इंडिजिनियस पीपल है, कम्युनिटीज है, उनको लैंड राइट्स भी दिए। फिर इन लोगों ने फिर ये अपने मैनिफेस्टो में ये भी बताया कि मोर सच थिंग्स विल हैपन। तो ये एक इश्यू है क्योंकि अपर असम कल्चरल हार्टलैंड, अपर असम की जो पॉपुलेशन है उन लोग सोचते हैं कि जो बाहर से जो कितने भी लोग हैं वो उनका उनको लैंड राइट ना मिले, irrespective of any religion, जो असामीज है, तो that's one of the issue there. और टी ट्राइब जो है, टी ट्राइब plays a very significant role in upper Assam. तिनसुकिया के डिब्रूगढ़ के, हम तिनसुकिया डिब्रूगढ़ की जब बात करें तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये अराउंड 12 to 13 सीट्स हैं. तो लास्ट इलेक्शन आई विल से कि एनडीए हैज कैप्ड वेरी वेल. इन दो डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है, सारे एनडीए को सीट मिले थे.

0: उन्होंने अच्छी तरह से जो टी ट्राई पॉपुलेशन है उन लोगों को टैप किया था, दिस कैन बी अ डिजाइन इफेक्ट। और इसीलिए अभी देख रहे हैं कि जो रुझाने हैं अभी अब 63 हो गई है, कांग्रेस भी कांग्रेस इवन लेगिंग नाउ कि अभी 17 में ही है। तो इसी तरह से सारे असम की जो हम लोग बात करें तो लोअर असम की इशूज अलग है। लोअर असम में एनडीए थोड़ा कम की है क्योंकि यहाँ पर जो जो पॉपुलेशन है यहाँ पे जो पॉपुलेशन थोड़ा मिक्स्ड है।
1: जी जी राकेश जी, आगे भी आपसे जानकारी के लिए वापस जुड़ते रहेंगे। और जैसा कि बता रहे हैं राकेश जी भी कि इस समय जो असम में 126 विधानसभा सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इस समय आगे चल रही है। केरलम से बड़ी खबर सामने आ रही है, धर्मदम से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस समय पीछे चल रहे हैं।
2: This is something very big from Tamil Nadu. The new party TVK is leading on 24 seats, which is more than the DMK, which is on 16, and AIADMK on 15. So this is really very significant when it would be coming to the formation of the government this time. And as we have been discussing, the TVK, which was formed and which has been fighting or for the first time, would probably be playing the role of the kingmaker this time, or probably the king itself. What do you say, Umesh ji?
3: पहले भी एक बार हो चुका है ना MGR, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी AIDMK, और उन्होंने DMK को इसी तरह से हराया था पिछली सदी के शायद आखिर।
2: So do you see the history being repeated this time?
3: Yes, yes, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। किसने सोचा था कि 2011 में जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बड़ी जीत लेकर के आएंगी। उत्तर प्रदेश के आप चुनावों को देख लीजिए, 2014 के लोकसभा चुनावों को भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी जीत लेकर के आई थी। MGR की पार्टी का गठन हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि कलिंगर को कोई हरा पाएगा। करुणानिधि को कलिंजर कहा जाता था लेकिन उन्होंने हराया था। तो जनता भाई लोकतंत्र में मालिक है, वो किस तरह से सोचती है और किसको समर्थन देती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
1: पुद्दुचेरी पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं संजीव जी। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर वोटों की गिनती चल रही है और जो ट्रेंड्स इस समय हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 पर, AINRC 3 पर, AIADMK 1 पर आगे है, DMK 1 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 पर आगे है। पुद्दुचेरी में इस समय जो इस चुनाव में जो मुद्दे रहे वो ये रहा पूर्ण राज्य का दर्जा, कोई भी पार्टी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। साथ ही साथ एक और मुद्दा रहा कि वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उससे टकराव की स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार है, हम ज्यादा से ज्यादा फंड देंगे, विकास होगा। वहां की जनता का क्या मूड नजर आया?
4: तब जो पुडुचेरी बड़ा छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, 30 सीटें हैं, उसमें ज्यादातर सेंटर पे निर्भर करता है, जो फंड्स आते हैं सेंटर डायरेक्टली देता है। तो हमने पहले देखा जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे मुख्यमंत्री और किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी तो बहुत टकराव रहा एक दूसरे के साथ, हमेशा रोज कुछ ना कुछ होता रहा, तो डेवलपमेंट सफर करी वहां। तो उसके बाद डबल इंजन की सरकार आई, एनडीए की सरकार वहां बनी। तो मुझे लग रहा है कि साउथ की, एक तो साउथ की है, सेंटर पे काफी निर्भर है, फंड्स, छोटी स्टेट है, छोटी यूनियन टेरिटरी है। तो मुझे अभी भी यही लग रहा है कि लोग वहां पे इसी ट्रेंड से जाएंगे कि सेंटर से तालमेल बना रहे, अदरवाइज गवर्नेंस सफर करती है। और जहां तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में विजय जैसे आगे बढ़ रहा है तो जैसे आपने बोला कि किंग मेकर ही नहीं, किंग भी बन सकते हैं,
2: yes.
4: ऐसे लग रहा है। और ये यही शो कर रहा है कि एस्पिरेशनल इंडिया जो है उसके साथ यूथ है, उनके साथ विमेन है, तो एस्पिरेशनल इंडिया इज लुकिंग फॉर अ चेंज एंड अ न्यू फ्यूचर फॉर तमिलनाडु।
2: प्रॉब्ली द मैनिफेस्टेशन एज यू से ऑफ द यंग इंडिया कमिंग इन द फॉर्म ऑफ टीवी के विजय। मीनवाइल वी आर ज्वाइंड इन बाय आवर कोलकाता कॉरेस्पॉन्डेंट कल्याण लाहा। कल्याण वेलकम, दिस इज निशित कुमार दिस साइड।
5: Hello, Nishit.
2: Yes, Kalyan. So the BJP kind of, rolling and rolling and rolling, 69, almost 70 now, plus 35 seats up from the last time of 2021. And TMC, not expected like this, going down to 34, minus 40 this time from 2021. This is humongous. All of us, when it came to exit polls and all, when we saw that, it was almost running neck and neck, and almost every kind of political pundit or every sane person would have thought that probably the BJP might

0: और ईवीएम का काउंटिंग अभी शुरू हुआ है, तो हमें देखना होगा ये ट्रेंडिंग जो चल रहा है बीजेपी कैंडिडेट सारे जगह में, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे दे आर लीडिंग, लास्ट में कैसा रहेगा।
1: जी कल्याण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने ये नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली से आते हैं वो बंगाल के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, बंगला में नहीं बोलते हैं, वो कनेक्शन का अभाव है, वो बाहर के लोग हैं, वो बंगाल के नहीं हैं, उनका ये नैरेटिव सेट था। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वाम दल जो पिछली बार अपना खाता नहीं खोल पाए थे, इस बार उन्होंने भी युवा उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह दी थी इस चुनाव में, पहले तो ममता बनर्जी के उस नैरेटिव पर क्या बंगाल की जनता का राय है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ वाम दलों की क्या स्थिति देख रहे हैं आप, चूंकि चर्चा तो करनी पड़ेगी, 34 सालों तक उन्होंने शासन किया यहाँ पर।
0: देखिए जैसा कि फील्ड का जैसा ट्रेंड है, वोट जो वोट के आगे से ही हो रहा है इधर पोलिंग करके, वाम जो दल है लेफ्ट कैंडिडेट इन वेरियस लेफ्ट हैज प्लेस इन मेनी सीट यंग कैंडिडेट, पीपल आर टेकिंग देम पॉजिटिवली, और ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है जो बाहर से आ रहा है, जो हिंदी भाषी है बंगाल में उसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो लगता है अभी ये जो ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है पीपल आर नॉट गेटिंग इन टू दैट रेटोरिक।
1: एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, भवानीपुर में आप बहुत ज्यादा घूमे, लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, इस समय इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार वहां से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, लोगों के जहन में क्या समझ में आया आपको?
0: देखिए जैसा के लोगों के जहन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो पीपल आर नीडिंग अ चेंज नॉट ओनली इन भवानीपुर, इन ऑल द कैंडिडेट इन ऑल द एरियाज इन ऑल द कंस्टिट्यूंसी, और जैसे कि आप बोल रहे हैं क्या कैसा पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे देखिए बहुत सारे जगह में तृणमूल कांग्रेस का वोट है, पॉकेट वोट है, और बहुत सारे जगह में बीजेपी का भी वोट है, पॉकेट वोट, तो हमें देखना होगा कि बाद में क्या हो रहा है।
1: जी हाँ कल्याण जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे।
2: या उमेश जी, इवन कल्याण वाज मेंशनिंग अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन ओवर देयर नाउ, दिस इज ह्यूमंगस राइट, 70 सीट्स ऑलमोस्ट फॉर द बीजेपी एंड 34 फॉर द टीएमसी, दिस वाज, बट यू वोंट बी सरप्राइज, यू हैव बीन मेंशनिंग दैट दिस हैज बीन द ट्रेंड, दिस हैज बीन द हिस्ट्री, इट्स बीन हैपनिंग टाइम एंड अगेन, बट अगेन कमिंग बैक टू द ग्राउंड ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स in Bengal, Trinamool Congress, like as the name itself suggests, it's the grassroots, Trinamool, right? So when it comes to like other factors, let's talk of the RG Kar incident which happened, you mentioned as well in the earlier discussions, and other things, infiltration of course, that is one. Now do you feel that the people of Bengal, the natives over there, because I have also been traveling, you know, over the past 10-15 days, and I have been seeing like people who kind of, rushing to Bengal this time to vote, which was not the trend earlier, be it the 2021 or 2016 elections. This time, the enthusiasms are very, very much there for us to see. So do you feel that this time really, you know, of course, 92% plus percent had something to say in that?
3: बिल्कुल, जरा जब इस सवाल के पहले आनंद ने एक हिंदी भाषी जो कल्याण लाहा से सवाल पूछा था, तो ये क्या संयोग की बात है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता से ही हुई थी, और ये 200वां साल चल रहा है, कुछ दिनों में हम 200वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो हिंदी को लेकर के सबसे ज़्यादा तो अगर देखेंगे तो कलकत्ता ने ही विकास में योगदान दिया है, सबसे पहले शुरुआती अखबार भी वहाँ से निकले, भारत मित्र निकला, और उदंत मार्तंड की तो चर्चा होती ही है, मतवाला मंडल का जो संपादकीय था वो तो बड़ा फेमस था, मतवाला भी वैसे निकला, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या है कि राजनीति अपने ढंग से इन सब विषयों को उठाती है। ममता बनर्जी ने तो नारा दिया था कि बहिर्गतो, मतलब जो बाहरी है, हाँ। वो आएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाती हैं कि करीब 60 लाख के करीब मतदाता जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए लोग हैं, जो वहाँ के एक जमाने में जो जिन्हें चटकल कहते थे, जूट मिलों में काम करते थे या बाकी उद्योगों में काम करते थे, ये कैसे भूल जाते हैं कि कलकत्ता का जो पूरा स्ट्रीट बिजनेस है, चाय पान की दुकानें हैं, वो इन्हीं पूर्वियाँ लोगों की है, जो ड्राइवर हैं सबसे ज़्यादा वहीं के हैं, तो एक तरह से लाइफ लाइन है, तो ये सब बातें राजनीतिक ढंग से उठाई जाती हैं। जहाँ तक सवाल है कि किन मुद्दों पर मतदाता

0: प्रभावित नजर आया। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, आज ना कई तरह से सूचनाओं का मतलब आदान प्रदान हो रहा है, संचार क्रांति हो चुकी है। बेशक पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि किसी गांव में बहुत ज्यादा बिजली न रहती होगी, लेकिन आजकल लगभग हर हाथ में फोन है, तो सबके पास सूचनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग भी या यूथ भी देख रहा होगा कि हमको क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। और अभी भी जब चुनाव अभियान चल रहा था तो बहुत सारे रिपोर्टरों से युवा बोल रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा पुराना कलकत्ता का वैभव लौटे और उसमें हम आकर के काम करें। तो बहुत सारी बातें होती हैं। और रही बात पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जमाने में खुद भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कहा था कि ममता दीदी साक्षात दुर्गा है। तो दुर्गा वाला जो समाज है वहां महिलाओं की एक खास तरह से इज्जत होती रही है बनिस्बत बाकी जो सोसाइटी है उनकी तुलना में। और उस सोसाइटी में अगर आरजी कर की घटना होती है और घटना अगर हो भी गई तो उसको डील कैसे किया जाए, असली बात ये थी। और कलकत्ता या पश्चिम बंगाल की महिलाओं के मर्म को सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई। और अगर ये नेक टू नेक फाइट दिख रही है या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है रुझानों में, तो आप देखिए कि पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी 2021 में, आप देखेंगे कि जो टोटल वोटिंग हुई थी उसमें 4% पुरुष मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत वोट दिया था और महिला मतदाताओं ने 10% का अंतर था महिला मतदाताओं का। अब ये देखने की बात है, ये तो पूरे नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से दिख रही है भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का तो समर्थन उनसे छीजा है।
1: थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा उमेश जी आपसे, नेक नेक तो बिल्कुल भी नहीं है अभी जैसा दिख रहा है बंगाल में। Behind the humdrum of all these assembly elections, let's not forget that there were by-elections also which were held this time in 7 assembly constituencies across 5 states, and the counting for them are also underway at the moment. And these include Davangere South and Bagalkot assembly constituencies in Karnataka, Baramati and Rahuri constituencies in Maharashtra, Umreth in Gujarat, and Dharmanagar in Tripura, and Koridang assembly constituency in Nagaland. And the BJP is leading in 4 constituencies, while the Congress and the Nationalist Congress Party, that is NCP, are leading in 1 seat each. In Davanagere South constituency, Srinivasa T. Dasa Karyappa of the BJP is leading, while in the Dharmanagar, BJP's Jahar Chakraborty is maintaining a lead of more than 5,600 votes, while in Umreth, Harshad Bhai Govind Bhai Parmar of the BJP is leading by more than 8,300 votes, and in Rahuri, Akshay Shivaji Rao Kardile of the BJP is in the lead. And in the Bagalkot constituency, the Congress candidate Umesh Hulappa Meti is leading by more than 10,000 votes, while Sunetra Ajit Pawar of Nationalist Congress Party is leading in Baramati constituency. Sanjeev Ji.
2: संजीव जी पर वापस आएंगे, लेकिन सुपर वीआईपी टैली पर अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको बता दें कि असम के जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा इस समय काफी बड़ी बढ़त पर चले गए हैं, लेकिन असम के जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय 3,937 मतों से पीछे चल रहे हैं। केरल के धर्मदम से पेनोराई विजयन इस समय 5,008 वोट से पीछे चल रहे हैं। केरल के कांजिरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, 2,086 मतों से पीछे चल रहे हैं। केरल के निमोम से, जिसकी चर्चा कर रहे थे उमेश जी, राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु के पेरम्बूर से सी जोसेफ विजय यानी सुपरस्टार विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर हैं। कोलाथुर से डीएमके के एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। चेपॉक थिरुवालिकेनी से डीएमके के उदयनिधि स्टालिन भी इस समय पीछे चल रहे हैं, क्योंकि विजय 2 जगह से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से भी सी जोसेफ विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर चल रहे हैं। इस समय पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें भवानीपुर से इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार अब सुवेंदु अधिकारी पिछड़ गए हैं और ममता बनर्जी इस समय आगे चल रही हैं। नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही साथ थट्टन चावड़ी से एन रंगासामी, जो AINRC से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3,447 मतों से आगे चल रहे हैं।
1: एब्सोल्युटली संजीव जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द बाई इलेक्शंस, बारामती, सुनेत्रा अजित पवार, वी ऑल ऑफ अस नो व्हाट हैपेंड सम टाइम बैक विद अजित पवार।

0: किया गया है। जो शिवसेना ने वहां से कैंडिडेट दे करके, कांग्रेस ने दे करके हटा लिया था, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन ने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी थी, उसके बाद उसको वापस ले लिया था, तो वो तो ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, अभी मुझे लगता है कि
1: नाउ व्हाई आई एम आस्किंग यू, मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने शुभेंदु अधिकारी को सुना और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने कितना काम किया है, बिग फेस फॉर द बीजेपी इन इन वेस्ट बंगाल, प्रोबेबली द बिगेस्ट एट द मोमेंट इफ यू लुक एट इट. इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या शुभेंदु अधिकारी हमारे अगले मुख्यमंत्री, भाजपा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
0: मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अभी कम से कम 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगा परिदृश्य। और रही बात यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खासतौर पर आप हाल के कुछ वर्षों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे या हेमंत विश्व शर्मा ही होंगे या कौन होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
1: यानी
0: आप
1: कि
0: देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं
1: जी
0: कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पूरा, मतलब एकदम हिस्टोरिक विक्ट्री जिसको कहते हैं, ऐतिहासिक विजय मिली,
1: हाँ
0: शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे लेकिन
1: बिल्कुल
0: मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए ये कहना कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे खासतौर पर आज की भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा
1: थोड़ा
0: मुश्किल है।
1: खतरनाक हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: तो क्या हम कह सकते हैं कि टोपी में से कोई
0: बिल्कुल
1: दूसरा
0: बिल्कुल
1: खरगोश निकल सकता
0: बिल्कुल। इसलिए अच्छा, फिर वो थोड़ा सा चर्चा की शुरुआत अभी बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि प्री है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वोटों पर ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है कि कैसे वोट मिल रहे
1: यू आर प्लेइंग वेरी सेफ उमेश जी, आई अंडरस्टैंड. संजीव जी को जोड़ना चाह रहे हैं.
2: भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया रही है वो चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर ही नहीं करते. अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर है तो उसको चलाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जैसे उमेश जी ने बोला कि शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उनको भी हटा दिया गया. तो बीजेपी की प्रक्रिया पोस्ट पोली होती है, उसके बाद एक प्रक्रिया से जाएंगे,
1: तो
2: ऑब्जर्वर
1: संजीव जी
2: जाएंगे.
1: आपका जो इशारा है, क्या असम में भी बदलाव हो सकता है? क्योंकि ट्रेंड्स में तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही, क्या वहां चीफ मिनिस्टर में बदलाव देख रहे हैं आप?
2: मुझे वहां नहीं लग रहा, क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा अभी नहीं लग रहा, बाद में बीजेपी क्या करेगी, बिकॉज बीजेपी आपने देखा होगा उत्तराखंड में या कई अदर स्टेट, बाकी स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर बदलती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो चीफ मिनिस्टर की है वो खत्म हो जाए. जैसे आप केरला में देखेंगे तो केरला में चीफ मिनिस्टर एंटी इनकम्बेंसी काफी थी उनके खिलाफ. तो केरला में पहली बार लेफ्ट सरकार, जो पूरे विश्व में पहली, वेस्ट बंगाल पहली
0: केरल की सरकार थी
2: केरल में सरकार बनी थी 1957 में.
0: जी
2: तो आज अगर केरला में उनकी सरकार खत्म होती है, अगर कांग्रेस वहां यूडीएफ आती है, तो एक तरह से लेफ्ट का खात्मा होगा और लेफ्ट की अब कोई सरकार नहीं बचेगी पूरे देश में. तो जहां लेफ्ट ने मतलब एक हिस्ट्री बनाई थी कि पूरे विश्व में उन्होंने वो
1: जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेफ्ट का खात्मा होना तय नजर आ रहा है. सो कमिंग टू तमिलनाडु, फॉर द फर्स्ट टाइम द AIADMK हैज नोज्ड अहेड और इंच्ड अहेड ऑफ द TVK एंड DMK, एज वी ऑल नो इज लैंग्विशिंग बैक. AIADMK इंचिंग फॉरवर्ड, नोजिंग अहेड विथ 41 सीट्स एंड द TVK एट 39. दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग व्हेन द काउंटिंग बिगैन दिस मॉर्निंग. जी हाँ बिल्कुल, और जैसा कि तमिलनाडु पर भी चर्चा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के जो ताजा रुझान है, भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही है. एक दिलचस्प आंकड़ा भी आ रहा है उमेश जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे. मुस्लिम बहुल 111 सीटों में से 42 के रुझान आए हैं, जिसमें 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 23 पर तृणमूल कांग्रेस. यानी माना जा रहा था कि एक विशेष वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है, लेकिन इन आंकड़ों से कहानी बदल रही है.
0: बिल्कुल, जो एग्जिट पोल में, कई एग्जिट पोल ने यह बताया था कि करीब 10% मुस्लिम वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, तो अगर ये रुझान में जो दिख रहा है इसी तरह से अगर नतीजे आते हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि एक तो वर्टिकल ध्रुवीकरण हुआ और उस ध्रुवीकरण में भी जो मुस्लिम वोट बैंक से 10% जो एग्जिट पोल ने अंदाज लगाया है, अनुमान लगाया है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 27% अल्पसंख्यक वोट है, मतलब जिसमें मुस्लिम बहुल वोट है, सबसे ज्यादा माना जाता है और बड़ा गजिन भी है, बड़ा ठोस है, खासतौर पर 80 सीटों पर, तो मुझे लगता है कि इसको इस नजरिए से देखा जाना
1: जी
0: चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल. अब समय हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ताजा हाल बता दें. असम में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो कांटे की लड़ाई इस समय तमिलनाडु में हम देख रहे हैं, वहां तमिलनाडु में स्थिति
3: इस समय ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीवी के फेवर

0: में जा रही है, वहां पर 44 सीटों पर टीवी के आगे है, डीएम के 20 पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएम के 38 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 43 पर आगे है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस 58 पर आगे है, सीपीएम 29 पर आगे है और सीपीआई 10 पर आगे चल रही है। हिंदी और अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे बारी बारी से और 10:10 में हम दोबारा जनादेश 2026 के साथ वापस आएंगे। सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: जनादेश 2026।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 116 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 73 सीटों पर आगे है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहाँ 21 मई को मतदान होगा।
1: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 88 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भाजपा गठबंधन ने काफी बढ़त बना ली है और वो 69 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। केरलम में विधानसभा की 140 सीटों में से 112 के रुझान मिल रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने अच्छी बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वामपंथी गठबंधन एलडीएफ 32 सीटों पर आगे है। भाजपा गठबंधन भी 3 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 79 के रुझान मिले हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार सभी गठबंधनों में कांटे की टक्कर चल रही है। एआईएडीएमके गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है, डीएमके गठबंधन 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, अन्य 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 8 का रुझान मिला है। एआईएनआरसी 5 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 1 सीट पर आगे है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदिले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनीत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। त्रिमुरा में धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहोर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तीर्थयात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित

0: sector and ongoing diplomatic efforts to end the war. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Punjab Kings by 4 wickets at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night, chasing a target of 164 runs set by Punjab Kings. Gujarat Titans scored 167 for 6 with one ball to spare. Today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants at Wankhede Stadium in Mumbai. The match will begin at 7:30 p.m. The India Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज पर हंता वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और अधिक मामलों की चेतावनी दी। और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और इसे रास्ते से दशकों से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्याय संगत है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमान के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज खाड़ी से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत नहीं है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
1: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अभी बड़ी कीमत चुकानी है। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में अमेरिका और अधिक कड़ा रुख अपना सकता है। अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल श्री स्टीवर्ट एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। अमरीका के अधिकारियों के अनुसार जेरेड कुशनर ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ वार्ता दल में शामिल करने में मदद की है। इससे पहले श्री स्टीवर्ट फाउंडेशन

फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज से जुड़े थे। ये संस्था ईरान के प्रति कड़ा रुख अपनाने के लिए जानी जाती है। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने अमरीका समर्थित 9 सूत्री शांति योजना के जवाब में एक प्रस्ताव भेजा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि अमरीका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो में उसका सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। कुछ ही दिन पहले मर्ज ने पश्चिम एशिया संघर्ष को ठीक से ना संभाल पाने के आरोप में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी। इसके बाद अमरीका ने कहा था कि वो जर्मनी से अपने 5,000 से अधिक सैनिकों को हटा लेगा। श्री फ्रेडरिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज की खाड़ी को दोबारा खोलने और पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए जारी बातचीत में ईरान की रणनीति बेहतर साबित हो रही है। श्री ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि श्री मर्ज जर्मनी में लोकप्रिय नहीं रह गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय देशों के नेता 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के लिए आर्मेनिया पहुंच रहे हैं। आर्मेनिया को रूस का सबसे नजदीकी मित्र देश समझा जाता है और वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूरेशिया आर्थिक संघ का सदस्य देश भी है। आर्मेनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा भी है। आर्मेनिया को रूस से सस्ती दरों पर गैस मिलती रही है। आर्मेनिया में आज 30 से अधिक यूरोपीय नेता यूरोपीय राजनीतिक समुदाय सम्मेलन EPC में शामिल हो रहे हैं। कल पहला यूरोपीय संघ आर्मेनिया शिखर सम्मेलन होगा। इसमें यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लायन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता भी शामिल होंगे। इस बीच कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल आर्मेनिया में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की थी। यूक्रेन ने हाल के दिनों में यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। श्री जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री स्टारमर के साथ रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग तथा रूस पर प्रतिबंधों का दबाव बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद हुई अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस समूह से अलग होने के ऐलान के बाद आपूर्ति संतुलन बनाने के लिए की गई है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच जारी है। प्रभावित लोगों में एक 69 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक भी है जो जोहान्सबर्ग में एक अस्पताल में गहन चिकित्सा में है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। केनिया में मूसलाधार वर्षा के कारण आई भीषण बाढ़ से इस सप्ताह देश भर में करीब 10 लोगों की मृत्यु की खबर है। अधिकांश मौतें देश के पूर्वी क्षेत्र में हुई। अधिकारियों ने सभी लोगों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों से सतर्क रहने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बचने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करने का आह्वान किया है। इस वर्ष मार्च में केनिया में बाढ़ से कम 112 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस में इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में एक नाव के उत्तरी तट से टकरा जाने के बाद 2 महिलाओं की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। 82 लोगों को ले जा रही ये नाव बुलेगने सुरमेर के पास हॉर्डे लॉट समुद्र तट से रवाना हुई थी। अधिकारियों ने कहा है कि इंजन खराब होने के कारण ये नाव किनारे पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई। मामले की जांच जारी है। चीन पत्रकारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है और इसकी सरकार ने दुनिया भर में पत्रकारिता और सूचना के अधिकार के खिलाफ दमनकारी अभियान चला रखा है। पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स

0: urban middle class came out in large numbers since the TMC government at that point of time. Second is the school service commission corruption. 26,000 teachers lost their jobs, some of whom were innocent. They didn't pay any bribe, but they had to lose their jobs. And third is a general, for example, if you look at the student union elections, we have had students union election for a very long time. The government did not allow any student union election. There were serious allegations of malpractices, rigging during the panchayat elections. So clearly there has been some kind of anger, and now to the results are showing that a very significant amount of anger against the government, and which is now getting translated. And the BJP, through its huge money power, as well as the central agencies, as well as the election commission, trying the SIR is a very contested issue. I would have been very happy if that everybody who are genuine voters would have voted, but that is not the case. That is the most worrying part of this election. Whoever wins, they will always carry this baggage that a large number of our co-citizens, our co-patriots could not vote in
1: जी
0: this
1: बिल्कुल
0: election.
1: शवनील, आगे भी आपसे राय लेते रहेंगे। कुछ प्रमुख सीटों के बारे में आपको बताएं तो मठभंगा जो पश्चिम बंगाल की सुरक्षित सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के निशित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं। दिनहाटा से तृणमूल कांग्रेस के उदयन गुहा पीछे हैं। तूफानगंज से भाजपा उम्मीदवार मालती रवा रॉय पीछे हैं। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पीछे हैं। इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी भी पिछड़ रहे हैं। बागड़ा सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार सोमा ठाकुर ने बढ़त बना रखी है। भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं। यहां तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्र बिहारी सीट से भाजपा के स्वप्न दास गुप्ता आगे हैं। श्याम पुकुर से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शशि पांजा पीछे हैं। शिवपुर से भाजपा उम्मीदवार रुद्रनील घोष ने बढ़त बना ली है। मोयना से भाजपा के अशोक डिंडा पीछे चल रहे हैं। अशोक डिंडा जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। एग्रा से भाजपा उम्मीदवार दिव्येंदु अधिकारी आगे हैं, जबकि आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के अग्निमित्र पॉल आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ सुशील तिवारी जो आकाशवाणी संवाददाता है वो भी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, चूंकि आप चेन्नई में हैं और वहां पर तो एक दूसरे तरह की राजनीति के रुझान हमें नजर आ रहे हैं, चूंकि जो ताजा रुझान है उसमें टीवी के जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है 97 सीटों पर इस समय आगे पहुंच गई है। 214 के रुझान आए हैं। एआईएडीएमके 63 पर आगे है और सत्तारूढ़ डीएमके 37 पर आगे है और उसकी सहयोगी कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि तमिलनाडु में आज जैसे जैसे शाम ढलेगी वहां राजनीति का नया सवेरा होने वाला है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखा है और किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लोगों ने ये जरूर, शुरू में जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने ये जरूर माना था कि जो विजय की पार्टी है टीवीसी, वो थोड़ा बहुत अपने वोट जो है वो वोट परसेंट ले सकती है, वोट शेयर ले सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सीटें उसे मिलेंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो सनसनी जिसे कहेंगे, आज की सनसनी तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की, वो एक जोसेफ विजय हैं जो कि खुद दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं जहां से वो लड़ रहे थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो एमके स्टालिन जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। उनके छोटे भाई, उनके बेटे और डिप्टी सीएम उदय निधि जो है वो भी अपनी सीट से, जो चेपक सीट है चेन्नई की, वहां से पीछे चल रहे हैं। और चेन्नई में एक तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है डीएमके का। स्ट्रांग होल्ड था डीएमके का, पिछली बार पार्टी ने अधिकांश सीटें जीती थी और इस वक्त सभी सीटों पर टीवी के जो है उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और एक तरीके से कहा जाए कि जो सिनेमा जो एक आमतौर पर मनोरंजन का माध्यम है, वो तमिलनाडु में राजनीति में प्रवेश का एक बड़ा माध्यम है, एक बार फिर से साबित हुआ है।
1: Sushil, we are discussing about the TVK factor here, of course. Now, with almost the party nearing 100 seats now, and we see that the DMK as well as the AIADMK languishing far behind.

0: because of the 234 seated assembly, so it is 118. So they may fell short of some seats
1: Right, Sushil.
0: to get the majority.
1: Right, Sushil. In which case, it becomes a bit more, complex. If it falls short of the 118 mark, as you mentioned. So,
0: Exactly,
1: in
0: exactly.
1: which yes. So, in which case, what scenario do you see emerging? Would the BJP, you see, kind of would extend its hand, and catapult him to the throne?
0: Well, it will be too early to say something about where they will get the support from BJP or Congress, but they can eye on some independents also, some little small parties also, which are which can change change sides and go to their fold also. We have our Chennai correspondent Joy with us. She will throw more light on these equations.
2: हेलो
1: जी जॉय,
2: या
1: स्वागत है
2: सी
1: आपका। और आपसे
2: द
1: यही समझना
2: ट्रेंड
1: चाहेंगे कि जी बताएं।
2: या द ट्रेंड शो दैट टीवीके इज सिक्योरिंग द होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज द न्यू जेन व्हिच हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू दैट फैक्टर. एक्चुअली द चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट कोट आई वुड लाइक टू से इट इट सेज दैट विसिल पोडु एंड द सिंबल ऑफ टीवीके is whistle. So I think that it has added some credibility, the game of cricket in elections. Because as far as the state governance is concerned, there is no major issue which is coming in the factor of DMK. And anti-incumbency, we also can't say because of the star status, the place where Jayalalitha was standing with a great charisma, that charisma has been taken over by Vijay. That we can say.
1: जी बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने श्रोताओं को टीवीके के बारे में बता दें। टीवीके यानी तमिलागा वेट्री कजगम, जिसकी स्थापना सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने की थी। 2 फरवरी 2024 को पार्टी बनी थी। पार्टी का मुख्य मकसद तमिलनाडु और पुदुचेरी में राजनीतिक लड़ाई लड़ना था। तमिलागा वेट्री कजगम का अर्थ होता है तमिलनाडु विजय पार्टी। और हमारे साथ यहां पर जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं, और जफर इस्लाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और जो बताएंगे कि किस तरीके से इस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सर, जो शुरुआती रुझान है उसको किस आधार पर आप देखते हैं?
4: देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो वेस्ट बंगाल में जनता की आवाज, जो परिवर्तन चाहती थी जनता, वो उसकी झलक जो है अभी जो रुझान है उसमें दिख रही है। हमने बराबर कहा है, जनता चाहती है वहाँ परिवर्तन, परिवर्तन हो के रहेगा। जो लोगों का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में है, उनके गवर्नेंस मॉडल पे है, और इसलिए जनता चाहती है कि वैसी सरकार हो जो जनता के हित पे काम करे, प्रदेश के हित पे काम करे, उनके उत्थान के लिए काम करे। और इसीलिए जनता जो है बिल्कुल मन बना चुकी थी कि वहाँ पर एक बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन आके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और वहाँ एक अच्छी जो जनता के लिए सरकार होगी।
1: Right, Joy, if you are still with us, okay, she is not with us, it seems. So, Umesh ji, as Joy and others were also speaking some time back in the TVK factor we were talking about. Now, she was also talking about the cinema factor in Tamil Nadu politics. It has always been there, be it the Karunanidhi factor, or MGR, Jayalalitha, so on and so forth. We have been seeing this since decades now. Now, with this Vijay factor coming in, how much of the new generation, kind of the Gen Z, as we call, and others, the younger people, are attracted? And do you also see that the older population, they would have also kind of gone with him this time?
5: बिल्कुल. और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ अपने फिल्म जो अभिनेता होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी मूर्ति बना करके पूजा भी होती है. उसमें से एक अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं, वो खुशबू सुंदर. लेकिन आप देखिए कि वो किसके साथ जनता जाना चाहती है और लोग जाना चाहते हैं. तो निश्चित तौर पर टीवीके के साथ, जिसकी व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले पूरी तरह से हिंदी भाषी और बाकी देश के लोगों के लिए आनंद ने बताया कि उस पार्टी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त कर रही है. जेएनजी जिसके

0: भी हाल में देखे होंगे कि नेपाल के चुनाव में उसका असर दिखा कि एक काठमांडू शहर का 35 साल का मेयर अचानक से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है,
1: बालिंशा।
0: बालन शाह। तो कुछ कुछ वैसा है। लेकिन ये अच्छा, एक चीज और भी है कि तमिलनाडु की राजनीति में आप देखेंगे कि जनता एक तरह से फेनेटिक अंदाज में सपोर्ट करती है, बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा कुछ ज्यादा ही दिखता है। बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि राजनीति करने वाले लोगों को ही, राजनेता को ही जनता पसंद करती है। वहां हीरो फिल्मी दुनिया के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में भी 1984 के चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद के दिनों में आप देखेंगे कि वो क्रेज उत्तर भारत में डाउन हो गया। आप देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन किस तरह से, ज्यादातर लोग तो टीएमसी के साथ ही हैं। तो ये एक भारत विविधताओं का देश है और उसमें एक तरह से चीजें हैं। लेकिन एक चीज है जो इस तमिलनाडु के चुनाव के नतीजों में देखने की है, जो परिसीमन की बात हो रही थी अभी लोकसभा चुनाव सीटों को, और जिस तरह से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की अपने यहाँ व्यवस्था है, और उसका सबसे बड़ा विरोध एम के स्टालिन कर रहे थे। उन्होंने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले रखी थी। उनका कहना था कि हमने परिवार नियोजन को लागू किया, मतलब हमने, उन्होंने पूरे दक्षिण भारत के राज्यों को जोड़ने की कोशिश की थी, क्या इसका हम खामियाजा चुकाएंगे कि हमारी सीटें आनुपातिक रूप से कम हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो एक जमीनी समस्या, अपने ढंग से जमीनी समस्या को उठा रहे थे, जनता ने उसे जमीनी मानने से इनकार कर दिया।
1: दक्षिण भारत में अमूमन सफेद कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से आधारित जो कानून अभी संसद के विशेष सत्र में लाया गया था, काले कपड़े पहनकर आए थे एमके स्टालिन और उनके सांसद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें आप देखिए कि किस तरह से जनता ने उनको नकारा है। तो आने वाले दिनों में इसका भी एक बड़ा असर पड़ेगा, जो इस मुद्दे पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं बन रहे हैं, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन रहे हैं। और जिस तरह से स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, हालांकि आपने सुशील से पूछा तो बोल रहे थे कि छोटी पार्टियां बहुत ज्यादा नहीं जीत पाई हैं, जिस तरह से रुझान दिख रहा है नहीं जीतती नजर आ रही
1: एक
0: है।
1: दो सीट
0: हाँ,
1: कहीं
0: पीएम के 6 सीट और 3 और लोग जीत रहे हैं, तो ये 9 लोग मिलकर के भी सरकार, जिस तरह से टीवीके को बहुमत मिल रहा है, उसको कम से कम 15-18 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं मिल पाएगा। तो मुझे किसी ने लगता है कि किसी न किसी बड़ी पार्टी से, और वो स्वाभाविक रूप से बड़ी पार्टी एआईडीएमके ही हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, जिस तरह से एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश करेगी। लेकिन कई सारे मुद्दे प्रभावित होंगे। एक चीज और देखिए कि दक्षिण भारत के राज्यों को इस बात का बड़ा गर्व रहा है कि वो उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में ज्यादा विकास किए हैं। तो ज्यादा विकास का मतलब तो ये होना चाहिए कि वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, जेन जी को उनके पीछे जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है कि ऐसा जो रुझान में नतीजे दिख रहे हैं, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं। भारत को समझने के लिए एक नजरिए से आप नहीं समझ सकते हैं। एक राज्य में कुछ और मुद्दे प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे राज्य में कुछ और मुद्दे होते हैं। लेकिन एक चीज है, असम और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दोनों जगह पर मामला उछलता रहा है घुसपैठ का, अवैध जो घुसपैठिए होते हैं, वैसे तो घुसपैठ अवैध ही होती है, तो वो मामला सबसे ज्यादा आप जानते हैं असम में उठता रहा है। असम में एक नई पार्टी बनी थी 1985 में, असम गण परिषद, जो अभी भारतीय
1: जेपी
0: जनता पार्टी के साथ है, उसने सरकार भी चलाई।
1: प्रफुल्ल महंता
0: जी हॉस्टल से सीधे लोग गए थे दिसपुर में शपथ लेने के
1: यस
0: लिए,
1: यस
0: यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से।
1: यस
0: तो वो मामला वहां बहुत, वही मामला पश्चिम बंगाल में है। तो कम से कम भारत के 2 राज्यों में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और चुनाव नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जी
1: पश्चिम बंगाल से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भवानीपुर से एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ गए हैं। इस समय 6,380 मत उन्हें प्राप्त होते नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी के पास 4,822 मत हैं, जो अभी की काउंटिंग है। उस हिसाब से कुछ और हाई प्रोफाइल सीट्स पर हम नजर डाल लेते हैं तो जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा लगातार आगे बने हुए हैं, लेकिन जोरहट से गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के फेस माने जा रहे थे, बड़ी संख्या से पीछे चले गए हैं। पिनराई विजयन, एक और बड़ा नाम जो केरल के धर्मदम से हैं, वो भी पिछड़ रहे हैं। कांजीरपल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट जॉर्ज कुरियन पिछड़ रहे हैं, जबकि कझुकटम से वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पीछे चल रहे हैं।

0: where he's fighting an election. He's the sitting MP from that seat. And he had clinched that seat in 2024, even when BJP put the entire machinery in that seat, and he won with a margin of, I don't remember the exact number, but it was upwards of 40,000, the margin was that. Now, in that very seat, if in the assembly segment you're not going to win, then it says, it really tells the Congress party that they need to introspect into their own electoral, forget about the electoral effort that they put in, but also the organizational issues that they might have. If you see, the Congress lost some really big names in the state in the run-up to the assembly elections. The president was
1: जी अमृता आपके पास वापस दोबारा लौटेंगे. कल्याण लाहा आकाशवाणी संवाददाता कोलकाता से जुड़ गए हैं. कल्याण, वहां पर भवानीपुर में जोरदार संघर्ष है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने के बेहद करीब है. बहुत संक्षेप में.
2: हेलो, देखिए, जैसे अभी का ट्रेनिंग अभी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत सारे सीट्स में अभी आगे चल रहा है. भवानीपुर में कांटे का टक्कर अभी चल रहा है, नेक टू नेक फाइट हो रहा है. बट बीजेपी इज लीडिंग इन मेनी इम्पोर्टेंट सीट्स लाइक इन पानीहाटी, इन नॉर्थ बंगाल दिनहाटा, एंड इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट बीजेपी कैंडिडेट इन कोलकाता प्राइम सीट दे आर लीडिंग एट दिस मोमेंट.
1: जी बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना भी जारी है. ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं. अगर वहां की स्थिति बताएं तो उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं. बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुल्लप्पा मोती आगे हैं. दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दस करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं. राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदीले आगे हैं. बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं. अजीत पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. और धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं.
3: Yeah, Umesh, you know, it's almost nearing 11 a.m. now. Earlier than expected, we would think that probably by noon or by 1 p.m. or so, the picture would get more clearer. But it seems that even at 11 a.m., just 3 hours into the counting or more than that, the picture is getting more and more clearer. And probably if the trend continues, we see this thing standing.
4: अब बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है. जैसा कि अभी अतीत का इतिहास जो है, अभी अतीत के जो अनुभव हैं उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और उस तरह से आप जानते हैं. आज एक खास तौर पर आजकल हालिया कुछ चुनावों में आप देखेंगे कि जनता क्लियर मैंडेट दे रही है. हालांकि तमिलनाडु में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर भी वो लगभग क्लियर मैंडेट की ओर जाता हुआ दिख रहा है तमिलनाडु. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर पढ़ने वाला है जो अभी के रुझान है. जी,
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन पर ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता दें कि असम में जो ताजा हाल है, भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 25 पर आगे है. केरल में जो इस समय स्थिति है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 61 पर आगे है, सीपीएम 29 पर आगे चल रही है, सीपीआई 9 पर आगे है. पुद्दुचेरी में इस समय भारतीय जनता पार्टी 3 पर आगे है, एआईएनआरसी 8 पर आगे है, डीएमके 2 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाए हुए है. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 141 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है, सीपीएम 1 पर वहां पर आगे है. तमिलनाडु में बात करें तो टीवीके ने सबको चौंकाते हुए 106 सीट पर बड़ी बढ़त ले ली है. सत्तारूढ़ डीएमके 35 पर आगे है, जबकि एआईएडीएमके इस समय 68 सीटों पर आगे चल रही है. तो अंग्रेजी और हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी पर, लेकिन 11:10 पर जनादेश 2026 के साथ हम वापस आएंगे और चर्चा जारी रहेगी. पूरी टीम को दीजिए अनुमति. नमस्कार.
3: नमस्कार.
5: जनादेश 2026.
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष.
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. असम पश्चिम पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। अब तक के रुझानों में विधानसभा की 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 6 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यह 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा के पास। कल्याण, मतगणना के 3 घंटे बीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ताजा स्थिति क्या है?
8: देखिए कनकलता, अभी बहुत सारे सीटों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 6 से ज्यादा सीटों में अभी बीजेपी लीड में है और टीएमसी बहुत पीछे पड़ा हुआ है। और भवानीपुर जो इम्पोर्टेंट सीट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही है, उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडिंग में है और शुभेंदु अधिकारी दूसरे सीट में जो लड़ रहे हैं अभी नंदीग्राम में। दोनों ही सीटों में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का भी लीड में चल रहा है। और पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है, जो टीएमसी का घर है, उसमें भी बहुत सारे सीटों में बीजेपी आगे चल रहा है और बांकुड़ा पुरुलिया में भी काटे का टक्कर चल रहा है। और तीनहाटा जो एक इम्पोर्टेंट सीट है, उसमें बीजेपी कैंडिडेट अभी आगे चल रहा है।
7: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। असम में विधानसभा की 126 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। भाजपा 76 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर पीछे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 94 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलजीएफ केवल 44 सीटों पर आगे चल रहा है। एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादम सीट पर पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों में से 218 सीटों के रुझान मिले हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 100 सीटों पर बढ़त के साथ अन्य दलों से आगे चल रही है। एआईएडीएमके 64 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ डीएमके 37 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 18 सीटों के रुझान मिले हैं। एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे है, कांग्रेस ने 3 सीटों पर और डीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेथी आगे हैं। दावणगिरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देशभर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: read one by one, except for Kerala, where the UDF is coming back to power, where Congress, of course, is the leading partner. But I think it's early to analyze all the elections. But initial trends indicate that West Bengal, BJP is doing extremely well. And in Tamil Nadu, the film star turned politician Joseph Vijay is also emerging as a star.
1: जी, और इस बीच हमारे संवाददाता दीपेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से बात की है। जी,
2: शुरुआती ट्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन हम खास तौर पे जो हमारा सवाल होगा पश्चिम बंगाल को लेकर, कैसे देख रहे हैं इसे?
3: देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस प्रकार की विकास की प्यास और आवश्यकता पूर्वोत्तर को थी, उसी को देखते हुए आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक महिला विरोधी तुष्टिकरण वाली सरकार को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया है और मोदी जी की सरकार को लाने के लिए वो वहाँ पे तत्पर है। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है, इसका मतलब हम सरकार जब चलाते भी हैं तो अनलाइक DMK, अनलाइक लेफ्ट पार्टी या अनलाइक TMC, हमारी सरकार डिलीवर करती है, इसलिए तीसरी बार भी हमारी सरकार बनती है।
1: जी, दीपेंद्र हमारे संवाददाता बीजेपी प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से बात करते हुए। उमेश जी, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल को एक लास्ट फ्रंटियर के रूप में देखा जाता था अभी तक, कि उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में बात करें तो भाजपा अपना परचम लहरा चुकी थी। ये एक ऐसा मात्र राज्य बचा था जहां पर कि बीजेपी भाजपा बहुत दिनों से और बहुत सालों से मेहनत कर रही थी। जनसंघ के संस्थापक जो हैं शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका गृह राज्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का सत्ता में आना, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है और राष्ट्रीय राजनीति पे इसके क्या असर अब आने वाले वक्त में देख रहे हैं?
4: देखिए, माना नहीं जाता है, उन्हीं का गृह राज्य है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। वहीं कलकत्ता के रहने वाले थे, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि 1967 में जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो संयुक्त विपक्ष के ने चुनाव लड़ा था, तो उसमें 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से भारतीय जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल जीते थे। पहली बार वहां जीती थी भारतीय जनता पार्टी 1967 में, तब उसका नाम भारतीय जनसंघ होता था। 58 सीटें लड़ा था भारतीय जनसंघ उस बार, लेकिन एक सीट पर जीत मिली थी। तो निश्चित तौर पर जिस राज्य के निवासी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ के संस्थापक, वहां जीत के एक अपने मायने हैं। दूसरी क्या है कि एक चीज जो हम पूरी चर्चा में छोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल हल के नहीं बल्कि नक्सलवाद के उभार के बाद से देखेंगे तो चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़े बहुत नहीं 58 लोगों की मृत्यु हुई थी, ऑन द रिकॉर्ड मारे गए थे चुनावी हिंसा में। जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसमें 75 लोग मारे गए थे। ये पहला चुनाव है जिसमें एक भी मौत नहीं हुई है, ये बड़ी बात है, इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग आजकल बड़ा सवालों के घेरे में रखा गया है कि उसने एक तरह से 2.5 लाख केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और BSF और ITBP और CISF के जवानों को उतार करके उसने चुनाव कराया, और हम भूल जाते हैं कि KJ राव 2005 में चुनाव आयोग के एडवाइजर थे और उन्होंने अगर इस तरह से कड़ाई नहीं की होती तो शायद बिहार में भी, जो वो भी चुनावी हिंसा और बूथ लूट के लिए जाना जाता था, वहां पारदर्शी और स्वच्छ मतदान नहीं हो सकता था। तो इन जो पश्चिम बंगाल में जीत जो है ना, पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहां देखिए असम में जीत चुकी है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरुणाचल में है, त्रिपुरा में है, अब वहां एक पश्चिम बंगाल एक प्रश्न प्रदेश बनकर रहा था, तो अब प्रश्न प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने हल कर लिया है। चुनाव आयोग को भी हम लोगों को बधाई देनी चाहिए कि उसने हिंसा मुक्त चुनाव कराया है, बहुत छिटपुट हिंसा हुई है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की ओर से एक मैसेज भी आया है, बाकी चार राज्यों में चुनावी वीसा को रोकने के लिए वो बड़ी पूरी तरह से मुस्तैद है। और पश्चिम बंगाल की जीत जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो अब अगले साल

0: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं, या उसके ठीक अगले साल फिर एक साल बाद राष्ट्रीय चुनाव होंगे,
1: जी
0: तो इन चुनावों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्साह का काम करेगा। और हर चुनाव में जब जीत मिलती है किसी भी पार्टी को,
1: जी
0: तो उत्साहित होती है। उत्साहित तो कांग्रेस भी होगी, क्योंकि यूडीएफ को उसको
1: केरल
0: जीत
1: में
0: मिल रही
1: जी
0: है
1: जी
0: केरल में, तो ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए।
1: जी अशोक जी
2: या मैं इसमें थोड़ा खेल प्रेमियों के लिए एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं कि
1: जी
2: पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, टेनिस, इनके कई लोकप्रिय खिलाड़ियों को टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को
1: जी
2: टिकट दिया था, और इसी तरह अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर शिवशंकर पॉल को मैदान में उतारा, और आगे देखें तो जो टीएमसी ने जो स्वपन बर्मन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको उतारा।
1: जी
2: इसी तरह से और बहुत नाम
1: जी जी
2: हैं।
1: अशोक जी, वी हैव विद अस बीजेपी स्पोक्स पर्सन तुहिन सिन्हा हैज जॉइंड अस ऑन लाइन राइट नाउ। मिस्टर सिन्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026। सर, व्हाट आर योर इनिशियल यू नो कमेंट्स ऑन योर थॉट्स ऑन द ट्रेंड्स दैट आर कमिंग इन?
3: Well, it's no longer, just the trends, because the trends have held on for the last 3.5 hours now.
1: Right.
3: So very clearly, the BJP is headed towards a 3-2 win. Of course, in Puducherry, it's an NDA government which seems to
1: Yes.
3: be on its way. But in Assam, it's a very decisive win. In West Bengal, again, it's a very comprehensive win. It's not a close election at all. And if the present trends hold, we are on course to get more than 175 seats at least. Now, very clearly, it's a rejection of the Diamond Harbor model of governance, where intimidation of women, threats, and crime were holding sway. And people have expressed their faith in BJP's promise to revive, the rule of law in the state. So it's end of TMC's Gunda Raj in West Bengal.
1: तोहिन जी, आपसे मैं खासकर वेस्ट बंगाल की बात करना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा कि हम जो ट्रेंड्स भी देख रहे हैं, 170 सीटों पे बीजेपी पहले अभी ऑलरेडी लीड कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो वहां पर जहां सरकार थी जिसकी अब तक, वो सिर्फ 93 सीटों पर है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा एक जो फैक्टर था वो बीजेपी जो अपना इतनी इसने बढ़त ले ली? पिछले
3: देखिए, हमारा
1: इलेक्शंस में
3: हमारा
1: 77
3: पूरा
1: सीटें थी।
3: मैसेजिंग, हमारा पूरा संवाद ही जनता से भय बनाम भरोसा था।
1: जी
3: तो जो टीएमसी के आतंक का माहौल पिछले पिछले 15 सालों से चल रहा था,
1: जी
3: और पिछले 45 दिन में तो टीएमसी के अगर नेताओं का भाषण आप सुने,
1: जी
3: तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो ये लोग व्यवहार ही नहीं कर रहे थे। इनका पूरा आचरण एक माफिया एम्पायर का था। लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो आज महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। अगर आप देखें, रीता देवनाथ जी बड़े मतों से रीता देवनाथ जी जीत रही हैं, रेखा पात्रा जी जीत रही हैं। तो महिलाओं ने जो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि जब सोशल वेलफेयर के द्वारा महिलाओं को बेनिफिट्स भी मिलता है, तब भी महिलाएं उस पार्टी को वोट नहीं देगी जो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, जो गुंडा राज के जरिए उनको भय के वातावरण में रहने पर मजबूर करती है। तो निश्चित रूप से महिलाओं ने बड़ी संख्या में हमें वोट दिया। और ये जो जो भाजपा का परफॉर्मेंस रहा है
1: जी
3: पश्चिम बंगाल में,
1: जी
3: प्रेसिडेंसी का क्षेत्र जो हमारे लिए कठिन क्षेत्र माना जाता था,
1: जी
3: वहां पर भी हमारे सीट बड़ी बड़ी संख्या में हमारी सीट्स में बढ़ोतरी हुई है। नॉर्थ बंगाल तो हमारा स्ट्रांग एरिया है ही,
1: जी
3: पर पूरे बंगाल में इंक्लूडिंग वो मथुआ बेल्ट में इस बार लोग संशय पैदा कर रहे थे कि मथुआ कम्युनिटी शायद वोट ना दे, SIR में कुछ त्रुटियां आई हैं, उस वजह से मथुआ कम्युनिटी के गढ़ों में भी वहां पर भी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई हमारे पक्ष में। तो मेरे ख्याल से पूरे एक मत में बंगाल की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और टीएमसी के भय के वातावरण को पूरी तरह से नकारा है, एक करारा जवाब दिया है।
1: मिस्टर सिन्हा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस टाइम अबाउट you know the Assam, you are the BJP led NDA is looks you know to be heading towards forming the third consecutive government now. The interesting thing here is that in the past two elections the BJP was not able to get a majority on its own. It was not able to cross the six figure of 60, but this time as we can see the trends
3: well,
1: are showing us.
3: In Assam it's very clearly this
1: yes.
3: was very clearly a report card versus Congress party's minority card election,
1: right?
3: And people have preferred the report card. in Assam this time it was always meant

0: लीजिए, अभी नहीं आए हैं, रुझान है इसी पर, वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता केरल के जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, जो रुझान है, उनको देखे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
1: जी धन्यवाद सकलन। चतुर्वेदी जी, ये यहाँ पर केरल की बात अभी हम कर रहे थे, हमारे संवाददाता भी कांग्रेस मुख्यालय से बता रहे थे, केरल में कांग्रेस की वापसी एक तरीके से देखा जाए तो क्या अब हम ये मान के चलें कि वाम दल जो है या वाम राजनीति जो है अब एक आखिरी किला माना जाता था केरलम को, वहां से भी अभी धीरे धीरे दरक रहा है?
2: आजादी के बाद ये पहला मौका है, वैसे तो पहली बार 1957 में केरल में ही चुनी हुई, कोई दुनिया की चुनी हुई पहली वामपंथी सरकार बनी थी। तो ये तो सही है कि आजादी के बाद भारत में पहली बार कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां वामपंथ की सत्ता में सीधी भागीदारी हो या सत्ता जिसके हाथ में है। और जो अनुभा जी ने जो पहले सवाल पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 25 सालों के अंतराल के बाद 133 सीटों के साथ अपने दम पर, हालांकि गठबंधन में चुनाव लड़ा था डीएमके ने, अपने दम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। इसका मतलब जनाकांक्षाओं का एक बड़ा उफान उनके साथ था और आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके विरोध में, कभी भाषा के मुद्दे पर, जबकि भाषा वहां गौड़ हो चुकी है, हिंदी का मामला इतना सिर्फ राजनीतिक ढंग से उछाला जाता है। श्रीधर बेम्बू जो जोहो के संस्थापक है, उन्होंने कह दिया था कि भैया अगर आप हिंदी नहीं सीखोगे तो बड़ी कठिन नहीं होती है, तो उनको भी एक तरह से ट्रोल किया गया था। और वो जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने से इनकार, आप जानते हैं तमिलनाडु अकेला राज्य जहां नवोदय विद्यालय नहीं है अभी भी। तो केंद्र की नीतियों का विरोध में राजनीति करना, 133 अकेले दम पर, 234 में 133 पाना, ये बड़ी बात थी। तो निश्चित तौर पर ये हार ममता बनर्जी की हार से कहीं कमतर नहीं है, ये भी बड़ी हार है तमिलनाडु की। और दूसरा जो केरल में आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस उभर रही है, ठीक है अभी जीती है तो माना जाएगा कि उभर रही है, लेकिन केरल में जो जीत हो रही है वो विकल्पहीनता के चलते यूडीएफ की जीत है। अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार, ठीक है कि उसको 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, नेमम पलकड़ और एक तीसरी सीट है, तो लेकिन उसने वोट शेयर उसका लगातार बढ़ रहा है, पिछली बार के 16% की तुलना में, अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन शायद 20% से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है कि आगे अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुझे लगता है जो आपने अभी पिछले सवाल में पूछा था ना कि पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहां कब्जा हो गया, तो अब वो कंसंट्रेट करेगी दक्षिण के राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में तो उसकी उपस्थिति मजबूत पहले से है ही, तेलंगाना में मजबूती से वो बढ़ ही रही है, तो अब वो कंसंट्रेट करेगी, तो मुझे लगता है कि अगला उसका टारगेट केरल ही होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि उसकी सत्ता में वापसी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। जी
3: अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
4: केरल के बारे में, केरलम के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछले चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने जीत हासिल की थी दोबारा, क्योंकि उससे पहले हमेशा बदल होता रहा और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर रही केरल में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां काम बहुत अच्छा है। तो पहले ये माना जाता था कि जो यूडीएफ है, कांग्रेस लेड यूडीएफ, क्योंकि उसमें केरला कांग्रेस है, उसमें मुस्लिम लीग है, तो जो हिंदू वोटर था वो अंत में जाकर जब देखता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं तो वो एलडीएफ को वोट दे देता था, क्योंकि केरला में लेफ्ट फ्रंट को हिंदू पार्टी माना जाता है। लेकिन इस बार ज्यादा जोर लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष तौर से जब वो त्रिवेंद्रम की म्यूनिसपैलिटी जीत गए तो उनको लगा कि अब हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो हमको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, इसलिए राजीव चंद्रशेखर को वहां भेजा गया और उन्होंने पूरा दमखम लगाया, और उसके चलते अगर वो 2-3 सीट अगर जीत रहे हैं या लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका मत प्रतिशत बढ़ने वाला है। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान एलडीएफ को हो रहा है ऐसा दिखता है, क्योंकि पहले अगर आखिरी मोमेंट पर संघ और भाजपा का वोट एलडीएफ को चला जाता था जिसके कारण वो जीतते थे, इस बार अगर वो नहीं जा रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाह रही है, तो हो सकता है अंत में चलकर ये एलडीएफ की हार का एक कारण ये भी बने कि जो हिंदू वोट है जो एलडीएफ को मिलता था वो इस बार बढ़ गया है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाह रही है और वोट प्रतिशत बढ़ाकर आगे विकल्प बनना चाहती है। तो शायद केरल की जब एनालिसिस होगी केरलम की, तो ये एक

0: कर भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: एंड नाउ लेट्स गो ओवर टू कोलकाता वेयर आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट कल्याण लाहा इज विद अस। कल्याण, वेलकम टू द प्रोग्राम। व्हाट इज द लेटेस्ट दैट यू हैव फॉर अस फ्रॉम वेस्ट बंगाल?
2: द लेटेस्ट न्यूज इज वेस्ट बंगाल में जो है अभी बीजेपी इज लीडिंग इन 156 सीट्स एंड तृणमूल कांग्रेस इज लीडिंग इन नियरली 82 सीट्स एंड इन मेजर फाइट इन भवानीपुर सीट। Sometimes we note that the Trinamool Congress is Mamata Banerjee is leading, and sometimes we see that the Shubhendu Adhikari is leading, and there is a neck-to-neck fight we are witnessing here. And in a significant development that in all the districts where Trinamool Congress candidates were sitting position, and they are trailing, and BJP is leading in many seats. In several districts where there was no presence of BJP earlier.
1: कल्याण, वेस्ट बंगाल में इस बार जो काउंटिंग के दौरान जो सुरक्षा इंतजाम किए गए बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम है और पिछले कई चुनावों के अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छा इंतजाम किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं?
2: देखिए, आपने सही बोला है एकदम। पिछले चुनाव लोकसभा हो और विधानसभा है, हमने देखा है कि बहुत वायलेंस होता था। इवन काउंटिंग के दिन भी बहुत वायलेंस होता था, एजेंट को जो अपोजिशन एजेंट्स को मारा पीटा जाता है, ऐसे भी हम इंस्टेंसेस देखते हैं। बट अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए है, टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, 3-लेयर सिक्योरिटी है आपका काउंटिंग सेंटर में, अंदर एकदम अंदर है आपका CAPF। और इसमें और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है हिस्ट्री में जैसे देखा नहीं गया पहले, पुलिस ऑब्जर्वर भी काउंटिंग सेंटर में है बट उसको एकदम भीतर में अलाउड नहीं है। तो सीनियर एक IPS ऑफिसर होगा, सारी काउंटिंग सेंटर में है और ऑब्जर्वर भी है और राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसे में हम देखे कि वोटिंग के दौरान 23rd में और 29th में जो वोटिंग हुई, कोई भी वायलेंस ऐसा मेजर नहीं हुआ है, अभी तक कोई वायलेंस का इंसिडेंट नहीं है, पूरे एकदम शांतिपूर्ण से सभी जगह में काउंटिंग हो रहा है।
3: जी कल्याण, अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम, ये ऐसे जिले रहे हैं जहां पर कि 118 सीटें 294 में से यानी कि 40% सीटें इन्हीं जिलों से आती हैं। और 2021 में TMC ने कुल 103 सीटें इन्हीं 6 जिलों से पाई थी। इस 2026 में इस बार क्या स्थिति है वहाँ की, कुछ जानकारी आपके पास है ताजा?
2: देखिए, अभी तक जो ट्रेंडिंग अभी दिख रहा है इस जिले में, सारी जिले में जैसे आप मेंशन किया है अभी, बीजेपी बहुत सी जगह में इस जिले में सीट जो कंस्टिट्यूएंसी है लीड कर रहे हैं। अभी देखिए मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी बहुत सारे सीट्स में लीडिंग कर रहे हैं, दक्षिण 24 परगना में भी लीड कर रहे हैं और उत्तर 24 परगना में भी लीड कर रहे हैं। अभी बीजेपी की स्थिति अभी बहुत अच्छा है, बाकी अगर पास्ट इलेक्शन के हम कंपेयर करें तो अभी बहुत पुख्ता स्थिति है बीजेपी का।
1: जी कल्याण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड बिफोर वी टेक द प्रोग्राम अ लिटिल फर्दर, विशाल, लेट्स गिव आवर लिसनर्स द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग।
3: जी, ताजा रुझान हम अपने श्रोताओं को बता दें। तमिलनाडु से जो हमारे पास ताजा रुझान आ रहे हैं, पेरम्बूर सीट से टीवी के उम्मीदवार सी जोसेफ विजय बढ़त बनाए हुए हैं, कोलातूर से डीएम के उम्मीदवार MK स्टालिन पीछे चल रहे हैं, हार्बर से डीएम के उम्मीदवार PK शेखर बाबू पिछड़ रहे हैं, चेपक तिरुवल्लिकेणी से डीएम के उम्मीदवार उदय निधि मारन पीछे हैं, अन्नानगर से ऑल इंडिया अन्ना डीएम के उम्मीदवार S गोकुल इंदिरा पीछे चल रहे हैं, सैदापेट से डीएम के उम्मीदवार सुब्रमण्यम पीछे हैं और माइलापुर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पीछे चल रहे हैं। श्री पेरम्बूर सुरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के सेल्वा पेरुनतगई पीछे चल रहे हैं, कटपड़ी से डीएम के उम्मीदवार दुरई मुरुगन पिछड़ रहे हैं, पेनागरम से कांग्रेस उम्मीदवार GKM तमिल कुमारन पीछे चल रहे हैं, धर्मपुरी से PM के उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि बढ़त बनाए हुए हैं, किलपेन्नातूर से डीएम के उम्मीदवार पिटचांडी के पीछे हैं, एडापड़ी से ऑल इंडिया अन्ना डीएम के उम्मीदवार एडापड़ी पलनीसामी आगे चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये, और गोबी चेट्टीपलियम से टीवी के उम्मीदवार सैन गोट्टियन KA बढ़त बनाए हुए हैं, अवंशी सुरक्षित सीट से भाजपा के डॉक्टर L मुरुगन पीछे हैं, कोयम्बतूर उत्तर सीट से भाजपा उम्मीदवार बनती श्रीनिवासन पिछड़ रहे हैं, कोयम्बतूर दक्षिण से डीएम के उम्मीदवार V सेंथल बालाजी बढ़त बनाए हुए हैं, तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से

0: एटीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आगे चल रहे हैं। कुरिंजीपड़ी सीट से डीएम के उम्मीदवार एमआरके पनीरसेल्वम पीछे हैं। करईकुड़ी से एनटी के उम्मीदवार सीमन पिछड़ रहे हैं और तिरुपत्तूर से डीएम के उम्मीदवार पेरिया करुप्पन बढ़त बनाए हुए हैं। बोडीनायाकुरनूर से डीएम के उम्मीदवार ओ पनीरसेल्वम बढ़त बनाए हुए हैं। सत्तूर से भाजपा उम्मीदवार नैनार नांगेरतरन पीछे हैं और राधापुरम से डीएम के उम्मीदवार अप्पवू एम पिछड़ रहे हैं।
1: और इसके अलावा 5 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे। चलिए आपको उनके रुझान बताते हैं। तो जैसे कि मैंने भी कहा था कि 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी आज हो रही है। ये 7 सीटें हैं: गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडंग और त्रिपुरा में धर्मनगर। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार आगे हैं, चल रहे हैं। बागलकोट कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश खुलप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिका अर्जुन आगे हो गए हैं। अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव कर्दिले आगे हैं। बारामती से पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं। और नागालैंड में कोरिडांग से भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमेचेन आगे हैं। वहीं त्रिपुरा में धर्मनगर से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे
0: जी
1: हैं।
0: अनुभा, कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं,
1: जरूर।
0: क्या वहां पर इस समय ताजा स्थिति है? असम की अगर हम जानू कबारी सीट की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के भाजपा के आगे चल रहे हैं और लीड बनाए हुए हैं। असम से ही जोरहट सीट से जो है गौरव गोगोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे चल रहे
1: जी,
0: हैं।
1: आई विल, यू नो विशाल, व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज दैट गौरव गोगोई इज एक्चुअली द सिटिंग एमपी राइट नाउ फ्रॉम जोरहाट। ही वन द यू नो मैसिव मार्जिन इन 2024 इलेक्शंस, एंड टू सी हिम यू नाउ लीडिंग इन द असेंबली इलेक्शंस। बिफोर यू गिव एनी मोर ट्रेंड्स, आई वांट अ कमेंट फ्रॉम बोथ उमेश जी एंड अशोक जी ऑन दिस।
2: So it's very interesting. On the eve of the election,
1: यस
2: Hemanta Biswas said, "I want him to win. I want Gaurav Gogoi to win and come to the assembly, and then I will show him what exactly we have done. My performance, because sitting in Lok Sabha, he may not be observing my performance in Assam, but unfortunately, he is losing. So having won the Lok Sabha election, Gaurav Gogoi is trailing, and he was the Congress face
1: Yes,
2: for the Assam
1: exactly.
2: election. He was perhaps emerging as a very popular. He's a very good parliamentarian, no doubt about it. So he was. That's why he was asked to go and contest the assembly election, and perform well as far as Congress is concerned, because Congress had been ruling Assam for a very long time. And only when they lost Hemanta Biswa Sarma, he left
1: Yes.
2: Congress and joined BJP. That was a huge loss for Congress. But now he's trailing. But Hemanta Biswa wanted him to win and become leader of opposition so that he can face to face tell him the performance of the Hemanta Biswa government in Assam.
1: उमेश जी,
3: तरुण गोगोई
1: बेटे
3: के पिछड़ने के संबंध में आपने सवाल पूछा है,
1: गौरव गोगोई
3: सॉरी गौरव गोगोई,
1: जी
3: तरुण गोगोई के बेटे हैं,
1: जी
3: सॉरी। हाँ जी, देखिए, तरुण गोगोई निश्चित तौर पर कांग्रेस का असम में चेहरा थे, और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, वो हाफ हार्टेड जिसको कह सकते हैं कि वो
1: जी
3: चुनाव लड़ा है। और एक चीज और ध्यान में देने की है कि असम के प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे, पवन खेड़ा प्रकरण भी वही हुआ,
1: जी
3: और जिस तरह से इसको उछाला गया और जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने भी उसको टेकल किया, जिस पर कि अभी पवन खेड़ा को 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि वो जीत सकती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एक चीज और भी था कि कांग्रेस के तीन जो कैंडिडेट की लिस्ट 3 जगह तैयार हो रहे थे, एक प्रियंका गांधी तैयार कर रही थी, एक भूपेश बघेल कर रहे थे, और तीसरा राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो उनके स्टार चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने शायद एक ही दिन असम में प्रचार किया। तो निश्चित तौर पर आप जब किसी को नेता प्रोजेक्ट करते हो और उसके पीछे अगर पूरी तरह से खड़े नजर नहीं आते और उस नेता का कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व तो नहीं होता जिस तरह से कि हेमंत विश्व शर्मा का दिख रहा है, तो ये ऐसे ही नतीजे आने थे। तो एक चीज तो ये है कि कांग्रेस अगर, जैसे कि टंडन जी बता रहे थे कि अगर

0: गौरव गोगोई जीत गए होते
1: हाँ
0: तो शायद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जोरहाट की सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, तो शायद वो भी सीट कांग्रेस के खतरे में पड़ सकती थी। कम कह सकते हैं कि वो सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब रही है, जोरहाट की लोकसभा सीट। तो मुझे लगता है कि इस तरुण गौरव गोगोई की जो का पिछड़ना है वो कांग्रेस के लिए एक आईना हो सकता है कि आपको किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए और किस तरह से अपने लोगों को साध के रखना भी चाहिए।
1: जी
0: क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा कहा जाता है कि वो पहले तरुण गोगोई के ही लेफ्टिनेंट थे, हालांकि मेरे पास जानकारी ये भी है कि वो अहमद पटेल के भी लेफ्टिनेंट थे और उनके लिए भरूच में भी काम करते थे।
1: जी
0: लेकिन किस तरह से वो कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और ना सिर्फ वो असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर आयातित नेताओं को इस तरह से नंबर वन की सीट नहीं मिलती रही है,
1: जी
0: इस परंपरा को भी वो तोड़ने में कामयाब होते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके चमत्कारित नेतृत्व के सामने गौरव गोगोई की जो स्थिति है वो शोचनीय है, कही
1: जी
0: जाएगी, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है।
1: जी अशोक टंडन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
2: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व का जो फेल्योर है वो केवल चुनाव जितवाने तक नहीं है, वो अपने नेताओं को संभाल के रखने की भी एक समस्या है।
1: जी
2: और हेमंत बिस्वा शर्मा उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। वो कांग्रेस के
1: बिल्कुल
2: स्टालवर्ट थे पूरे नॉर्थ ईस्ट के, असम के। वो कई लंबे समय से राहुल गांधी से समय मांगते रहे थे, और ऐसा जो हमने रिपोर्ट देखी मीडिया में, जब उनको समय मिलता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा उनको पूर्वोत्तर की राजनीति दिख समझा रहे हैं और वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो नेतृत्व से निराश होकर कांग्रेस छोड़ी है जिन्होंने, और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व अगर चुनाव नहीं जितवा सकता, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को तो संभाल सकता है। एक एक करके जो लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस, और कई वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं और ऐसे युवा नेता भी छोड़ रहे हैं, एक तो उनको कांग्रेस में भविष्य इसलिए भी नहीं दिखता कि नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में है, चाहे पार्टी हारे या जीते, नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में ही रहना है, तो ऐसे में हमारा भविष्य क्या है। तो ये सोचकर भी कांग्रेस को, मैं समझता हूँ, और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं कि ये जो एक जिंक्स है इसको तोड़ा जाए कि कांग्रेस क्यों ही एक परिवार के नेतृत्व में रह सकती है। कांग्रेस इतनी लंबी पुरानी स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी है, क्यों नहीं उसमें कोई नेहरू गांधी फैमिली के बाहर का नेतृत्व आ सकता है। तो ये मैं समझता हूँ जो सोच चल रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं में, उनको अब मुखर होकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और पार्टी समाप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में राष्ट्रीय दल दो रहने चाहिए। अभी लेफ्ट फ्रंट खत्म हो गया तो बाकी तो सब क्षेत्रीय दल रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अंदर इस पर मंथन होना चाहिए।
1: जी हम क्योंकि बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट असम, वेरी क्विक कॉमेंट बिफोर वी गो इन टू ब्रेक एट 12 नून फ्रॉम बोथ ऑफ यू। असम, यू नो देव, इट्स द फर्स्ट इलेक्शन दैट्स बीइंग हेल्ड इन असम आफ्टर द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ 2023। अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग, यू नो, सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। How do you see, what is the impact? Ashok ji, very quick comment.
2: I think a major issue, one of the major issue has been infiltration
1: right.
2: from across the border.
1: Right.
2: And Hemanta had made it a point that we will not allow this kind of a thing to happen. So if you look at the earlier Assam movement, agitation, that was the issue. Why we should allow Bangladeshis to settle in Assam.
1: Right.
2: So I think that has gone home very well with the people of Assam.
1: Umesh ji, bahut quick comment.
0: तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को ही सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बल्ले बल्ले की बात है। बिल्कुल
1: जी।
3: और अब यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और समाचारों का वक्त हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश बुलेटिन प्रसारित होंगे, उसके बाद हम 10 मिनट बाद 12:10 पर आपसे फिर मिलते हैं।
1: बट उसके पहले क्विकली आई गिव यू एन अपडेट। इन असम द बीजेपी इज लीडिंग ऑन 80 सीट्स, एजीपी इज लीडिंग ऑन 9, एआईयूडीएफ इज लीडिंग ऑन 2। इन केरल द सीपीएम इज लीडिंग ऑन 30, द सीपीआई इज लीडिंग ऑन 30, 11 एंड सीपीएम इज लीडिंग ऑन 30 सीट्स एंड विल बी बैक।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
5: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से, एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
4: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
6: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
4: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोलडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी स्पेशल प्रोग्राम जनादेश 2026, वेयर वी आर डिस्कसिंग द ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स कमिंग इन फ्रॉम द असेंबली इलेक्शंस दैट वर हेल्ड इन 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल।

0: Once again, we have with us in studio senior journalist Umesh Chaturvedi and political analyst Ashok Tandon. And right at the beginning of this section of the program, let's give you the latest trends coming in.
1: जी अनुभा, और सबसे पहले अगर हम असम के जो रुझान आ रहे हैं उन पर नजर डालें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों में से 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे चल रही है. AIUDF 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है वो 23 सीटों पर आगे चल रही है. केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है और CPI 12 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 12 सीटों पर आगे चल रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 56 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है.
0: इफ वी टॉक अबाउट पुदुचेरी, देन द AIADMK इज लीडिंग ऑन 1, द रूलिंग AINRC व्हिच इज पार्ट ऑफ द एनडीए अलायंस इज लीडिंग ऑन 10 सीट्स, बीजेपी पार्ट ऑफ द एनडीए अलायंस इन पुदुचेरी इज लीडिंग ऑन 4 सीट्स, DMK इज लीडिंग ऑन 4, कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 7 एंड इंडिपेंडेंट्स आर अहेड ऑन 3 सीट्स. And talking about Tamil Nadu, the AIADMK is leading on 64 seats. BJP, the AIADMK partner, is leading on 3 seats. The DMK, which was in government till, is the present government, is leading on 43. Its alliance partner, Congress, is leading on 5. IUML is leading on 1. Actor Vijay's TVK, which is being seen as the biggest disruptor in these elections in Tamil Nadu, is leading on 106 seats. And quickly, Vishal, why don't you give the...
1: जी, पश्चिम बंगाल के अगर हम रुझानों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. 286 सीटों के हमें जो है इस समय रुझान मिल रहे हैं और 293 सीटों के लिए वहां पर गणना हो रही है, चुनाव वोटों की गिनती हो रही है. और AISF 1 सीट पर आगे है, AITC 91 सीटों पर आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस.
0: जी, एंड नाउ लेट्स गो ओवर टू चेन्नई फ्रॉम वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश कुमार श्रीवास्तव इज ऑनलाइन विद अस. मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू आकाशवाणी जनदेश 2026.
2: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार सर. सर, दिस इज द फर्स्ट दीज इलेक्शंस, यू आर बेस्ड इन चेन्नई, यू यू नो कॉलिंग टॉकिंग टू अस फ्रॉम चेन्नई. व्हाट इज योर फर्स्ट असेसमेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन तमिलनाडु? वी जस्ट सेड सॉ दैट एक्टर विजय TVK लीडिंग ऑन 106 सीट्स, अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज, बिकॉज इफ वी गो बाय द एग्जिट पोल्स, हार्डली एनीबडी हैड गिवन यू नो एनी क्रेडेंस टू TVK इमर्जिंग एज प्रोबेबली नॉट जस्ट किंग मेकर बट एज द नेक्स्ट, फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट.
2: Yes, ma'am. Actually, the youth is with the TVK.
0: Gee.
2: That is the first thing that youth voters like from that college students and till 30 years age youth is with the TVK, and that 30 year age number percentage of voters is more than near about 20% voters of Tamil Nadu is that. That is second thing, the Tamil Nadu public want to change the DMK AIADMK DMK AIADMK, they want the changing of that,
0: right,
2: this pattern.
0: जी, तो आपको
2: thanks.
0: जी
1: जी जी कुमार श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा कि युवा जो है वो TVK के साथ जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या TVK में ऐसा क्या आकर्षण युवाओं को लगा कि वो TVK की तरफ खींचे चले गए वोटर के तौर पर?
2: एक तो जो इनका फैंस क्लब था, जो इन्होंने इनके फैंस थे, ये केवल अभी चुनाव में इस बार उतरे हैं, लेकिन इसकी तैयारी ये पिछले कई सालों से कर रहे थे, लोगों की मदद करना, और इन्होंने युवाओं को जोड़ रखा था. दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि एक अभिनेता के रूप में जो विजय
0: सतीश
2: है,
0: जी
2: वो
0: सतीश जी
2: इनकी एक
0: मुझे आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन GVL नरसिम्हा जुड़ गए हैं. मिस्टर नरसिम्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026.
3: नमस्कार जी.
0: नमस्ते सर. ये जो अब हम रुझान देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी लेड एनडीए असम में ऑलमोस्ट अपनी अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, और बाकी जगह भी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नजर आ रहे हैं आपको?
3: बिल्कुल पूरी तरह बीजेपी के जो पूर्वानुमान था, जो लक्ष्य था, उसके अनुकूल आज के परिणाम सब लगभग सभी राज्यों में आ रहे हैं। ये उस असम में तीसरी बार हम और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, यही हमारा एक आकांक्षा थी, एक लक्ष्य था, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और असम की जनता को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे सरकार उनके उम्मीदों पर खरी उतरी है, इसलिए असम की जनता ने और बड़ी बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां बना रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपने सरकार अपने पूरी तरह अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है। एक बड़ा राज्य होने के नाते पश्चिम बंगाल का देश के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा उनका स्थान है। और ऐसे राज्य में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट 42 सीट पश्चिम बंगाल से आते हैं। और ऐसे राज्य में एक क्षेत्रीय दल के खिलाफ लड़ते हुए एक बड़े जीत को हासिल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम पश्चिम बंगाल की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक तरह से टीएमसी के शासन से एक तरह से बहुत ही दुखी होकर और वहां जिस प्रकार की करप्शन, भ्रष्टाचार और गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ एक तरह से बीजेपी को चुना है मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के उनके नेतृत्व में बीजेपी को, यहाँ बीजेपी के सरकार बनाकर ही केवल विकास के रास्ते पर बंगाल आगे बढ़ सकती है। इसी आशा के साथ, इसी विचार के साथ वहाँ की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा जीत दिया है, ये उनके लिए धन्यवाद। और पुडुचेरी में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है, तो यही हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का हमारे लिए विषय है।
0: मिस्टर नरसिम्हा, इफ यू लुक एट द, यू नो, इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, बीजेपी ऑन इट्स ओन इज लीडिंग ऑन 3 सीट्स, सेम वी सी दैट इन केरल बीजेपी इज अगेन लीडिंग ऑन 3 सीट्स, व्हाइल इन पुदुचेरी इट्स लीडिंग ऑन 4 सीट्स। सो ऑल्दो इट मे बी यू नो पार्ट ऑफ द अलायंस, हाउ डू यू सी दीज ट्रेंड्स दैट the BJP is you know has been making an effort to make expand its footprint, especially in Kerala and Tamil Nadu, the southern states? How do you see these trends coming in?
3: See, Kerala, this would be the first time that a BJP BJP would have its presence in the state assembly. You've seen how BJP formed, BJP won the local corporation elections in Trivandrum, Thiruvananthapuram, and BJP has been increasing its vote share election after election, but our attempt this time was to make a strong presence in the assembly, and that will make a foundation that will help us to form a foundation for future success for the BJP. So we are quite happy that BJP is leading in some seats, and we will also see a big rise in BJP vote share in Kerala, which should be a sort of a ladder for us to grow on our own in future. When it comes to Tamil Nadu, our main aim in Tamil Nadu was to defeat the DMK Congress combined, because it is the DMK which ran a lot of negative campaign against the BJP and the central government. They in fact tried to create an impression that BJP was anti-South by alleging that delimitation was going to be harmful for the for the southern states. So all this propaganda. For this propaganda, the BJP always wanted to defeat the DMK, and that was our primary aim, and that certainly is coming true in today's election results. But as we all see, the TVK, which came on the horizon as a new party, certainly has taken Tamil Nadu, has given a new alternative to the people of Tamil Nadu, and they have swung heavily in TVK's favor. So It appears to be hung assembly in Tamil Nadu for the last 3-4 hours. We see a hung assembly scenario. We'll see how it pans out, but it will certainly be an anti-DMK, anti-Congress government in Tamil Nadu, which is likely to be certainly pro-center and work towards realizing the dreams of Prime Minister Narendra Modi ji as far as development is concerned.
0: Mr. Narasimha, thank you so much for joining Akashvani.
3: थैंक यू जी, नमस्कार।
0: दैट वाज बीजेपी स्पोक्सपर्सन जीवीएल नरसिम्हा।
1: जी अमरीश चतुर्वेदी जी, तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, एक तरीके से पूरा बड़ा उलटफेर वहां पर देखने को मिला है, बिल्कुल एक राजनीति में ट्विस्ट एकदम से देखने को मिल रहा है। वहां पर टीवी के 105 सीटें पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है और लगभग लगभग अब लगता है कि बहुमत की तरफ भी बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन अभी देखना होगा कि उसको कितनी सीटें और कहां पर अभी मिलती हैं। कुल मिलाकर के आप जो तमिलनाडु में ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है?
4: देखिए, ये तो बता रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में एक्टर को लेकर के फिल्मी जो दुनिया के लोग रहते हैं, जो सितारे रहे हैं, उनको लेकर के जो एक खास तौर का फैनेटिज्म दिखता रहा है, उसकी एक पुनरावृत्ति दिखती है। लेकिन एक चीज इसमें जोड़ना चाहूँगा, थलपति विजय की एक फिल्म रही है घीली, तमिल फिल्म है घीली, उसमें उन्होंने एक डायलॉग दिया था, यह एरिया हो या वो एरिया, हर जगह का विजेता मैं ही हूँ। तमिलनाडु के जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि वो हर जगह के विजेता हैं, हर तरफ के लोगों के उन्होंने एक तरह से लोगों को आकर्षित किया है, लोगों की बातों को रखा है, लोगों को उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है।
1: जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चेन्नई से सतीश कुमार श्रीवास्तव ऑनलाइन जुड़े हैं। जी श्रीवास्तव जी, चेन्नई में आप हैं और इस समय वहां पर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे, आप इससे पहले भी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो टीवी के साथ जो है युवा मतदाता तमिलनाडु का, राज्य का, वो सबसे ज्यादा जुड़ा है जाकर के, और उसने अपील किया है युवा मतदाताओं को टीवी के पार्टी ने, या विजय ने, अभिनेता विजय जो है, जो उसके नेता हैं, उन्होंने ऐसा क्या सामने रखा वहां के मतदाताओं के सामने कि जो युवा मतदाता है उससे बहुत प्रभावित नजर आए?
2: सर, एक तो जो कहते हैं ना कि ये जो अभिनेता वाला फैक्टर है यहाँ तमिलनाडु में,
1: जी
2: ये तो है। और उसके बाद इन्होंने कई जगह इनके जो फैंस क्लब इन्होंने बनाए हुए थे यहाँ पर, तो ये जो इनका फैंस क्लब है, ये जब ये अभी राजनीति में अटकलें लगाई जा रही थी कि तलपति विजय राजनीति करेंगे, उस समय भी इनका ये फैंस क्लब जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। और जो जो एक एक मैं पहले भी बताया कि ये डीएमके एआईडीएमके, ये दोनों पार्टियां आ रही थी जनता इनको इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही थी, तो इस तीसरे विकल्प का भी इनको फायदा मिला। और युवाओं के आकर्षण, एक जो अभिनय इनका था अभिनेता के रूप में, युवाओं के रूप में के बीच में ये उस समय भी लोकप्रिय थे जब अभी राजनीति की अटकलें लगाई जा रही थी।
4: एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इसमें रजनीकांत और कमल हासन, इन दोनों की क्या भूमिका रही इस चुनाव में?
2: सर, रजनीकांत और कमल हासन की जो इसमें मतलब इनके साथ या इनके विपक्ष में वो नहीं रहे, वे साइलेंट रहे। वे जब राजनीति में आने के का जब उनका प्रयास शुरू हुआ, तो वो मतलब जो इनका था और ना कमल हासन का था, तो इसका भी इनको फायदा मिला, जनता भी इनसे जुड़ी, केवल युवा वर्ग तो इनके साथ था ही, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो जो उम्र दराज थे और उनके विचार में परिवर्तन आया।
0: Mr. Satish Kumar Srivastava, thank you so much for joining us on Akashvani's Janadesh 2026. Mr. Chandan, I want to come to you and I want to come back to Assam now. In Assam, we've seen for long years, Badruddin Ajmal's AIUDF had been a very decisive force in Assam politics, but we saw in the 2024 elections, he himself lost his, you know, constituency Dhubri by one of the biggest margins. Now he's contesting at the age of 76. He's contesting his very first, you know, assembly election. Last assembly election, Congress and AIUDF were together. This time they're, you know, contesting separately. So has that also made an impact? Because the trends show us that AIUDF is leading only on 2 seats.
4: I think he himself is leading, if I'm not wrong. He himself is leading, but there was no alliance with the Congress.
0: Yes.
4: And there was no alliance actually led by Congress. There were no other smaller parties also in the Congress wanted to revive its fortunes on its own.
5: and they thought that Gaurav Gogoi, being a young dynamic leader, may be able to turn the tables, but unfortunately it has not happened. But as far as this fringe

0: group is concerned, no, they were actually trying to corner all the Muslim wars in Assam, and that has been a setback for the Congress for quite some time. So, but I think the factor which has weighed very heavily in favor of BJP and Hemanta Biswa Sarma is that their, you know, call that they will not allow infiltration. They will in fact send back the Bangladeshi infiltrators, and that I think is the core sentiment in Assam for a very long time, because Assam has been flooded with infiltration from Bangladesh, and many of them were not even a legitimate people coming into Assam. So all the infiltrators, so they will now be pushed back. That was one of the main agenda of Biswa Sarma. So let's see what happens. But I personally feel that the Congress needs to do some introspection in Assam. Because it was a very powerful party in Assam earlier.
1: जी, उमेश चतुर्वेदी जी, महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें, असम की हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की बहुत बड़ी, भाजपा की बहुत बड़ी ताकत रही है महिला मतदाता हैं. और अरुणोदय एक योजना जो है भारतीय जनता पार्टी हिमंत सरकार ने वहां पर चलाई और महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजे हैं. ये इसका असर भी आप देखते हैं चुनाव नतीजों पर?
2: बिल्कुल, ये तो हर जगह दिख रहा है. आप देखिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लड़की योजना, ये झारखंड में माई योजना, छत्तीसगढ़ में इसी तरह की योजना, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने वो दे रही थी, लक्ष्मी क्या योजना, भाग्य नहीं, लक्ष्मी कुछ ऐसे दूसरा नाम है, तो उस योजना का. लेकिन एक चीज देखिए कि पश्चिम बंगाल में वो करामात क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहां अर्जी कर के मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार का रवैया रहा उसको लेकर के महिलाओं में एक क्षोभ रहा और उसका असर दिख रहा है. लेकिन असम में ऐसा नहीं है, और दोनों राज्यों में एक चीज बार बार देखना चाहिए, घुसपैठ का मामला असम से उठता है. आप देखेंगे कि घुसपैठ को लेकर के सबसे बड़ा सवाल पहली बार असम में उठा था 1985 में, तो एक सरकार ही बनी थी असम गण परिषद, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो घुसपैठ के मामले पर ही उभरी थी और वो सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी. लेकिन वही मामला पश्चिम बंगाल में भी आया, और सिर्फ महिलाओं का मामला ही नहीं है, बाकी कई सारे मामले हैं. ठीक है कि वो एक मामला है महिलाओं ने वोट डाला, लेकिन एक चीज ये देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 2021 के चुनाव में महिलाओं का 10% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ममता बनर्जी को मिला था. लेकिन इस बार जाहिर है कि वो महिलाओं ने साथ छोड़ दिया, उन्होंने जो लक्ष्मी योजना है जिसमें वो 1500 रुपए महीने दे रही हैं, और ये वादा भी किया था कि 500 रुपए और देंगी चुनाव जीतने के बाद, वो काम नहीं आया. तो महिलाओं का देखना ये है कि किन जगहों पर वो उनके साथ ये सहयोग कर रही हैं सरकारें या पार्टियां, और किस जगह पर वो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है. ये दोनों ही चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई. तो असम में उनकी सुरक्षा के साथ कोई चिंता नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए असम में तो कामयाब रहा, हेमंत बिस्व शर्मा को समर्थन मिला, ममता बनर्जी को इसका समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है. तो ये राज्यवार हिसाब से देखें तो अलग अलग ढंग से उसको आप व्याख्यायित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं.
0: जी, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा बंगाल में बहुत जोर पकड़ गया था, और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो रेप विक्टिम की माँ है वो लीड कर रही है चुनाव में. तो वो जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था, जो महिला उत्पीड़न हुआ था और वो बलात्कार का मामला हुआ था, तो उसके चलते बंगाल में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था. तो केवल ये नहीं है कि महिलाओं को आप सुविधा क्या देते हैं, मुझे लगता है महिलाओं के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है महिला सुरक्षा, जिसके बारे में लोगों का विश्वास ममता के प्रति डगमगा गया था, और वो शायद इसलिए चुनाव में भी, ये परिणाम में भी उसका कुछ ना कुछ असर दिखाई दे रहा है.
2: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो ये कहा था आरजी कर मामले पर, आरजी कर जैसे मामले हो सकते हैं, आपराधिक कहीं भी हो सकते हैं, सवाल ये है कि उसके साथ डीलिंग कैसी हुई, उसको लिया कैसे गया, सरकार ने उस पर कैसे किया. तो आमतौर पर आप मोटे तौर पर आप देखेंगे कि ममता सरकार लिपापोती करती हुई नजर आई, और एक बड़ा बयान ये शायद उत्तर भारत में चल भी जाता कुछ और राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि 9 बजे रात के बाद महिलाएं सड़कों पर ना निकलें, बाहर ना निकलें. ये बात पश्चिम बंगाल में, जो क्योंकि वहां महिला को सम्मान की नजर से देखा जाता है, वहां दुर्गा की धरती है, शक्ति की धरती है, तो उस राज्य की महिलाओं ने इसे एक अलग ढंग से लिया, और ये शायद इसी वजह से उनकी लक्ष्मी योजना कामयाब नहीं रही. और असम में आप देखेंगे कि बार बार एग्रेसिव ढंग से हेमंत बिस्व शर्मा घुसपैठ का मुद्दा उछालते हैं, बार

0: और यहां तक तो ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो किसी को रहने ही नहीं देंगे, घुसपैठिए को
1: बिल्कुल
0: बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ महिला योजना नहीं है, महिलाओं का साथ देना, सुरक्षा देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की 1500 या 2000 या 1500 रुपया देना। जी
1: जी। प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई, और उस इलाके में भाजपा जो है वहां चारों सीटों पर आगे चल रही है, झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट करने का मतदाताओं से जो एक एक ये एक एक तरीका है, ये कितना असर करता है?
0: बिल्कुल, देखिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, संचारक थे, बड़े ही रिसर्च होता रहा है। मुझे लगता है कि एक रिसर्च नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी होना चाहिए, और एक उनकी टाइमिंग कि कब कैसे कनेक्ट करना है। आप याद कीजिए, बिहार चुनाव होने वाले थे तो उसके कुछ दिन पहले यहीं इंडिया गेट पर दिल्ली में उन्होंने लिट्टी चोखा खा करके एक तरह से पूरे बिहार को कनेक्ट कर लिया था। और जो लिट्टी चोखा नहीं खाता है, जो उसको पसंद भी नहीं करता था या जानता नहीं था, वो भी लिट्टी चोखा के पीछे दौड़ पड़ा। तो ये कनेक्ट करने का उनका तरीका है। उन्होंने, आप देखिए, उस दिन उन्होंने एक बात भी बोली। वो पूछता है बाल जो झालमुड़ी बेचने वाला कि प्याज खाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता। तो
1: जी
0: वो भी एक बात थी, एक सीधे सीधे वो जनता के मर्म को छूने वाली बात थी। और उसके बाद ये देखिए कि सिर्फ झालमुड़ी, ऐसा ठीक है कि बंगाल जाने वाले सब लोग जानते हैं कि झालमुड़ी क्या होता है, लेकिन झालमुड़ी ने बंगाल के झालमुड़ी को ही नहीं बल्कि बंगाल के मर्म को छू दिया। और उस मर्म के जरिए उन्होंने एक तरह से बंगाल के दिलों में पैठ बना ली। तो एक तो रिसर्च ये होना ही चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेटर हो, तो वो एक कनेक्ट कर लेते हैं, सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही थी ना कि ये
1: जी
0: जो लोग भाजपा वाले हैं वो यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं। हालांकि ये बात भी याद रखना चाहिए कि अभी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होंगे, और उसकी शुरुआत उसी कलकत्ता में हुई थी, 30 मई 1826 को। और मतवाला एक बड़ा मशहूर पत्रिका होती थी, बड़ी मशहूर, वो भी उसी बंगाल से निकली। रामानंद दोषी जो बहुत बड़े मतलब विचारक थे बंगाल के, उन्होंने हिंदी में प्रवासी पत्रिका निकाली। तो ये कहना, सवाल ये नहीं है कि हिंदी में आप बात करके कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कम्युनिकेशन। हम सब लोग यहाँ पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, चारों लोग बैठे हुए हैं, टंडन जी तो हम लोगों में सबसे वरिष्ठ पत्रकार
1: जी
0: हैं। तो कनेक्ट करना होता है। अब वो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस इलाके में कैसे कनेक्ट करना है। अगर वो बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन बोलते हैं कि मतलब भोजपुरी में बोलते हैं, वहां
1: जी
0: लोगों को भोजपुरी से कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंडी बोली से बोलते हैं, पंजाब जाते हैं पंजाबी में बोलने लगते हैं, केरल में भी 4 शब्द मलयालम को बोल लेते हैं। तो वो एक उनका कनेक्ट करने का तरीका है, और ये नतीजे तो दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है।
1: अशोक जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस व्हाट अमेश जस्ट सेड अबाउट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट्स यू नो डायरेक्टली विद द वोटर्स?
2: No doubt about it. He's a great communicator, but you know, sometimes innovation is very important. No, I'll give you a very small example. Till he emerged on the political scene at the center, no party leader of any party was wearing the party badge on his jacket or shirt or coat. And not only that, he in fact told the party members that why the symbol of lotus is in saffron color, because on the EVM machine the lotus will be white. He started wearing the white lotus symbol on his jackets and all that.
1: Right.
2: No, these are very small things. Every lectern, wherever he used to address a public meeting, there used to be the symbol of the BJP. He invariably sits in the front seat of his car. The light on his head was always on, so that people could see him.
1: Right.
2: You know, these are small, very little things in politics which do matter. Then, not only the boat ride which he did, you know, around Howrah Bridge. Then, because when the campaigning ends, he went to Bellur Mat. No, anybody could have gone there. Mamata could have gone or anybody. No, his going to Bellur Mat was criticized. Why he is doing election politics and religion? But it was his, you know, innovative idea.
1: Right.
2: Getting blessings from Bellur Mat, having a boat ride around the Howrah Bridge. So all these things are, and one thing I may tell you.
1: Yeah.
2: He himself is a lone think tank. He is not going by any advisor. He does not have any think tank. He himself is the thing.
1: Right.
2: About all these innovation which he does in politics is his own brainchild.
1: Right.
3: जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से
1: आकाशवाणी समाचार ने विशेष

0: कुछ बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी।
2: पहली बार जो है पश्चिम बंगाल की
1: सरकार नहीं है, निरंतर तीन चुनावों में आप भाजपा का ट्रेंड देखें। 2011 के विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे, 2016 में हमने 3 सीटें प्राप्त की और 10% वोट प्राप्त किया, 2021 में 77 सीटें, मुख्य विपक्षी दल 38% वोट। तो जो ट्रेंड दिख रहा था वो दिखा रहा था कि 12 वर्षों के नितत सतत प्रयत्न, निरंतर संघर्ष और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहे हैं।
2: कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, क्या हो गया?
1: मुझे लगता है कांग्रेस को आश्वस्तता के पैमाने पर पुनर्विचार करना चाहिए। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें थी, आज लगातार तीसरी बार सरकार, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी ने वहाँ बहुत शानदार काम किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, और उससे हम कह सकते हैं असम में जो हमें हैट्रिक मिली है ये पूर्वोत्तर की दृष्टि से भी एक अभूतपूर्व कार्य।
3: और अब समय है एक रुझान, कुछ रुझान बताने का
0: जी। प्रमुख उम्मीदवारों, प्रमुख उम्मीदवारों के सीट्स पर हम नजर डालें कि तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएम के उम्मीदवार एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फिलहाल पीछे हो गए हैं, लेकिन नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं। पुदुचेरी में तट्टन चावड़ी सीट से एआईएनआरसी उम्मीदवार एन रंगासामी काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन मंगलम सीट पर वे पिछड़ रहे हैं।
3: अशोक जी, आई यू नो ड्रॉ योर अटेंशन टू व्हाट सुधांशु त्रिवेदी वाज, यू नो ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ही आल्सो मेंशनड द फैक्ट, ही वाज टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द बीजेपी एज अ पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स यू नो द वे दे अप्रोच थिंग्स। सो ही टॉक्ड अबाउट होम मिनिस्टर अमित शाह रणनीति, कि उनकी रणनीति भी एक फैक्टर रही, आप उसके बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से पूरा चुनाव को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है?
4: देखिए, पिछले कई चुनावों में, राज्यों के भी और लोकसभा के चुनावों में भी, हमारे पत्रकार मित्र ये पूछते थे कि जब इनको मालूम है कि हम जीत रहे हैं तो फिर इतना जोर क्यों लगाते हैं
3: जी।
4: अब सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में, एज वी से, लीव नो स्टोन अनटर्न, आप हर तरह से अपना पूरा जोर लगाइए और उसके लिए योजना को ग्राउंड पर, जमीन पर उतारना है। तो जब योजना ड्राइंग बोर्ड पर बनती है तो उसको जमीन पर उतारने के लिए आपके पास जो है एक ऐसे लोग चाहिए जो उसको मूर्त रूप दे सके। तो इस मामले में अमित शाह पूरी तरह से खरे उतरते हैं, वो हर चुनाव में जमीन पर उतरते हैं, स्वयं जा जाकर एक एक चीज, जिसको पन्ना प्रमुख और ये एक एक बूथ का हिसाब लेते हैं और स्वयं वहां पर बैठकर उसको योजना को कार्यान्वित करते। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हम ये और नहीं भूलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीचे की इकाई बना रखी है जिलों के उस स्तर पर, वो लगातार उसको एक तरह से सींचा भी जाता है। लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो पीछे रहकर जमीनी स्तर पर इसको एक तरह से ताकत देते हैं और ये लोग मानते भी हैं। और इस वजह से जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी, बहुत पार्टियां उनके इस पूरे कैंपेन मैकेनिज्म को कहीं इतनी इतनी बुरी तरह से पिछड़ जाती हैं। जैसे कांग्रेस हर चुनाव में इनकी सिस्टम से, इलेक्शनियरिंग से, कैंपेनिंग से, स्ट्रेटजी से बहुत दूर रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के पास क्योंकि खुद की मशीनरी भी थी, स्ट्रेटजी भी रही है और वो सत्ता में भी रही हैं, तो वो इस बार भी एक डटकर मुकाबला करती हुई दिखाई दी है। लेकिन बाकी पार्टियां कहां गई बंगाल में? बंगाल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने, लेफ्ट फ्रंट ने और कांग्रेस ने पूरा मैदान छोड़ दिया और बंगाल जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले कुछ थी ही नहीं, उसको आपने इतने आगे बढ़ने दिया। तो ये सब पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव मशीनरी है, जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह से हर कार्यकर्ताओं को लगाना है और राज्यों से भी कार्यकर्ताओं को भेजना है, तो ये तो एक सीखने लायक चीज है जो बाकी दलों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ उसकी आलोचना करने से बात नहीं बढ़ेगी।

0: मूलतः बांग्ला भाषी लोग थे, जो मारवाड़ी नहीं थे, जो बाहर से आकर नहीं बसे थे, उनका जुड़ाव इन चुनावों से पहले तक भाजपा के साथ पूरी तरीके से नहीं देखा जाता था। एक तरीके से बाहरी पार्टी की छवि थी भाजपा की वहां पर। तो जो बीजेपी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, उससे इस बार बांग्ला भाषी लोगों ने ज्यादा आइडेंटिफाई किया अपने आप को?
1: देखिए, इसको ना थोड़ा सा और हम पीछे ले जाना चाहेंगे। ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, उसका गठन उन्होंने 1997 में किया था, और 1998 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब टंडन जी भी सरकार में होते थे, उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उसके पहले के चुनावों को आप देखेंगे, खासतौर पर राम मंदिर के आंदोलन के उभार के बाद, कोठारी बंधु जिनका बलिदान हुआ था राम मंदिर के आंदोलन में 1991 में, 90 में, तो कोठारी बंधु उसी कलकत्ता से आए थे। आप देखेंगे उस समय का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वो 10% से ज्यादा था, जो सुधांशु त्रिवेदी अभी 2011 की बात कर रहे हैं, 10% का, 16 की बात कर रहे हैं, तो 10% से ज्यादा था। लेकिन ममता बनर्जी जब आती हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये वोट बैंक घटने लगता है। आप देखेंगे कि 4% पर आ जाता है। हालांकि 1998 में एक सीट जीती थी, तपन सिकदर दमदम से जीते थे, 1999 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तपन सिकदर दमदम से, और शायद कृष्णा नगर से सत्यव्रत मुखर्जी जी जीते थे, 2 लोग जीते थे। और एक चीज और देखिए कि ममता बनर्जी दबाव बहुत बनाती थी, उनकी छवि ही रही है लड़ाका की, लड़ने वाले की। तो वो क्या करती थी कि जब समता पार्टी वाला मामला आया, तहलका वाला मामला आया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता चुन ली थी, और उसके बाद वो सरकार से अलग हो गई थी। और एक चीज और भी है कि टंडन जी ज्यादा गहराई से बता पाएंगे, हम तो रिपोर्टर के नजरिए से देखे हैं कि तपन सिकदर जैसे वरिष्ठ नेता को ममता बनर्जी के दबाव में मंत्रिमंडल से हटाया भी गया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 4% जो 2011 और उसके 2004 में या 9 में दिखती है, 4% के आसपास, उसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ही साथ रहा है। अब ममता बनर्जी का उभार भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ होता है। आप देखिए कि बलबीर पूंजी का एक राज्यसभा में दिया हुआ भाषण याद आता है, उन्होंने कहा था कि हमारी ममता दी तो साक्षात दुर्गा है। लेकिन ममता बनर्जी जो है, जब 2011 में सत्ता पाती हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं, वैसे तो साथ छोड़ना और लेना उनका चलता रहा है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक को खाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बदलती है, और आप देखिए कि 2016 में उभरना शुरू करती है, और 2019 में तो उसने लोकसभा चुनाव में जो किया था, आप देखिए 18 लोकसभा सीटें जीत लेना, ये मामूली बात नहीं थी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कारवा बढ़ता है। तो ये कहना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहली बार वहां आ रहा है, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बंगाल ने 1991, 92, 98 में भी देखा था, समझा था, पकड़ा था। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 1967 में जो विपक्षी दलों की कांग्रेस के खिलाफ जो गोलबंदी हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल चुनाव जीते थे, रिजर्व सीट थी। तो ये ठीक है कि सत्ता में पहली बार आ रही है
2: जी। अशोक जी,
3: मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि दर्शक, हमारे श्रोताओं को ये जानना आवश्यक है कि ममता बनर्जी का इमर्जेंस कैसे हुआ। ममता बनर्जी, सौगत राय, दास मुंशी, ये कांग्रेस के यंग टर्क्स हुआ करते थे, और ये कांग्रेस के गढ़ को वहां मजबूती से संभाले हुए थे, हावड़ा हो, कलकत्ता हो या। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र में कांग्रेस सरकार जब से वाम दलों के ऊपर निर्भर रहने लगी, और विशेष तौर से नरसिम्हा राव के समय पर, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। आप हमको पश्चिमी बंगाल में तो वाम मोर्चे से लड़ने को बोलते हो, केंद्र में आप उनके साथ सरकार बनाकर चलते हो, तो ममता बनर्जी ने उस समय एक लीड रोल लिया कि आप तय करो कि या तो आप वाम दलों के साथ सहयोग करोगे या फिर हम नहीं लड़ेंगे वाम दलों के साथ। इस पर नरसिम्हा राव और कांग्रेस की मजबूरी रही, बाद में भी हमने देखा यूपीए के समय भी मजबूरी रही। तो इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर, देखिए उन्होंने नाम क्या दिया कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस, अंग्रेजी में इसको ग्रास रूट लेवल कांग्रेस कहते हैं, और ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली वो नेत्री थी। और धीरे धीरे पहले तो वो कांग्रेस का ही वोट बैंक खा गई, फिर वो लड़ी वाम दल से, वाम मोर्चे से लड़ाई करते करते उन्होंने वाम मोर्चे को भी समाप्त किया, लेकिन खाली जगह तो रह नहीं सकती थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो धीरे धीरे

0: जीत से ज्यादा वो नारायण स्वामी जी की जीत कही जाएगी। और दूसरी बात, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ इलाका है, तीनों राज्य
1: जी
0: पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी और तमिलनाडु और असम को भी जोड़ लीजिए, तो इन तीनों में एक चीज देखिए कि जो आक्रामक नेतृत्व है,
1: जी
0: पुदुचेरी को छोड़ दीजिए, तो
1: जी
0: जो जनता के पक्ष में आक्रामक है उसको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे टीवीके को वहाँ, भारतीय जनता पार्टी को, और वहाँ असम में हेमंत विश्व शर्मा को भी कह सकते हैं
1: जी
0: भारतीय जनता
1: जी
0: पार्टी को। और दूसरी एक चीज़ और है कि जो SIR का सवाल पूछा था, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, मैं
1: जी
0: दूसरे फेज का जो पश्चिम बंगाल का जो 29 अप्रैल को चुनाव हुआ
1: जी
0: था उसको मैं मतलब नहीं देख पाया हूँ उस तरह से, लेकिन फर्स्ट फेज में जो 152 सीटों पर चुनाव हुए थे, आप देखेंगे कि SIR की तुलना में, पिछले साल की तुलना
1: जी
0: में, जो गिनती के हिसाब से देखेंगे, काउंटिंग के हिसाब से, तो 26 लाख ज्यादा वोट पड़े थे, ज्यादा वोट पड़े थे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं, गिनती के हिसाब
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि सिर्फ SIR एक मुद्दा तो था, लेकिन सिर्फ SIR ही एक मुद्दा नहीं रहा।
1: और इस बीच आनंद कुमार हमारे संवाददाता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से जुड़ गए हैं। जी आनंद, इस समय आप वहां भाजपा मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या माहौल है कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह देख रहे हैं आप वहां पर इस समय?
2: जी बिल्कुल, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं बीजेपी के फेवर में, उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी यहाँ पे हर्ष का माहौल है। और जितने भी हमारे बीजेपी प्रवक्ताओं से बात हुई, बीजेपी लीडर से बात हुई है, सबका कहना है कि जो वहाँ भय का माहौल था उसकी समाप्ति हुई है, और प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में उनके गवर्नेंस मॉडल को लेके लोगों ने वहाँ भरोसा दिखाया है कि वहाँ एक चेंज की जो बदलाव की जो जरूरत थी वो साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट आ रहे, जो ट्रेंड है, उसका असर मेजोरिटी लेवल से काफी आगे पहुंची हुई है। और इसी तरह से आसाम में देखें तो तीसरी बार वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है अपनी, तो इन सब को देखते हुए इनमें काफी उत्साह भरा हुआ है। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर
0: बिल्कुल
2: पहुंचेंगे, शाम के समय पहुंचेंगे, और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर को लेके। उन्होंने जिस तरह से मेहनत की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वहां आगे बढ़ाने में, और इन सबको, इन पांचों राज्यों में जो बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेके
0: जी
2: वहां पे बात होगी, किस तरह से उन्होंने गवर्नेंस मॉडल को वहां स्थापित किया है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, असम हो, और वहाँ पुदुचेरी में भी NDA की वहाँ पे
0: जी
2: बढ़त है, और DMK भी, DMK वहाँ पे देखे, अगर तमिलनाडु की बात करें तो DMK भी वहाँ पिछड़ती नजर आई है।
0: बिल्कुल
2: तो जिस तरह से इनका एक गवर्नेंस मॉडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस तरह से बात हुई है दोनों स्टेट में देखे, आसाम और वेस्ट
0: जी
2: बंगाल में,
0: जी
2: तो निश्चित रूप से लोगों ने एक बहुत मजबूत भरोसा दिखाया है
0: जी
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लीडरशिप को लेकर।
1: आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे पास समय रह गया बहुत कम, पर इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, लेट अस गिव यू द लेटेस्ट ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। इन असम बीजेपी हैज ऑलरेडी टेकन लीड इन 79 सीट्स, इट्स एलाय AGP इज लीडिंग ऑन 9 सीट्स एंड BPF इज लीडिंग ऑन 10। इन केरल बीजेपी इज अहेड ऑन 2 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 60 सीट्स। इन पुदुचेरी दी AINRC इज लीडिंग ऑन 6 एंड बीजेपी इज लीडिंग ऑन 3। इन तमिलनाडु TVK इज लीडिंग ऑन 108 सीट्स, वेयर इज इन वेस्ट बंगाल द बीजेपी इज लीडिंग ऑन 192 सीट्स। एंड दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर इन दिस सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। वी विल बी बैक एट 1:10 PM। टिल देन डू रिमेन विद अस एंड डू लिसन टू द हिंदी एंड इंग्लिश बुलेटिन्स।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन

0: के पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरुम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। नेमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट DMK ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना DMK 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने NDA के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है, क्या कहना है आपका?
1: जी, आप सही बोल रहे हैं कि NDA जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहाँ पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहाँ पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो कुछ ट्रेलिंग है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
0: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे है। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग MLA है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई वहाँ से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये बताइए,
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली भी आगे हैं जो, बट 87 राउंड में है, यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोदोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
0: धन्यवाद राकेश
1: जी।
0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम जनादेश 2026 में। इस कार्यक्रम में आज सुबह से हम ला रहे हैं आप तक नतीजे चुनावों के। चार राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जो चुनाव हुए उसके नतीजे सुबह से हम लगातार रुझान जो भी हमें मिल रहे हैं वो हम आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इन रुझानों पर, इन नतीजों पर चर्चा के लिए विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अगर हम ताज़ा रुझानों पर नज़र डालें तो
3: Vishal, before we start do that, let's introduce once again introduce our panelists to our listeners. We have with us, of course, senior political analyst Mr. Ashok.

0: जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत चौंकाने वाला प्रदर्शन जो है इस बार देखने को मिला है हमें। 110 सीटों पर तमिलगा वेत्री कझगम इस समय आगे चल रही है। थलपति विजय की पार्टी है, अभिनेता विजय की पार्टी है ये, और अब महज अभी 2 साल ही नहीं हुए हैं इनको राजनीति में कदम रखे हुए, और 2 साल के भीतर ही इतना बेहतरीन प्रदर्शन करना, एक तरीके से कहेंगे तो अचंभे में डालने वाला प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन को वहां पर राजनीतिक हलकों में किस तरीके से देखा जा रहा है, और खासतौर पर अगर हम उसकी बात करें, डीएमके की बात करें, डीएमके को जिस तरीके का सेटबैक लगा है, इस पर लोगों का क्या सोचना है?
1: देखिए, जो दलपति विजय जो हैं वो ये 2 साल पहले राजनीति में प्रवेश किए हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में इनकी जो भूमिका थी वो पिछले 5-7 सालों से नजर आ रही थी। ये लगे हुए थे जमीनी स्तर पर। और डीएमके की स्थिति ऐसी थी कि एक तो डीएमके ने भी इनको जमीन दी कि ये अपनी अपनी जो राजनीतिक पारी खेल सके, एक पिच तैयार की। एक तो इनके यहाँ परिवारवाद चला,
0: जी
1: करुणानिधि ने स्टालिन जी को स्टालिन जी ने उदयनिधि स्टालिन जी को अपनी पार्टी का प्रमुख बनाने का प्रयास किया, उसका भी था। और डीएमके की जो हिंदू विरोधी छवि निकल करके आ रही थी, वो सीधे सीधे जो बोल रहे थे उसका भी प्रभाव पड़ा। और डीएमके ने जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसमें कई वादे वो जो हैं अभी पिछले 5-6 महीनों में पूरा करना शुरू किए।
0: जी
1: तो इसका भी जनता जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है कि आप किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे विद्यार्थियों को लैपटॉप, अब इनको याद आया 3-4 महीना पहले कि नहीं, हमको विद्यार्थियों को लैपटॉप देना है। उसके पहले ये शांत शांत पड़े हुए थे। तो ये कई चीजें थी, और उसी में वहां पे ये पिछले 2 सालों से जो इनकी पार्टी थी वो जगह जगह जमीनी स्तर पे जाके काम कर रही थी। और जो इनका अभिनेता की छवि थी समाज के बीच में वो तो थी ही। युवा वर्ग जो कि 20% मतदाता है,
0: जी
1: वो तो सीधे तौर पर विजय को देख रहा था।
0: जी जी धन्यवाद सतीश जी। एन के सिंह जी, तमिलनाडु के जो हम नतीजे अब देख रहे हैं, और जिस तरीके से टीवीके ने एक तरह से हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है, पहली बार विधानसभा चुनाव में ये उत्तरी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम, और ये जो प्रदर्शन है टीवीके का, क्या ऐसी क्या इन्होंने मतदाताओं के सामने क्या विचारधारा अपनी रखी, इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा जो कि मतदाता खींचे चले गए हैं?
2: देखिए, ट्रेडिशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये एक फ्रेम बनाते हैं कि ये विचारधारा इसकी क्या रही होगी, भाजपा की ये है, कांग्रेस। मतदाता जरूरी नहीं कि इन चीज़ों से मुतासिर बहुत ज़्यादा होता हो आज का मतदाता। और तमिलनाडु का तो कल्चर रहा है कि फिल्म वर्ल्ड से आए लोग, आप देखते होंगे कि
0: जी
2: कई बार अगर फिल्म की दुनिया का कोई मर जाता है तो 10-20 लोग सुसाइड कर लेते हैं,
3: मंदिर बनते हैं,
2: कुछ लोग मंदिर बनवा देते
3: जी
2: हैं। तो वहां पे पेंशेंट फॉर हीरोज, फिल्म हीरोज, ये कुछ अजीब सा है जो कि बाकी दुनिया को समझ में नहीं आता, लेकिन वहां पे है। तो अगर आप देख रहे हैं कि विजयन अचानक 2 साल में ये मेटियोरिक राइज होता है और इलेक्शन स्केल पे वो क्वांटम जंप लेते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जनता का आशीर्वाद उनको उनके फिल्म का जो पास्ट है। आप देखें तमिलनाडु की सारी पार्टियां, जयललिता का मुझे याद है, जब जयललिता को करप्शन चार्जेस में जेल किया गया तो अगले इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया।
3: जी
2: तो ये अजीब राज्य है जहां अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बेहद पैरामाउंट है, इतनी पैरामाउंट है कि लिंग्विस्टिक आधार पे, इसके अलावा जो उनका अपना कल्चर है उसके आधार पे ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को वहां पे एक्सपेंशन में दिक्कत आती
3: जी
2: है। जहां जहां भी कल्चरल स्ट्रांग कल्चरल आइडेंटिटीज है वहां पे आपको दिक्कत आएगी, तो बीजेपी को यह दिक्कत आ रही है। लेकिन ये जो इनका राइज है ये बताता है कि नहीं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग तमिलनाडु में कुछ अलग होता है।
3: जी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू नो यू रेज दैट बीजेपी, इट्स नॉट जस्ट बीजेपी मिस्टर सिंह दैट यू नो वी सीइंग ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट, वी ऑल्सो सी कांग्रेस। नाउ बीजेपी एंड कांग्रेस बोथ आर नेशनल पार्टीज। बीजेपी इज ऑफकोर्स यू नो आउट ऑफ 31 स्टेट्स एंड टेरिटरीज, इट्स ऑलरेडी यू नो रूलिंग इन 21, सो इट्स And still we see that, you know, it's still trying to make footprints, it's still trying to make inroads in a state like Tamil Nadu and Kerala. Particularly about Tamil Nadu, even if, you know, the present government, DMK, seems to be on the way out.

0: जनता पार्टी एक पर बढ़त बनाए हुए एक पर आगे चल रही है और एक सीट उसने भारतीय जनता पार्टी ने भी पुदुचेरी में जीत ली है, अपने नाम कर ली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई है और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम ADMK को भी एक सीट जीतने में कामयाबी मिली है।
1: And another result coming in. The result has come in from Assam, where the Congress leader, the face of Congress in this elections, Gaurav Gogoi, has lost from the Jorhat assembly seat. In fact, it is a seat where he had won the 2024 assembly. I beg your pardon, the 2024 Lok Sabha elections. Vishal.
0: और केरलम से भी हमारे पास ताज़ा रुझान आए हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। 2 सीट कांग्रेस को गई हैं और 1 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 103 सीटों पर आगे है। LDF 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है।
1: एंड ऑफ द 2 सीट्स दैट द कांग्रेस हैज वन इन केरलम, लेट मी गिव यू द रिजल्ट्स फॉर those 2 seats are Thrissur, where its candidate Rajan J. Pallan has won by a margin of over 26,000 votes, and the other seat where the Congress candidate has won is Haripad, where Ramesh Chennitala has won by more than 23,300 votes. So those are the results that we have right now.
0: Ji, N.K. Singh ji, Keralam ki baat karein to jo LDF hai wo 35 seaton par badhat banaye hue hai और कांग्रेस का नेतृत्व वाला UDF गठबंधन इस बार निर्णायक बढ़त बना ली है इस बार उसने, और 103 सीटों पर यह गठबंधन आगे चल रहा है। LDF का पिछड़ना केरलम में एक तरीके से जो वाम राजनीति देश की थी उसमें एक आखिरी किला केरलम माना जाता था। अब ये नतीजे क्या बता रहे हैं कि वाम राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी स्थिति होने वाली है आने वाले समय में?
2: देखिए, एक बात तो है कि वाम आदर्श जो आइडियोलॉजिकल इसके बोरिंग्स हैं वो कभी डाई नहीं करेंगे। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वाम भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसलिए फेल हुआ कि भारत आइडेंटिटी ग्रुप्स में बटा हुआ है, और जब जब कोशिश की कि नहीं ब्रॉडर गरीबों का एक आइडेंटिटी वो बनाए जिसमें शोषित हों, एक्सप्लॉयटेड हों, प्रोलेटेरिएट हों, ये हो नहीं पाया क्योंकि वो फिर वापस जाति में चला जाता था, धर्म में चला जाता था। तो आइडियोलॉजी फेल हो गई, इसमें कोई दौर नहीं, इंडिया में इलेक्टोरली फेल हो गई, लेकिन आइडियोलॉजी तो रहेगी। हाँ, यहाँ पे है तो ये तो केरल में आप जानते ही हैं कि वो अल्टरनेट करते हैं, आज यहाँ है, आज उन्होंने कांग्रेस को दिया है, अगली बार वो फिर लेफ्ट को देंगे, तो ये अल्टरनेट कर उनके पास विकल्प है, और दोनों गवर्नमेंट्स फेयरली ओके करती हैं। पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो वहाँ बहुत ही स्मूथ चलती हैं, और वेलफेयर की स्कीम सारी इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी होती है। मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं केरल के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखता हूँ तो ताजुब होता है। इवन जुडिशियल प्रोसेस आप देखें तो वहाँ पे अगर किसी को चार्जशीट कर दिया गया है तो 91% केसेस में उसका कन्विक्शन सर्टेन है
1: जी,
2: जबकि बिहार में इसके ठीक उल्टा है, सिर्फ 8% रेट ऑफ कन्विक्शन या 11% होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो क्वालिटेटिव आप देखें ज्यूरिसप्रूडेंस के भी स्तर पे, तो मुझे लगता है केरला बेस्ट गवर्न्ड है और ये अल्टरनेट एक विकल्प है तो करते हैं, बाइपोलर सिस्टम है। हाँ, जब बीजेपी इसमें चली जाएगी, जब बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो ये ट्राईपोलर हो जाएगा, और आप जानती हैं कि वहां पे 3 समूह हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड
1: जो हिंदू मलयाली पॉपुलेशन
2: जी, और ये एक पोस्ट डाल है, उसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए एजवाज है, मुस्लिम्स है, तो जैसे कांग्रेस को ब्रांड किया गया आपकी बार की ये मुस्लिम्स पार्टी है, विच वॉज नॉट द केस, क्योंकि कांग्रेस को इसे आप देख रही हैं कि वोट मिला है, सबका मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कहना, और कांग्रेस इस वजह से नहीं जीत रही है वहां पे कि कोई यहाँ पे से केंद्र में बैठा मेहनत कर रहा है
1: जी,
2: वो वहां पे कांग्रेस का अपना वजन है, अपना स्ट्रक्चर है
1: जी,
2: जिसकी वजह से जीत रही। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के देखें तो केरल एक डिफरेंट स्टेट है और वेरी वेल गवर्न्ड स्टेट है, वहां की मैच्योरिटी समझ में आ रही है
1: जी। एंड लेट्स गेट बैक टू गुवाहाटी वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमृता मधु कैवल्या इज विद अस। अमृता, अर्लियर यू नो आई वाज टॉकिंग टू यू एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गौरव गोगोई, एंड नाउ द रिजल्ट हैज कम इन, गौरव गोगोई हैज लॉस्ट द जोरहाट असेंबली सीट टू हिज बीजेपी राइवल।

0: why BJP is reforming? Why this this kind of catchment area that BJP completely owns? The reason is that its leader does it. Does the rest of the work.
1: He leads from
0: all
1: the front.
0: Through, continuously.
1: Yeah.
0: Which is not the case with the Congress.
1: Right.
0: Had Rahul Gandhi, whoever they are, it's Nehru family. But even if at that juncture, he had continuously done what Ashokji is saying, that the absence of the national leader would determine as to whether people should vote or not.
1: Right.
0: And that is what is happening.
1: Right.
2: जी गौरव भाटिया को सुनते हैं, उन्होंने कुछ कहा है पार्टी की जीत पर और चुनाव नतीजों पर, क्या कहा है ये सुनते हैं।
3: People of West Bengal wanted a change, a positive change which can create Sonar Bangla, and they see that change coming under the leadership of Shri Narendra Modi. Second reason, the appeasement politics of Mamata Banerjee has been rejected. This country belongs to everyone, and the majority, the Hindu class, cannot be treated like a second-grade citizen. Third, women empowerment. This has to come. And the Bharatiya Janata Party government will ensure that in West Bengal, Mamata Banerjee, being a female, was seen standing with goons of TMC who were targeting females and violating their dignity.
2: जी एन के सिंह जी, सोनार बांग्ला जो अभी उन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता ने मिस्टर भाटिया ने, कि सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव था भाजपा ने रखा वहां पर, और तुष्टिकरण की राजनीति जो वहां पे बांग्ला पश्चिम बंगाल में होती रही, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भाजपा ने सवाल उठाए और उन्होंने बताया भी, तो क्या आपको ये जो बातें इन्होंने बताई भाटिया जी ने कही कि जीत का कारण है, क्या इससे आगे भी कुछ और आपको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके पीछे इससे आगे भी कुछ और है?
0: देखिए, सवाल थोड़ा डीप, इसका एनालिसिस की जरूरत है। डेमोक्रेसी एक वादा करता है, और हमारा संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है वो वादा करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सबके लिए करता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह। क्या आज एक अफसर, एक मंत्री का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें कि एक गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो उस काउंट पे आप फेल रहे 70 साल से? आखिर जनता को क्या वजह है कि वो हिंदू मुसलमान, चाहे यादव ठाकुर राजपूत ब्राह्मण, ये क्यों करना पड़ रहा है, वो आइडेंटिटी ग्रुप्स में क्यों जा रही है? जब इसको एनालाइज करेंगे कि डेमोक्रेसी के इस सिस्टम में जो किरदार थे वो लोग फेल हो गए वो डिलीवर करने में, तो मजबूरन उसको वापस, आप देखें कि सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे जब जयप्रकाश के आंदोलन के बाद ये शुरू हुआ, तो आपने देखा कि किस तरह लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सारे लोग उभरते हैं। क्या वो डिलीवर कर पाए? अगर नहीं किया तो नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी एक ब्रॉडर कैनवास लेके आ रही है, और वो अपने, क्योंकि अभी देखा आपने गौरव भाटिया ने फिर वापस आ गए, बोले कि हिंदुओं को इस तरह दबने नहीं देंगे,
1: जी, जी।
0: वो कहा ना, तो अंत में आके यहां पे रुकता है, और तब हम रेशनल जो थिंकिंग होती है उसकी जगह हम अपने पहचान समूह के साथ रहते, वो हमें ज्यादा सुरक्षा देता है, ये हमारा मानना हो जाता है। तो हमें लगता है कि इसकी डीप एनालिसिस की जरूरत है कि बीजेपी का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है और कांग्रेस क्यों वो ग्राउंड्स देती जा रही है बीजेपी को। उसकी वजह यह कि लीडरशिप में वो शिद्दत से लड़ने का जज्बा नहीं है जो कि बीजेपी के लीडरशिप के पास है।
1: जी, एंड नाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी हैज जॉइंड अस। मिस्टर त्रिवेदी, वेलकम टू आकाशवाणी। हेलो जी, आकाशवाणी के जनादेश 2026 में आपका स्वागत है।
4: जी
1: सुधांशु जी, अभी जो नतीजे आ रहे हैं भाजपा के लिए तो बहुत ही ज्यादा आशावान, बहुत ही बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
4: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठकर अब ज्वार से सुनामी का रूप धारण कर रही, और ये एक ऐतिहासिक युगांतकारी निर्णय है। और आसाम में हमने शानदार सफलता हासिल की, हम 100 सीटों के आसपास आ रहे हैं, जो अभूतपूर्व है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, और पश्चिम बंगाल में हमारा नेतृत्व, और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता के चलते हुए संगठन की गतिशीलता, अमित शाह जी की रणनीति, और सबसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी आज वो काम कर रही है जो मात्र 15 साल पहले कल्पना से परे माना जाता था।
1: जी,
4: बंगाल में हम 2011 में अप्रासंगिक दल से 2016 में 3 सीटें 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट, आसाम में हम 2011 में केवल 3-4 सीटें थी, आज लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कड़ी मेहनत, अच्छी नीति और कुशल नेतृत्व के द्वारा क्या

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी।

0: पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, एजेयूपी 2, एआईएसएफ 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या का कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आज कर जो इंसिडेंट है हुआ है, उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट आईयूएमएल ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकर, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टीएम शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, आईयूएमएल 22 और सीपीआई 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में एआईएनआरसी की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, एआईयूडीएफ 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
3: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें

0: एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
1: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम
0: जी, और
1: उनका भी योगदान रहा है जीत में
0: जी। आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीज मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेड़े दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खासतौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो लगभग 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय

0: समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ. जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
1: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। अब पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर, 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी स्पेशल प्रोग्राम ऑन द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। The election, the elections that were held in 4 states and 1 union territory. You are with us on Janadesh 2026. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Vishal Sharma, and we have a panel of 2 very distinguished guests in our studio. Once again, we have senior political analyst N.K. Singh and senior journalist Umesh Chaturvedi with us. Both of you, welcome to the program.
3: Thank you. जी, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से, अतिथियों से हम बात भी करेंगे, चुनाव नतीजों पर चर्चा भी करेंगे, और फिलहाल सबसे पहले डाल लेते हैं नजर अभी तक के जो लेटेस्ट जो हमारे पास ताजा रुझान है और जो हमारे पास परिणाम इस समय हमें जो मिले हैं। असम की अगर हम नजर डालें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 22 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली है। असम गण परिषद 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 2 पर उसे विजय मिली है, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अभी तक उसे कोई सीट नहीं मिली है, कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 21 सीटों पर आगे चल रही है।
2: If we talk about Kerala, then the INC or the Indian National Congress, which is part of the UDF, is leading on 44 seats. It has won 19 seats till now. Its partner IUML is leading on 20 seats, has won 2 seats, and Kerala Congress is leading on 5 seats, has won 2 seats, whereas the BJP is leading on 2 seats, and the CPM, which was part of the present government, the LDF government, CPM is leading on 20 seats. It has won 7 seats. CPI is leading on 4 seats. It has won 4 seats so far.
3: पुदुचेरी के नतीजों पर नजर डालें तो AIADMK को 1 सीट मिली है और AINR कांग्रेस को 9 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, 1 सीट पर वो आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर वो आगे है। DMK 3 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट वो जीत चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 1 सीट जीत चुकी है। ये हुई पुदुचेरी की जानकारी, और इसके बाद अब बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ।
2: राइट जी, तमिल टॉकिंग ऑफ तमिलनाडु, नाउ वी हैव रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स फ्रॉम अबाउट 234 सीट्स। The DMK, which was in government till now, is leading on 52 seats. It has won only 1 seat so far. TVK of actor Vijay, that's Tamilaga Vettari Karagam, is leading on 106 seats. It has won 2 seats right now. The AIADMK, which is part of the NDA alliance along with BJP, is leading on 54 seats. It hasn't managed to win any seat till now. The BJP is leading on 1 seat and not won any seat till now.
3: पश्चिम बंगाल के रुझानों और नतीजों पर नजर डालें तो अभी तक हमें वहां से कोई नतीजा तो अभी तक घोषित नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल से, लेकिन रुझान हमारे पास लगातार आ रहे हैं। 293 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, 293 सीटों में से 194 बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बीजेपी ने वहां पर, भाजपा ने जीत हासिल कर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 194 सीटों पर आगे है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर आगे चल रही है।
2: एंड जॉइनिंग अस ऑनलाइन नाउ वी हैव पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह बिहारी, हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर विनय सिंह बिहारी, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।
4: Thank you
2: much. Mr. Bihari, we were just telling our listeners the trends.
4: You can name me Vinay.
2: Vinay ji. So abhi hum apne, haan ji bilkul, hum apne shrotaon ko bata rahe the ki jo West Bengal se jo trends rujhan aaye hain usme साफ दिख रहा है कि इस बार अब भाजपा जो है वो अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। 193 सीटों पर उसको बढ़त मिल चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 95 सीटों पर अभी जो है उसको बढ़त मिली है। आप ये जो रुझान आ रहे हैं, आप इसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं कि जो पिछली बार की 77 सीट्स थी उसके कंपैरिजन में अब डबल से भी ज्यादा जो है इस वक्त बीजेपी उन सीटों पर आगे बढ़ी हुई है?
4: एक तो एंटी इनकम्बेंसी लहर थी और सत्ता विरोधी लहर थी, ये तो साफ जाहिर हो रहा था। हम लोग बाजार जाते थे, ऑटो रिक्शा वालों से बात करते थे, सामान्य लोग बिल्कुल खिलाफ बोल रहे थे। आज से नहीं, 3 महीने पहले से जहां भी हम जाते थे चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है। और ये जो 26,000 अध्यापकों की नौकरी बिल्कुल एकदम से, वो 8 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे थे और 26,000 अध्यापकों की नौकरी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि कुछ गड़बड़ किया था इन लोगों ने, और जो आरोप था कि जो प्लेन कापी जमा करके आए हैं बिना कुछ लिखे, अपना नाम और रोल नंबर लिख के चले आए हैं बस, वो सिलेक्ट हो गए और जो मेरिट लिस्ट में जो मेहनत करके गए थे वो नहीं चुने। तो 26,000 अध्यापकों की नौकरी का जाना ये बहुत बड़ा शॉक था नए नई पीढ़ी के लोगों, युवाओं के लिए, कि फिर हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में जो खालिदा जिया के हटने के बाद जो हिंसा हुई, एंटी हिंदू, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था, और इसी दौरान यहाँ मुर्शिदाबाद कांड हो गया जिसमें वो वक्फ बोर्ड के आंदोलन के बहाने से

0: वहां हिंदुओं, दो हिंदुओं को मार दिया गया गांव में घुस के। वो एक खास कम्युनिटी के लोगों ने घुस के दो हिंदुओं को मार दिया।
1: जी
0: और जो उस तरह का उबाल हुआ और जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में जो शॉक एक लगा, वो एक बहुत बड़ा शॉक हम लोग देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात, हम बिल्कुल देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं। तो वो शॉक, एक दो जो शॉक लगे, एक तो 26,000 नौकरियों का अचानक से
1: जी
0: जाना, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार ने किया है इसलिए 26,000 नौजवान युवाओं की नौकरी चली गई, और अब पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, अनिश्चय भविष्य हो गया। और सेकेंडली, वो जो बांग्लादेश बगल में है, पश्चिम बंगाल के बगल में,
1: जी
0: जैसा कि
1: जी
0: आप जानती हैं, हम लोग ट्रेन से अगर चाहें तो 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे।
1: जी
0: तो इतने नजदीक एक देश में एंटी हिंदू हत्याएं हो रही हैं और यहाँ मुर्शिदाबाद जैसा कांड हो रहा है, तो
1: जी
0: यहाँ के हिंदुओं में एक एक, एक पैनिक क्रिएट हो गया।
2: जी
1: जी
2: विनय जी,
0: अरे ये
2: भारतीय
0: क्या
2: जी
0: हो रहा
2: भारतीय
0: है?
2: जी भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का और सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव रखा, उसने
0: हाँ,
2: मतदाताओं को
0: इसीलिए
2: किस
0: जी
2: हद तक छुआ?
0: जी जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स ने छुआ। ये इन एडिशन क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और उस तरह के कल्चर को लेकर जो बात छिड़ी, पश्चिम बंगाल का कल्चर ये तो नहीं था कि हत्याएं हो,
2: जी
0: एंटी हिंदू चीजें हो, सांप्रदायिक बातें हो, ये तो नहीं था जो जो सत्तारूढ़ दल ने किया। तो उसके उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से लोगों को कन्वे किया कि देखिए बंगाल की संस्कृति रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से शुरू होकर के और अनेक कलाकारों कलाकार बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हुए, उनकी संस्कृति रही है। मार काट और गाली गलौज और हिंसा नहीं रही है, सांप्रदायिकता नहीं रही है। तो
1: जी
0: इसको लेकर के
1: जी
0: मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से यहाँ रह के काफी उन्होंने जनसभाएं
1: जी
0: की
1: जी
0: और इतना बढ़िया उन लोगों ने कन्विंस किया है कि अद्भुत है। और यहाँ शुभेंदु अधिकारी, अन्य भाजपा के लोग भी बहुत ही बढ़िया से उन लोगों ने कन्वे किया है। मुख्य बात यह है कि आम लोगों को उन लोग जो वो बोलते थे वो उनके हृदय में उतर जाता था,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे यहाँ के लोकल भाजपा के नेता हो शुभेंदु अधिकारी, और यहाँ के जो भाजपा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, तो
1: जी
0: वो
1: जी
0: श्रमिक, तो उन
1: जी जी
0: लोगों को, इन लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली ढंग से उन लोगों ने इस बार अद्भुत ढंग से
1: जी
0: ये
1: जी
0: हुआ है,
2: धन्यवाद
0: कैंपेन
2: विनय
0: हुआ है,
2: जी
0: प्रचार
2: हमारे
0: हुआ है।
2: साथ हमसे बात करने के लिए। एनके सिंह जी, अब बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग अब बिल्कुल साफ होती दिख रही है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो डबल इंजन की सरकार, अब हम बंगाल में किस तरीके के बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं?
3: ये एक टेस्ट केस होगा जिसमें कि बीजेपी एक उस इलाके में जो कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा है, जिसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और अपनी समझ रही है,
1: जी
3: स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो इसमें नेशनलिज्म का सूत्रपात ही यहीं से हुआ है।
1: जी
3: बंग भंग का जो हुआ मूवमेंट, वहीं से नेशनलिज्म मूवमेंट आया है। तो आज बीजेपी जो उसको ओन अप करती है, दरअसल वो बंगाल का है।
1: जी
3: तो अब जब गवर्नेंस में जब आप आ रहे हैं तो क्रॉस करेंट्स होंगे, और माइंड यू वहां पे 27-28% मुसलमान है, तो आप वहां पे कैसे लेके, यूपी में तो आपका कम है, 18-19% है, लेकिन वहां पे एक साइजेबल नंबर है। वहां पे डेवलपमेंट क्या इगैलिटी, सबका साथ सबका विकास वाला हो पाएगा? और होगा तो जो दो वर्गों के बीच में इतनी इस चुनाव के बाद से दुराव हो गया है, उसको इफेक्टिवली आप कैसे कंट्रोल करेंगे, डिलीवर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और वो भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज आपकी खत्म हो गई हैं। ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है।
1: जी
3: अगर आप जंगल मंगल महल एरिया में देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर इस समय तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन्हीं दो जगहों पे अच्छा रहा है। लेकिन नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम का, तो

0: समाज को, गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और उनका वहां बैठना, सेना बल को लगाना और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आप को आजाद कराना चाहता था उस भय की दुनिया से, वो माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से। बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह, माँ दुर्गा की शक्ति। और दोबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया, दोबारा बंगाल अपने कदमों पे, अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा। समस्त भारत को इस बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारत की जीत हुई, भारत के विचारों की जीत हुई कि भारत में एक अलग राज्य बना के ये लोग रह रहे थे, वो ऐसा राज्य जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपोटियों का पूरा आतंक मचा हुआ था, उससे आज हम लोग मुक्त हुए, हमारा भारत मुक्त हुआ 2047 के सपनों में। अब बंगाल इकोनॉमी में आगे बढ़कर हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बनेगा इस भारत की। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को।
1: जी, विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ कहा है, ये सुनते हैं।
2: बंगाल की जीत एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बंगाल में जिस विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन्म दिया था, उस विचार का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, और इसलिए बंगाल की जीत हमारे लिए बहुत भावनात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। असम में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, पुदुचेरी में हमारी सरकार बनने जा रही है, एनडीए ने तमिलनाडु में भी अच्छा किया और केरल में भी हमने अच्छा किया है। इन पांच राज्यों के चुनावों का जो परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत शानदार है, उसका हम अभिनंदन करते हैं।
3: And now let's listen into what senior Congress leader Imran Pratap Gadhi had to say about the results that are coming in.
4: नतीजों के बाद अगर और मगर का बहुत प्रश्न नहीं रह जाता है। ठीक है, पार्टी ने एक निर्णय लिया था, उस निर्णय के साथ गए थे, लेकिन अंततो गत्तो मैं ये कह सकता हूँ कि तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हारा है। बाकी जो भी ताकतें जीती हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ खड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि विजय की जीत पर भी उनको बधाई देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि वो जीत हमारी हार नहीं है।
3: Mr. N.K. Singh, we just heard Imran Pratap Gadhi, senior Congress leader, saying he was congratulating the BJP, but he's saying their win is not our loss. How do you interpret that?
5: नहीं, उन्होंने BJP को नहीं congratulate किया, विजय को किया, विजय को।
3: My bad. Sorry.
6: There is a logical fallacy. Yeah. When you study logic, there is a fallacy which is described as a selective appropriation of facts.
3: जी.
6: Here, इमरान गढ़ी इज सेइंग कि साहब वो हमारी हार नहीं।
3: मिस्टर सिंह, आई विल इंटरप्ट यू हियर बिकॉज बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी इज ऑनलाइन विद अस। मिस्टर रूडी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
7: हाय
3: जी। मिस्टर रूडी, योर कमेंट्स ऑन द वे द बीजेपी हैज यू नो ऑलमोस्ट मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ दीज इलेक्शंस।
7: सो व्हेन वी लेट्स स्टार्ट विद वेस्ट बंगाल।
3: यस,
7: now we never had a government in West Bengal. This is the first time since independence we have had a government there. Yeah. Now we are going to have a government there. Now this mandate was truly between the Prime Minister and Mamata Banerjee, because we did not have any leadership to project. Now, having said that, it's a fact that with this election, the presence of the Prime Minister has been reimposed and reiterated at the national level that he's just not there in Delhi and other states. He's there even in a place like West Bengal. That how did we reach them? We reached them through the schemes and the programs of the Prime Minister, which possibly was perceived there but not implemented.
3: Right.
7: Now it's a loss to TMC. Whatever may be the reasons, could be arrogance, could be incumbency, but end of the day, it's a victory of the BJP and the Prime Minister. That's party. Assam, we had a government.
3: Hmm.
7: We have gone back to the government again. We shall be going back to the government again. So that's not an issue. And the performance of the government and the Prime Minister's leadership has been restored. Then we go to Tamil Nadu. Well, there is a surprise element. We may not be there, but the fact is that DMK is not there anymore. And with a surprise, which many people say was not a surprise, but that's a debatable factor.
3: Yeah.
7: So let us see how the government is formed there in Tamil Nadu. And coming back to Pondicherry is, of course, a very pleasant victory for the BJP again, because we have positioned Kerala, of course, we do not exist, but end of the day, the major states which have gone to the elections, which had stakes in the whole election, was primarily starting from West Bengal. So it's a great achievement for the workers, for the leaders, for the people who have toiled there, the workers and the leaders who had gone there. phenomenal, I must say.
3: Mr. Rudy, अभी आपने जैसे कहा कि तमिलनाडु और केरल

0: में ऑफकोर्स बीजेपी ने बहुत ज़्यादा तो नहीं सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो एक आगे इन राज्यों में जो अपनी बढ़त अपनी बनाने की जो कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, आप फिर एक छोटे से सवाल पर चले आए कि जहां हमें
0: जी
1: जीत हुई है उसकी चर्चा आपने छोड़ दी,
0: जी
1: जहां हम अभी संघर्ष में है उसकी चर्चा कर दी। तो पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल, और ये मैंडेट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में। दूसरी तरफ हमारे विरुद्ध में वहां अगर किसी को अगर सामने देखा गया था तो ममता बनर्जी को, वो अब नहीं रही। तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से कि भारत की पकड़ और देश के प्रधानमंत्री की पकड़ पश्चिम बंगाल में। उसके आगे हम लोग आते हैं असम में, जहां हमारी सरकार थी, फिर से एक बार प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार फिर से एक बार वहां बनेगी हेमंतो के नेतृत्व में। जहां तक तमिलनाडु का है, हम वहां पर मेजर प्लेयर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएमके अपने आप को ये बात साबित करना चाहते थे कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। वहां एक बड़ा सरप्राइज है जो हमारे जैसे लोगों के लिए और सबके लिए बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ये सच्चाई है। तो वहां भी परिस्थिति सबके लिए बदल चुकी है, ना वहां डीएमके है ना वहां एआईडीएमके है, वहां एक तीसरी पार्टी उभर के आ चुकी है। रहा पांडिचेरी, तो वहां बहुत ही खूबसूरत परिणाम, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है, और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में वहां भी हमारी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से पूरे भारतवर्ष में, और केरल में हमारी उपस्थिति कम थी, हम वही रह गए, और प्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरे भारतवर्ष में अपनी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिख रहा है।
0: राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी उमेश चतुर्वेदी जी, रूडी जी ने जो कहा कि पूरा श्रेय जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में खासतौर पर जो जीत है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, और इस बार जो हमने देखा प्रचार के दौरान भी, अमूमन प्रधानमंत्री जो हैं हमेशा प्रचार के बाद दिल्ली लौट आते थे, लेकिन अब की बार कई बार वो कोलकाता में रहे, राजभवन में रुके, रात रात भर रुके और दो दो दिन तक रुके। और इसके अलावा जो है, जो मोदी जी ने जो कहा वहां पर कि हर सीट पर मैं उम्मीदवार, इसने कितना असर किया?
3: मोदी जी का जब से भारतीय राजनीति में उभार हुआ है और जितने भी चुनाव होते हैं लगभग हर जगह वो ऐसी ही बात कहते हैं। तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जो है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी थी पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए उन्होंने पूरी जान लगा दी। पीछे की जो गलतियां थी 2021 में भी आप याद कीजिए, लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि वो सरकार बना लेगी, तो मुझे लगता है कि उन गलतियों से सबक सीखने की एक कोशिश थी, और जो कोई भी कसर बाकी न रह जाए ऐसा उन्होंने किया। और एक चीज पश्चिम बंगाल की हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी जी ने भी उसी पर बहुत जोर दिया, देखिए, और हम लोग चुनौतियों की बात कर रहे थे। एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में नई सरकार के लिए वहां का पारा क्लब जो कह सकते हैं, जो मोहल्ला क्लब है, वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जो कट मनी का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, पश्चिम बंगाल में बहुत पुराने समय से पारा क्लब रहे हैं जहां लोग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो इन कमेटियों को, क्योंकि सीपीएम के बरक्स जब वो चुनाव जीत करके आई थी ममता बनर्जी, तो सीपीएम की जो स्थानीय लोकल कमेटियां जो होती थी उन कमेटियों की तुलना में उन्होंने पारा क्लब को मजबूत किया था। 1,01,000 रुपये का वो दिया था, सहयोग दिया था। बाद में वो पारा क्लब इतने ताकतवर हो गए कि स्थानीय जो प्रशासन था उस पर भी वो हावी रहने लगे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लब बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, तो इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज जो चर्चा में हम लोग बहुत भूल जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीता है उसके तो कोशिशों को हम लोग याद करते ही हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो वहां शिक्षकों को, अब हर राज्य में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी वाला तबका है वो शिक्षक का है, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षक। शिक्षकों को अभी भी छठवें वेतन मान का के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आप सरकार में आते ही आपको सातवां वेतन मान देंगे। और एक चीज और है कि ये हर शिक्षक कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोल प्ले किया है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि कितनी जल्दी उनको ये देने जा रही है।
0: Mr. Singh, I want to come back to you and I want to stay on with West Bengal, that like we're saying, Trinamool Congress at the moment has been, you know, is leading on 94 seats. That's less than half the, not less than, but that's like little more than half the seats that it won the last time. But that doesn't mean that the party or its leader, Mamata Banerjee, is finished. You know, it still has a stronghold. What do you see next for the party and for its leader, Mamata Banerjee?
4: No, that will be

0: Banerjee's role will come in.
1: Okay.
0: So the BJP has to be very cautious in approaching the process of governance.
1: Right.
2: जी एन के सिंह जी, पूरे अगर राष्ट्रीय फलक पर हम बात करें तो जो दो गठबंधन है मुख्य तौर पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अब पश्चिम बंगाल और असम, ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की, तो जो ये इंडिया ब्लॉक है अभी तक आपको क्या लगता है कि ये एक विभिन्न मुद्दों पर एक एक दिखाता तो है कि हाँ विरोध प्रदर्शन जैसी सहमति तो दिखती है इंडिया गठबंधन में, लेकिन जो एक राजनीतिक मतभेद इनके बीच में बने हुए हैं अभी भी, जो जो जो इसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं और संख्या बल के आधार पर ये गठबंधन जरूर बना ले रहे हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक सामंजस्य की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं ये इंडिया ब्लॉक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और केवल बस पार्लियामेंट में कुछ प्रदर्शन के दौरान तो कुछ सहमति बनती दिखती है, लेकिन जब वोट शेयरिंग या सीट शेयरिंग की बात आती है, समझौते की बात आती है चुनाव में जाने से पहले, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपको लगता है कि ये लेक कर रहा है इंडिया ब्लॉक?
0: सेफोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, IUO, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, ये बिल्कुल जीरो पे है। इंडिया ब्लॉक दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता
1: जी।
0: और जब भी ऐसे चैलेंजिंग ऑकेजन्स आते हैं, जैसे दिल्ली का इलेक्शन है तो आप और कांग्रेस, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है तो कांग्रेस और टीएमसी, तो वहां पे ये एक्सपोज हो जाता है कि नहीं, हम अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। चलिए ये भी ठीक है, नेशनल लेवल पे तो सचित्ता हो, देयर मस्ट बी सम कॉमन प्रिंसिपल्स ऑन विच यू थ्राइव, लेकिन वहां पे भी आप पाएंगे कि कम से कम यहां पे ममता बनर्जी को अगर आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो तमिलनाडु में सारे मिलके कांग्रेस को सपोर्ट करें, पर ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स बिल्कुल जीरो पे है और इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट नहीं करता
1: जी।
0: वो कुछ ऐसे ही किताबों में है, कभी कभी पार्लियामेंट में दिखाई पड़ जाता है ओकेजन स्पेसिफिक। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अब यूनिटी करनी पड़ेगी, और वो ऐसी हो कि जब जब जनता सत्ता से नाराज हो तो कम से कम उसको दिखाई दे कि हाँ एक यूनिटी है, हम उधर उधर जा सकते हैं। अगर ये विकल्प नहीं रहेगा तो वो मजबूर होके सत्ता के साथ खड़ी होगी, सत्ता को वोट देगी, तो ये मजबूरी ना आए इसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन यूनिटी की जरूरत है। लेकिन क्या कांग्रेस जो रैलिंग पॉइंट है, आज गिरे दिन में भी कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिलते हैं, आज गिरे दिन में भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई अगर बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिल रहे हैं तो 13 करोड़ कांग्रेस को भी मिलते हैं, हम कांग्रेस को, लेकिन क्या ये बरकरार रहेंगे
1: जी?
0: इसके लिए अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आपको, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी पे है जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो क्या उन ओकेजन्स पे वो वाकई खड़े होके सहचित्ता बना पाते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस बुरी तरह मिस कर जाती है।
1: Let's move on to Tamil Nadu. Like we are saying that it seems almost certain now that TVK of actor Vijay is on its way to make the next government. But from what we can see, the results and trends show that the party is all in all, 107 seats. It has won 5 seats. It is leading on 102. So it's still about 11. It's still 11 seats short of the majority.
0: Yeah.
1: Now, before the results, Vijay had very clearly said that it will not align with any party. But what now do you see if it falls short of the majority? Where do you see it moving? DMK, AIADMK, or even BJP, if it can?
0: A very, very valid question. At this juncture, this was the question that was to be delved deep into. See, one thing is there, willy-nilly.
1: Yeah.
0: All these the months that I had been tracking this leader, I found that there is a very palpable lurch towards BJP.
1: Okay.
0: He may not say there, and he had said openly that BJP is number one enemy, number two enemy perhaps.
1: Yeah.
0: DMK is also enemy. But now I think that somewhere they will align with BJP and its group.
1: Right.
0: So, I think 11 members not difficult.
1: Yeah.
0: And they will amass that much of a strength and will form the government. Yeah.
3: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनावों के पहले, मतलब जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो अमित शाह ने भरपूर कोशिश की कि AIDMK के साथ TVK का और NDA का जो वो है पूरा अलायंस बन जाए, लेकिन

0: जो पलानी सामी जी हैं वो एकदम से तैयार नहीं हुए, और वो तो विजयन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने तक को तैयार नहीं थे।
1: उमेश, यही टैक्टिकल होशियारी विजय ने की कि वो साथ में वो भी नहीं गए तो आज इतनी सीटें मिली है, वरना एआईडीएमके आज चीफ मिनिस्टर बना रहा होता और विजयन सेकंड नंबर पे होते। तो ये अच्छा हुआ कि विजयन ने अपना किया और उससे उनको गेन हुआ।
0: तो अनुभाजी के सवाल का जवाब यही है कि ज्यादा संभावना यही है कि बीजेपी मीडिएटर बने और एआईडीएमके के साथ सरकार बने,
1: सरकार बने
2: और एट द एंड ऑफ द डे यू नो पॉलिटिक्स
1: और
2: इज नथिंग बट
1: चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी,
2: जी
1: और चीफ मिनिस्टर हो विजयन और एआईडीएमके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, ये पॉसिबल
2: जी। जैसे मैं कह रही थी कि राजनीति कॉम्प्रोमाइज का ही दूसरा नाम है, और ये तो जो जो संतुलन होता

0: और भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 28 सीटें जीत चुकी है।
1: इन केरल द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 38 सीट्स, इन पुदुचेरी AINRC इज लीडिंग ऑन लीडिंग ऑन टू एंड हैज वन 9 सीट्स।
0: और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
1: And that's all we have time for in this segment. Do join us at 7:10 p.m. when we will continue this discussion. Thank you. Namaste.
2: जनादेश 2026 ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओ, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
1: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
2: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
2: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
1: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
2: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम होर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कण्व गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
2: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी

0: समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
0: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियां हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें उरांव भी कहते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
0: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
0: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनि और वैद्यराज चरक, और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
1: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
1: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
0: सींग विदाउट सींग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Onshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school? Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
4: Yes.
3: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
4: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
3: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Onshangla's eyes.
4: Now, tell me, what do I hold in my hand?
3: How can I? My eyes are closed. I can't see.
4: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Onshangla touched it.
3: It is something soft. A flower.
4: Yes. But what flower is it? Smell it.
3: It is a rose.
4: Good. Now try another thing. What do I hold?
3: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Onshangla took the bell and shook it herself.
3: Smart girl.
4: What do I hold now? Do you know?
2: Onshangla touched it.
3: It is a glass.
2: She put one finger slightly into the glass.
3: A glass of water?
4: Are you sure? It could be milk or juice.
2: Onshangla tasted it.
3: Oh, it is not water.

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे, अपने बच्चों के लिए।

0: पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है, फिर भी समझ न आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सेठी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर डलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
0: दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी, बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा, पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते।

0: बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता।
1: मेरे आगे जीभ चलाती हैं? क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
0: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
2: क्या मतलब?
3: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो। आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो।
4: शाबाश,
3: कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ।
4: हाँ,
3: बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना?

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप प्रस्तुत है उर्दू मजलिस।

0: मटिया बुरुज की सरजमीन है। मटिया बुरुज यूँ कहिए कि दो धाराएं एक साथ मिलती हैं वहाँ पे। एक तरफ वो लखनवी तहजीब की बाकियात वहाँ पर हैं और दूसरी तरफ वो मजदूरों की बस्ती है, कारखाने बहुत हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं और आम लोग भी हैं और इल्मो अदब की महफिलें वहाँ पे होती रहती हैं। बिलखसूस आप जानते हैं कि उर्दू माशरा शायरी का माशरा है, तो शेरी महफिलें बहुत होती थी, कसीदे की महफिलें और उसके अलावा मुशायरे भी होते थे। तो एक बचपन से हमारे जहन में ये सब है। दूसरी ये है कि हम लोग 60 की दहाई में पैदा हुए और 60 और 70 और 80 तक की जो दहाई है, ये जितने भी उर्दू माशरे हैं ये सब बहुत ही सरगर्म और फ़ाल थे अदबी तौर पर। मैं आपको बताऊं कि स्कूल का ज़माना था हमारा, मैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, 1978 में मैंने मैट्रिक पास किया है, 1963 की मेरी पैदाइश है। 14-15 साल तक हम लोगों ने बहुत सारा, आप यूँ समझिए कि अदब अगर बराह रास्त आप उसको अदब आलिया ना कहें तो भी, कम से कम पॉपुलर लिटरेचर तो हमने पढ़ लिया। पॉपुलर लिटरेचर और अदब आलिया के दरमियान की चीज़ें मसलन 20वीं सदी, शमा, दबिस्तान, ये सब रिसाले हमारे यहाँ आते थे और हम लोग इसको पढ़ा करते थे और बहुत ऐसे कह सकते हैं कि महफिल जमा के पढ़ा करते थे। और मुझे ख़ास तौर से शायरी के बारे में, मैं शायरी से बहुत ज़्यादा मरूब रहा और मुझे ये लगता था कि भाई ये शायर कैसे शेर कह लेते हैं, मुझसे तो याद तक नहीं होता। लेकिन कहानी में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो हमने बचपन से वो जो 20वीं सदी और ये सारे रसायल थे ये पढ़ना शुरू किया। और मैंने एक बार कहीं ये लिखा भी है कि जब हम पढ़ रहे थे, फिर एक वक्त के बाद आता है कि जब आपको ये महसूस होता है कि ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं अब आपके इल्म में, ख्याल में, फिक्र में किसी चीज़ का इजाफा नहीं हो रहा, अब वही चीज़ें आप बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर रिसाले का अपना एक मिजाज होता है और एक ख़ास तरह की तहरीरें ही उसमें आती हैं, तो वो आपको बुलंद नहीं करती हैं। तो तब उस तलाश में हमें अब लाइब्रेरी को ज़रा देखा जाए, तो हमारे यहाँ एक हिंदुस्तानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, हम कभी कभी वहाँ जाया करते थे, तो वहाँ से हमने, लेकिन चूंकि मेरी पहली दिलचस्पी अफसाने पढ़ने में थी तो मैंने एक मजमुआ देखा, वो कोई मुंतखब अफसाने था, तो मैंने कहा भाई ये पढ़ने की चीज़ होगी, मैं लेके आया। तो उसमें से कुछ कहानियां मुझे याद हैं, जैसे मैंने उसमें मंटो की कहानी खोल दो पढ़ी, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आई जबकि उस कहानी के बारे में मैंने सुन रखा था। उसी मजमुए में दो कहानी मुझे याद रह गई जो जिंदगी भर याद रही। एक कहानी थी लाजवंती जो राजेंद्र सिंह बेदी की, मैंने नाम सुना था, तो उस कहानी पर ने मेरे दिमाग पर कितना असर डाला मैं बता नहीं सकता। दूसरा एक बलराज मेंद्रा की कहानी थी जिसको मैं उर्दू में, चूंकि नाम लिखा होता है और अगर नाम नामानुस है तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता, मुझे समझ में नहीं आया इसको मेंद्रा पढ़ूं, मेजा पढ़ूं, मेंद्रा पढ़ूं, क्या पढ़ूं। बहरहाल बलराज नाम ध्यान में रह गया, तो उनकी कहानी वो थी जो मशहूर कहानी उनकी। तो यूं समझिए कि उसके बाद हम लोगों ने फिर शबखून और शायर और ये सब रिसाले, अल्फाज उस जमाने में आता था, तो ये सब रिसाले हमने वहां पे पढ़ना शुरू किया। अच्छा, वो कुछ जमाना ऐसा था कि अगर शायर बहुत थे तो ऐसा नहीं है कि फिक्शन निगार या नसर निगार नहीं थे, वो लोग नसर भी पढ़ा करते थे, अफसाने भी पढ़ा करते थे और बातें भी हुआ करती थी। दूसरे ये कि हमारे यहाँ, खासतौर से मैं मटिया बुरुज की बात कहूँ, हमारे यहाँ एक अड्डा कल्चर होता, बंगाल का, पूरे बंगाल का सिनेरियो है ये, खासतौर से मैट्रिक के बाद लड़के जरा आज़ाद हो जाते हैं घरों से
1: जी।
0: तो वो फिर शाम को अड्डेबाजी करते हैं होटलों में, चायखानों में, किसी दुकान के ठीहे पर, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ में बैठ करके और जो मुझसे सीनियर थे उन लोगों के साथ में बैठने का मुझे मौका मिला और कुछ कुछ मैंने अदब के बारे में थोड़ा संजीदगी से सोचना शुरू किया, या अदब को मैंने संजीदगी से लेना शुरू किया। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी किसी दिन लिखना भी शुरू कर दूंगा, और थोड़ा बहुत अगर कटर मटर लिखा भी तो उस पर कभी हमने इस तरह तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे जहन में इतने हाई आइडियल्स थे उस वक्त में, जो कुछ मैंने पढ़ रखा था, तो मुझे लगता था कि भाई मैं इस तरह नहीं लिख सकता। और वो जो रुमानी किस्म की 20वीं सदी के ज़माने में जो हमने पढ़ी थी, रुमानी किस्म की बातें लिखने, जुमले लिखने, तो वो मुझे भाता नहीं था कि भाई नहीं नहीं ये बातें नहीं हुई, तो ये बड़ी रुमानी चीज़ है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। तो यूँ मेरा सिलसिला रहा।
1: तो उसके बाद फिर आपने फरमाया कि लिखने की तरफ बाद में आए
0: जी,
1: तो ये कौन सी उम्र थी, किस मरहले पे आके आपको लगा कि अब आपको लिखना चाहिए, और अभी तक जो मेयारात आपने लिए आपने कायम कर रखे थे जिसकी वजह से आप लिखने से थोड़ा सा बच रहे थे, तो वो कौन सा मरहला था जिसने इस चीज को तोड़ा और अब आपने फैसला किया कि अब आपको लिखना?
0: मैं इस पर जरा सा बाद में आता हूँ। देखिए, असल में एक बात ये भी होती है, मिडिल क्लास के लोगों का एक मसला ये होता है कि अदब जो है वो किसी तरह से हमारी रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाता, शायरी अदब इनसे कुछ नहीं मिलता, तो मिडिल क्लास का जो पहला

0: अली सरदार जाफरी आया
1: अच्छा,
0: है।
1: ये तो एक ऐसा नौजवान कि जिसने अपने आप को रोक रखा है इजहार के मामले में, और उसके कुछ आला मेयारात हैं, और जो अपनी सहाफती किस्म की तहरीरों को खुद संजीदगी से नहीं लेता है, वो जब एक इतने बड़े रिसाले में उसके इदारती जो जिम्मेदारियां हैं उसका एक हिस्सा बन जाता है, तो उसकी अपनी जो साइकी है, उसकी नफ्सियात पे में क्या फर्क आया, और क्या फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब हमें लिखना चाहिए?
0: देखिए, फैसला ये तो नहीं किया जा सकता है कि लिखना चाहिए, लेकिन ये जरूर हुआ कि जब हम एज ए रीडर
1: जी
0: कारी के तौर पे पढ़ते हैं तो उसमें कोई नज्म जब्त नहीं होता,
1: जी
0: हमारे सामने जो आ जाता है वो हम पढ़ लेते हैं, या जिस किसी ने अगर बता दिया तो वो पढ़ लेते हैं। मसलन अगर फर्ज कीजिए कि हम तरक्की पसंद अफसाना नगारों के बारे में बात कर लें मिसाल के तौर पर, तो अब हमने उनमें से किस किस को पढ़ा और किस किस को नहीं पढ़ा ये हमें नहीं ठीक पता। हमें तो जो मिलता गया और जो अच्छा
1: पढ़ते
0: लगता
1: रहे
0: गया हम पढ़ते गए,
1: जी
0: वो हम अपने शऊर के लिए पढ़ रहे थे।
1: जी
0: लेकिन जब हम एक रिसाले में बैठे हैं तो अब हमें उसकी पूरी मालूमात हासिल करनी होगी,
1: जी
0: क्योंकि हमें मजामीन भी देखने हैं।
1: जी
0: मजामीन जो है पढ़ना और तनकीद को पढ़ना, उसमें से ये समझना कि ये नकाद जो है जो बात कर रहा है वो ठीक है,
1: जी
0: उसके लिए आपको सिर्फ समझ ही नहीं है उसके लिए मालूमात भी
1: जी
0: जरूरी है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस पूरे मंजरनामे में
1: जी
0: कौन कहाँ पर मौजूद
1: अब आपको
0: है।
1: तखलीकात की कदर का तयन करना
0: अब
1: है।
0: तखलीकात तखलीकार सबको हमको जानना है,
1: बिल्कुल
0: मतलब आप यूं समझिए कि सिर्फ यही नहीं है कि हमको
1: जी
0: तखलीक के अंदरून में जाना है,
1: जी
0: बल्कि पूरी तखलीकी दुनिया या मंजरनामा
1: जी
0: है,
1: जी
0: इसका पूरा महलो वकू,
1: जी
0: इसकी तारीख, इसका जोग्राफिया सब हमारे जहन में
1: सब
0: होना
1: नजर में
0: चाहिए।
1: रहना
0: हम
1: चाहिए।
0: जब तक तो ये नहीं समझ पाएंगे हम किसी मजमून के बारे में तय नहीं कर सकते
1: जी
0: कि आया ये मजमून सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मामला ये हो गया कि कल तक तो मैं कारी था,
1: जी
0: अब मैं कारी का नुमाइंदा हो गया।
1: जी
0: एडिटर जो है वो कारी का
1: ये
0: नुमाइंदा
1: बहुत
0: होता
1: बहुत
0: है
1: अच्छी बात कही।
0: और वो कारी और मुसन्निफ
1: जी
0: के दरमियान में एक पुल बन
1: पुल
0: जाता
1: बन
0: है।
1: जाती है।
0: अब वो उसके ऊपर दोनों की जिम्मेदारी है, तख्लीकार के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, यानी कोई ऐसी चीज वो नहीं ले सकता जो अच्छी है और उसने मना कर दिया हो
1: जी
0: और खराब हो और उसने छाप दिया हो। इसी तरह से कारी के साथ में यह है कि भाई कारी ये उम्मीद करता है कि चूंकि एडिटर के हाथ से गुजर के ये तहरीर उस तक पहुंची तो वो अच्छी होनी ही चाहिए,
1: मुसन्निफ के लिए दयानतदार रहना है और
0: मुसन्निफ के लिए
1: कारीन के जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना,
0: मुसन्निफ के लिए दयानतदार ही नहीं पारख भी होना है,
1: पारख भी होना है।
0: तो ये जो चीज है, तो अब मेरे लिए यूं समझिए कि अब मुझे तो पूरी बिसात बिछानी पड़ी अपने सामने। जितने गैप्स थे मेरे मालूमात में तो मैंने बहुत बाबाबता एक डेढ़ बरस दो बरस जी लगा के फिर उसके बाद पढ़ा लिटरेचर को खूब, ये समझने की कोशिश की कि ये पूरा मंजरनामा कैसे तरतीब पाया है
1: जी, जी,
0: और अब हम इसमें कहाँ ऑपरेट करेंगे, कैसे हम चलेंगे।
1: जी जब बतौर नायब मुदीर आपका ये जो पूरा टेन्योर रहा, इसके बाद एक और आपकी तकरारी होती है दूसरी जगह, और फिर उसके बाद हमें मालूम है कि आप दोबारा से आजकल में मुदीर के तौर पर आए।
0: जी
1: तो आप जब पलट के वापस आए और उसमें मुकम्मल तौर पर जो जिम्मेदारियां थी इदारती वो आप ही के पास आ गई जाहिर है, तो उस मौके पे एक तो आपका पिछला तजुर्बा कितना काम आया, और दूसरे ये कि फिर आपने उसमें क्या करने की कोशिश की बतौर मुदीर, जो आपने कुछ ऐसे काम किए हों, कोई ऐसे नंबर निकाले हों जिसके हवाले से आप समझते हो कि वो काबिले जिक्र हैं।
0: अब मामला ये है कि देखिए, अदब की दुनिया में मैंने ये महसूस किया कि सही मानों में इज्जत लिखने वाले की है
1: जी,
0: और इज्जत लिखने वालों में भी तख्लीकार की इज्जत है
1: जी
0: ज्यादा। और मैं अब जिस दुनिया में हूँ वहां पे अब मेरे सामने एक सवाल ये है कि इस दुनिया में जो मेरी लेजिटिमेसी क्या है, यानी मैं एक कुर्सी है जिस पर बैठा हुआ हूँ, मेरी समझ अच्छी है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को अपनी शख्सियत या हमारे अंदर क्या सलाहियत है ये बताने के लिए कुछ हमें लिखना भी जरूरी होगा। तो मेरे जाहिर है कि मेरी बहुत बुनियादी जो पसंद थी वो अफसाना थी, तो मैंने कई अफसाने लिखे और काटे पे मुझे लगा कि ये बात बन नहीं रही है,
1: खुद ही मुस्तरद कर दी।
0: जी खुद ही मुस्तरद करता रहा। हमारे दोस्त मुशरफ आलम जौकी थे, वो बहुत अफसाना निगार थे, बहुत
1: जी,
0: अच्छे और बहुत तेज रो थे, बहुत ज्यादा लिखते थे, तो वो तो बात बात को अफसाना बना देते थे
1: जी,
0: और हमें बड़ी हैरत होती थी। तो हमने कहा अच्छा खैर कोई बात नहीं, तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक लम्हा वदियत आया, ये 1989 की 1 जनवरी की बात है, जब मैं नोएडा में हमारे एक दोस्त हैं, रात हमने 31 दिसंबर की रात वहां गुजारी थी। ये मैं जरा सा एक वाकया इसलिए सुना रहा हूँ कि पहली तखलीक क्या होती है, जैसा होता है 1 जनवरी 31 दिसंबर की रात बनाई, और सुबह को जब हमें आना था तो ठंडक के दिन थे और नोएडा से उन दिनों दिल्ली आना बहुत मुश्किल काम था, बसें मिलती नहीं थी, शार्टर बसों में बहुत भीड़ होती थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती थी। तो बहरहाल किसी तरह से जैसे तैसे करके हम बस में चढ़ गए और उस वक्त सुबह को जो है

0: खुद तज्ज़िया करने की सलाहियत नहीं होगी, आप कोई अच्छा तख्लीक बहुत मुमकिन है, वह भी तौर पे कुछ हो जाए इंसान से एक अलग बात है, कोई बहुत एक आध शेर बहुत अच्छा कह लेता है जिंदगी में, लेकिन अगर आप अच्छा शायर बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे नज़र निगार बनना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि अदब जो है वो कोई आजकल थोड़ी जल्दी जल्दी करने लगे हैं लोग, लेकिन अदब का मामला जो है ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, आपको 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पैदल चलना है
1: जी।
0: ये वो वाला मामला है, धीरे धीरे रास्ते में आपके कामयाबियां भी आती रहेंगी, लेकिन किसी कामयाबी से मुतमईन नहीं होना है, हर कामयाबी को समझना है
1: जी। और उलूम के जितने सोते हैं सबसे फैजियाब,
0: सबसे
1: जितनी असनाफ है सबको पढ़ना
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ये पैगाम है हमारे आज के मेहमान खुर्शीद अकरम साहब का, मशहूर फिक्शन निगार, शायर, माहनामा आजकल के साबिक मुदीर, मुतरजिम और उसके अलावा नक्काद। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद अकरम साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और अपने इल्मी अदबी सफर के बारे में हमसे गुफ्तगू।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मालिक अस्तर साहब, और उर्दू मजलिस का भी शुक्रगुजार हूँ।
1: आदाब।
2: सामईन, अभी आप जनाब खुर्शीद अकरम की बातचीत सुन रहे थे, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे जनाब मालिक अस्तर। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रूबरू, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतजार अली सैफी ने। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की मोहम्मद अली कमाल को आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब आप सुनेंगे समाचार, सबसे पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। असम और पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 148 सीटों के जादुई आंकड़े की आवश्यकता होगी। विधानसभा में 294 सीटों में से 292 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 194 सीटों पर आगे चल रही है, एक पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है और उसने एक सीट जीत ली है। भारतीय कांग्रेस पार्टी और AJUP दो दो सीटों पर आगे है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा AISF को एक एक सीट पर बढ़त प्राप्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से 39 के परिणाम मिले हैं। भाजपा ने 31 सीटें जीती हैं, उसके सहयोगी AGP को दो और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीट मिली हैं। AIUDF एक सीट मिली है। शेष 87 सीटों पर मिले रुझानों के अनुसार भाजपा 50, AGP 6, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5, कांग्रेस 21, AIUDF 1, राइजोर दल 2 और अन्य 2 सीट पर आगे हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालू कबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोहार सीट पर हरा दिया है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र से, जो इस समय भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। जी दीपेंद्र, पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा का शानदार प्रदर्शन हो रहा है, कैसा माहौल है मुख्यालय में?
2: जी अवलिन, पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जो है जश्न का माहौल है और पार्टी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। खासतौर पे बंगाल की जो झालमुड़ी है और वहाँ की रसगुल्ला जो बहुत ही फेमस है, एक दूसरे को खिलाकर जश्न मना रहे हैं। बता दूं कि BJP पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और वहीं लगातार तीसरी बार असम में भी सरकार बनेगी। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए जो है पार्टी मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो SPG की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है और मुख्यालय में आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी कर दी गई है और पार्टी कार्यकर्ता खास तौर पे मुख्यालय के अंदर और बाहर काफी संख्या में यहां मौजूद हैं और वो जश्न मना रहे हैं। जी लवलीन,
1: धन्यवाद जानकारी के लिए दीपेंद्र। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम TVK के इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। TVK ने विधान सभा की 234 सीटों में से 101 पर बढ़त बना ली है और एक पर वो आगे है। राज्य में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है। कांग्रेस एक पे बढ़त है, चार उसने जीती है। AIADMK 50 बढ़त, PMK 5, DMDMK 2, IUML 2 और भाजपा 2। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 64 के परिणाम मिल गए हैं। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती है, 36 पे वो आगे चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 14 सीटें जीती हैं, 11 पर आगे चल रही है। IUML ने अब तक 7 सीटें जीती हैं, 15 पर आगे चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे चल रही है। केरल कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं और 3 पर आगे है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में एक एक सीट जीती है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में एक एक सीट पर आगे है। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक सीट जीती है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी दूसरे उपचुनाव में आगे चल रही है। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 में से 21 सीटों के रुझान और परिणाम मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है और 2 सीटें जीत ली हैं। AINRC ने 9 सीटें जीत ली हैं, 1 पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, DMK ने 1 जीती है और 1 पर आगे बढ़ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: K is leading at 52 seats. PMK is leading on 5 seats. Indian National Congress (INC) is ahead on 4 seats. BJP has taken lead on 2 seats and others at 8 seats. In Assam, the ruling BJP is all set to retain power in Assam for the third consecutive term. Out of a total of 126 assembly seats, results have been declared for 39 constituencies. BJP has bagged 31 seats, while its allies AGP has won 2 seats and Borderland People's Front has secured 5 seats. On the other hand, All India United Democratic Front, AIUDF, has secured 1 seat. As per trends available for the remaining 87 seats, BJP is leading in 50 seats, while its ally AGP is ahead in 6 and Borderland People's Front in 5. Congress is leading in 21 seats, AIUDF in 1, Raijor Dal in 2 seats and others in 2 seats. The majority mark in the 126-member Assam Legislative Assembly is 64 seats. In Kerala, trends and results available for all 140 seats. Congress has won 5 seats and leading in 57 constituencies. State's ruling CPM has won 4 seats and is ahead in 23 seats. And its ally CPI is leading in 9 seats. RSP 3, Kerala Congress is leading in 7 and BJP in 2 seats. Results have also come in from Puducherry out of 13 results declared. Ruling AINRC has won 6 seats and is leading in 4 seats. Congress has won 1 seat and is ahead in 6 seats. DMK has won 1 seat and is leading in 3 seats. BJP has won 2 seats and is leading in 2. As per Election Commission, barring Puducherry, several rounds of counting are due to be taken up. In assembly by-elections for 7 constituencies across 5 states, BJP has won a seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland and is leading in 1 each in Maharashtra and Karnataka. Congress has won a constituency in Karnataka, while in Maharashtra, BJP ally Nationalist Congress Party, NCP, is leading in the other constituency where by-polls was held. Here is the overall tally in West Bengal. BJP is leading in 190 and has won 6 seats. TMC leads 89, wins 2. In Assam, BJP leads in 38, wins 43. Congress leads 21. In Tamil Nadu, TVK leads in 95, wins 11. AIADMK leads 47. And DMK leads 56 and wins in 3. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, अब वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का. श्रोताओं, सबसे पहले खोए व्यक्ति का नाम है दौलत राम. इनके पिता का नाम है स्वर्गीय हुकुम चंद. पता है हाउस नंबर 38, मेन बाजार, इंदिरा मार्केट, लोनी, गाजियाबाद. अंतिम बार इन्हें मेन बाजार इंदिरा मार्केट में देखा गया है. आयु 77 वर्ष है. शरीर की बनावट सामान्य शरीर है. इनका कद 5'3" है. प्रार्थी का पूरा पता है श्री पवन कुमार, पुत्र श्री दौलत राम, निवासी मेन बाजार इंदिरा मार्केट, लोनी, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद. मोबाइल नंबर है 9350588161. यदि इनके बारे में आप लोगों को कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सूचना दे सकते हैं. खोए व्यक्ति का नाम है जीराज सिंह. अंतिम बार इन्हें 28/3/2026 को करहेड़ा न्यू कॉलोनी में देखा गया है. आयु 72 वर्ष है. शरीर की बनावट दुबला बदन है. कद लगभग 6 फिट है. ये मानसिक तौर से कमजोर हैं और बोलने में भी इन्हें समस्या आती है. मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण ये घर से कहीं चले गए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं. यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सूचना दे सकते हैं. खोए व्यक्ति का नाम है इरशाद उर्फ इस्माइल. पता है गली नंबर 4, प्रकाश नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, रविंदर रविदास का मकान किराए पर. अंतिम

बार इन्हें चौधरी चरण सिंह गेट पर देखा गया है। आयु 42 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। कद 5 फुट 8 इंच है। ये घर से बिना बताए चले गए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। प्रार्थी का पता है श्रीमती रेशमा, पत्नी इरशाद। पता है गली नंबर 4, प्रकाश नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, रविंदर रविदास का मकान, गाजियाबाद। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना गाजियाबाद में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है विष्णु। अंतिम बार इन्हें 2/4/2025 को इनके घर पर ही देखा गया है। विष्णु की आयु 12 वर्ष है। शरीर की बनावट दुबला पतला शरीर है। कद 4 फुट 6 इंच है। ये घर से घूमने के लिए निकले थे और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। प्रार्थी का पता है कांति प्रसाद, पुत्र श्री कंची प्रसाद सिंह, निवासी संगम पार्क, खोड़ा कॉलोनी, थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना खोड़ा, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है विनोद ठाकुर। पिता का नाम है स्वर्गीय राजेंद्र ठाकुर। निवासी ग्राम रहिका, थाना रहिका, जिला मधुबनी, बिहार। अंतिम बार इन्हें मकान नंबर 238 सेक्टर 1, वसुंधरा इंदिरापुरम, गाजियाबाद में देखा गया है। आयु 38 वर्ष है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत है। गोल चेहरा है और सिर पर बाल कम है। रंग गोरा है। इनका कद 5 फुट 5 इंच है। विशेष पहचान हाथ के अंगूठे पर कट का निशान है। ये घर से बिना बताए चले गए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। प्रार्थी का पूरा पता है विनोद ठाकुर, पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र ठाकुर, निवासी ग्राम रहिका, थाना रहिका, जिला मधुबनी, बिहार। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना इंदिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है प्रिया। इनके पिता का नाम है सतीश। निवासी ग्राम किशनपुर, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़। अंतिम बार इन्हें ग्राम नायफल उर्फ ऊंचा गांव, थाना अरनिया, जनपद बुलंदशहर में दिनांक 26/3/2026 तक देखा गया है। प्रिया की आयु 18 वर्ष है। कद 5 फुट 4 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। चेहरे का रंग सांवला है। प्रिया के ऊपर इनाम राशि भी है जो कि 2,000 रुपये है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना अरनिया, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं और साथ ही साथ इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं, 9058548774। खोए व्यक्ति का नाम है मनी। पिता का नाम है कुलदीप। निवासी हिसारा, थाना अरनिया, जनपद बुलंदशहर। अंतिम बार इन्हें ग्राम हिसारा में तारीख 17/3/2026 तक देखा गया है। आयु 16 वर्ष है। कद 4 फुट 7 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है और चेहरे का रंग गेहुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना खुर्जा, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं और साथ ही साथ इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं जो कि अनुराग गौतम, थाना अरनिया, बुलंदशहर का है।

0: 9410865804। खोए व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र सिंह। अंतिम बार इन्हें 25/3/2026 को प्लॉट नंबर 118 SF1 न्यायखंड 1 इंदिरापुरम में देखा गया है। आयु 56 वर्ष है। शरीर की बनावट इकहरा बदन है और चेहरा गोल है, रंग गोरा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच है। ये मानसिक रूप से सही नहीं है। प्रार्थी का पता है मंजू सिंह, पत्नी सुरेंद्र सिंह, निवासी प्लॉट नंबर 118 SF1 न्यायखंड 1 इंदिरापुरम गाजियाबाद। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद में सूचना दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये मोबाइल नंबर भी दे रखा है, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं 8923947494। खोए व्यक्ति का नाम है जिराज सिंह। अंतिम बार इन्हें 28/3/2026 को करहेड़ा न्यू कॉलोनी में देखा गया है। आयु 72 वर्ष है। शरीर की बनावट दुबला शरीर है। कद लगभग 6 फिट है। ये मानसिक रूप से कमजोर हैं और बोलने में भी इन्हें समस्या होती है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब वक्त है एम्प्लॉयमेंट न्यूज का।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation, Lucknow, has issued recruitment notice for multiple posts including Biomedical Engineer Quality Control, Accounts Officer and Pharmacist Quality Control on deputation or contract basis with a maximum age limit of 45 years. Candidates must possess relevant qualifications such as BTech, BE, CA, ICWA, MCOM, MBA or B-Pharma with required experience in quality control or finance. Applications must be submitted in the prescribed format only and detailed information is available at www.upmsc.in. The last date for submission is 5/5/2026. The Central Vigilance Commission, CVC, New Delhi has invited applications for one post of Hindi Translator, Group B, Level 6, on deputation basis. Eligible candidates must be officials from central or state governments with required experience in translation work and administrative duties. Applications must be forwarded through proper channel with APARs of the last 5 years, vigilance clearance and integrity certificate within 45 days of application. Details and prescribed format is available at https://cvc.gov.in. The Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Government of India, Mumbai, has invited applications for engagement of 18 young professionals and 20 legal professionals. Eligible candidates may refer to detailed eligibility criteria and vacancy circular available on the official website. And the last date for receipt of applications is 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website www.txcindia.gov.in.

0: The Ministry of Education, Department of Higher Education has issued a notification for the appointment of a director at IIITDM Kanchipuram, Tamil Nadu. The post requires a PhD with outstanding academic record with at least 10 years of experience as professor and strong administrative and research leadership credentials. The position carries a fixed pay of 2,10,000 plus 11,250 special allowance. Applications must be submitted online till 11/5/2026. For details, kindly refer to the website at www.nitcouncil.org.in, or you could also go on to www.education.gov.in. The Ministry of Defence, Government of India, through the Department of Defence Production, has invited applications for the post of Chief Executive Officer, Managing Director in Indo-Russian Rifles Private Limited, a defence sector joint venture. The position requires senior level leadership experience in defence, manufacturing or allied strategic sectors. The last date for receipt of applications is 7/5/2026, up to 15 hours, and the detailed eligibility conditions and qualifications and requirements and application format is available on the website. Kindly visit www.ddpmod.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान असम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सीनियर असिस्टेंट एक पद सामान्य वर्ग के लिए, जबकि एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वेतन स्तर रहेगा L5। कुल पद हैं 2, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, जबकि असिस्टेंट का एक पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। वेतन स्तर L4, कुल पद 1 और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की वेबसाइट www.nidj.ac.in अथवा नेशनल करियर सर्विस www.ncs.gov.in पर भी आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2 तथा सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1। विभाग हैं जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग, सूक्ष्म कणिका एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग। कुल पद 15 हैं, जिनमें से अनारक्षित 8 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर के कुल पद हैं 10, जिनमें 4 सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग में ये पद उपलब्ध हैं। प्रोफेसर के कुल 5 पद हैं, जो जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग में उपलब्ध हैं, और कुल 5 पदों में से 4 सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 1 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नियमित पद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और प्रोग्रामर। संविदात्मक पद हैं चेयर प्रोफेसर, विजिटिंग फेलो और रिसर्च असिस्टेंट। ऑनलाइन आवेदन जमा करने, आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि है 7 मई 2026। संलग्नकों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि है 13 मई 2026। चेयर प्रोफेसर के लिए नामांकन आवेदन

0: जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in/rac। मत्स्य पालन विभाग सहायक आयुक्त मत्स्य पालन के 2 पदों की रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत पात्रता मानदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बायोडाटा प्रारूप आदि के लिए आप देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट www.dof.gov.in। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। पदों के नाम है उपाध्यक्ष मुंबई पोर्ट प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 28 मई 2026। अभ्यर्थियों को आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से भेजना होगा onlinevacancy.shipmin.nic.in। अधिक जानकारी के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.shipmin.gov.in। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। पद के नाम हैं कोर्ट मास्टर 2 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद तथा वैयक्तिक सहायक 1 पद। पदों के बारे में अधिक जानकारी, विवरण, नियम और शर्तों आदि के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट का पता है jalshakti-dowr.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब आप सुनेंगे समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी बराबर हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ आज मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
4: हेलो मुनीश। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुनीश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल्स ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. BJP heads for landslide victory in West Bengal Assembly elections.
0: और दोस्तों, असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने को है तैयार।
4: In Tamil Nadu, actor turned politician Vijay's party TVK delivers a super hit on debut, ruling DMK on the third spot. Chief Minister MK Stalin trails.
0: और केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF स्पष्ट बहुमत की ओर।
4: NDA ऑन वे टू रिटेन पावर इन पुदुचेरी।
0: जबकि विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में 1-1 सीट जीत ली है।
4: Yes, sir. Now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India's rise as a global medical and wellness destination. And, well, listeners, today someone sitting thousands of kilometers away chooses India for the surgery, recovery or even peace of mind.
0: दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि देश में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया भर से लोगों को सीमाएं पार कर

0: के यहां खींच लाती है, घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए। चलिए आज इसी के बारे में बातें करते हैं।
1: Yes, and across the world today, healthcare is becoming expensive. Waiting periods are getting longer, and lifestyle diseases are quietly rising. So people are asking a very practical question. Where can I get high-quality treatment without draining my life savings?
0: और इसीलिए इसका जवाब तेजी से भारत बनता जा रहा है। भारत इस क्षेत्र में कोई इत्तेफाक से कदम नहीं रख रहा है। ये एक ऐसा देश है जहां इलाज हमेशा से जीवन का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो सर्दी जुकाम होने पर दादी नानी का काढ़ा हो या फिर सुबह सवेरे पार्कों में किए जाने वाले योग सत्र। हमने डॉक्टरों और पारंपरिक उपचारों दोनों पर ही भरोसा किया है।
1: Of course, and healing here has always been holistic. Now that same philosophy is reaching the world, India's strength lies in two powerful pillars. On one side, this advanced medical care, including complex surgeries, organ transplants, cancer treatment that are performed with cutting-edge technology.
0: और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वेलनेस और रोकथाम भी है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, ये ऐसी पद्धतियां हैं जो बीमारी का इंतजार नहीं करती बल्कि उसको होने से रोकती हैं। तो कैसी जगह जो आपकी बीमारी का इलाज भी कर सके और आपको ये भी सिखाए कि भविष्य में उससे कैसे बचा जाए। भारत ठीक यही चीज पेश करता है।
1: Yes, and through the flagship Heal in India initiative, the government is positioning the country as a premier destination for integrated and holistic healthcare. It has two vibrant pillars. First is medical tourism, which focuses on curative interventions such as complex surgeries by specialized hospitals and healthcare institutions.
0: दोस्तों वेलनेस टूरिज्म दरअसल ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अन्य आयुष पद्धतियों जैसी पारंपरिक प्रणालियों के जरिए निवारक और समग्र कल्याण पर केंद्रित है और ये दोनों स्तंभ मिलकर भारत के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इकोसिस्टम की नींव को बनाते हैं।
1: And let's create a simple hypothetical example. A patient from another country comes to India for heart surgery. The procedure is successful, the cost is far lower than back home. And the bonus point is that during recovery, they're introduced to yoga, breathing techniques. They are guided on diet through Ayurveda. They learn ways to manage stress. They don't leave with stitches alone. They leave with a new lifestyle.
0: लेकिन क्या ये एक तरह की अलग तरह की स्वास्थ्य सेवा नहीं है? और पूरी दुनिया इसे जरूर नोटिस तो कर रही है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भारत आते हैं। असल में एक ही साल में 5 लाख से ज्यादा लोग खासतौर पर मेडिकल उपचार के लिए यहां आए और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह असल में कुछ खास बातें हैं। पहली तो है क्वालिटी। भारत में कुशल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों का एक बड़ा समूह पहले से मौजूद है।
1: Yes, and the second reason, Munish, is that technology hospitals here follow global standards with strict safety and quality checks. And third, and this surprises many, it includes affordability. Treatments that cost a fortune elsewhere are available here at a fraction of the price.
0: और ये नहीं भूला जा सकता है अभिषेक कि भारत योग की जन्मभूमि और आयुर्वेद का घर है। एक ऐसी धरती जहां उपचार सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। आज इन परंपराओं को न सिर्फ सहेज कर रखा गया है बल्कि इन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। जो लोग आयुष उपचार के लिए भारत आना चाहते हैं उनके लिए खास वीजा की व्यवस्था है और अब तो बीमा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी शामिल हैं।
1: एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइजिंग इंडियास लीडरशिप इन होलिस्टिक हेल्थ एंड स्लोली द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग वी हैव नोन फॉर सेंचुरीज दैट इज हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट क्योरिंग डिजीज इज अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस।
0: दोस्तों एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। हम कितनी बार तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं, हम कितनी बार अपनी देखभाल करने में देर कर देते हैं। हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या होगा अगर वेलनेस कोई बात का विचार न होकर हमारे जीने का एक तरीका बन जाए।
1: And that's the idea India is sharing with the world. And this transformation isn't random. There's a clear vision behind it. New medical hubs have been planned, places where treatment, research and wellness exist together.
0: और अब तो वही अभिषेक देखिए कि हवाई अड्डे जो हैं वो मरीजों का स्वागत करने के लिए खास मदद की व्यवस्था कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विदेश में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए भारत में अपने पूरे इलाज की यात्रा की योजना बनाना आसान बना रहे हैं, सलाह मशवरे से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक। इसलिए अब ये कोई मुश्किल काम नहीं रहा, ये पूरी तरह से आसान भी है और सुचारू भी है।
1: एंड टू साइट सम स्टेटिस्टिक्स मुनीश, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020-21, इंडिया रैंक्स 10th अमंग द टॉप 46 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस ग्लोबली, 12th अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 20 वेलनेस टूरिज्म मार्केट्स, 5th अमंग द टॉप 10 वेलनेस डेस्टिनेशंस in the Asia Pacific region, and India is becoming a place where the world comes to heal, a country where science meets a tradition, where recovery includes both medicine and mindfulness.
0: दरअसल दोस्तों, प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक उत्कृष्टता तक भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा आंदोलन का सिर्फ अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि वो देखभाल, करुणा और उपचार की एक ऐसी दृष्टि के साथ इसका नेतृत्व कर रहा है जो वास्तव में परिपूर्ण प्रतीत होती है।
1: And now let's move to one of the most discussed topic of the day in a country today, that is the assembly elections and celebrations underway at BJP headquarters in New Delhi, following the BJP's outstanding performance in West Bengal and Assam. Our correspondent Dipendra Kumar spoke to some of the women party workers who credited Prime Minister Narendra Modi's leadership and governance model for the victory in these states.
2: पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस जीत को।
3: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। असम में माँ कामाख्या ने और कलकत्ता में जय काली कलकत्ते वाली ने बंगाल का और असम का पुनरुद्धार कर दिया। असम तो ठीक था, लेकिन बंगाल में बहुत ही अराजकता था। माँ काली का आशीर्वाद मिल गया बंगाल को।
2: ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और यहाँ पर बंगाल के झालमुड़ी और बंगाल के रसगुल्ले जो है एक दूसरे को बांट रहे हैं। आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस जीत को।
3: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहूँगी कलकत्ता वाली माँ काली सबके साथ दिया है, सारे नारियों के साथ दिया है, सारे लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएंगे आप। और इस बात पे हम कहना चाहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम।
2: पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री थी, फिर भी जो है महिलाओं ने लगता है भाजपा को साथ दिया, क्योंकि 200 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसे?
3: बंगाल भयमुक्त, रोगमुक्त, सारे आपातकाल मुक्त हो गया, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मैं ये कहूँगी कि ममता बनर्जी एक महिला थी, लेकिन उनके राज्य में जितना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की शिकार हुई बहन बेटियां, सर्वसार कर दिया पूरे बंगाल को। दीदी खेला ना होवे मेला होवे मेला।
2: आप ये बताएं कि जीत का श्रेय किसे जाता है?
3: यह जीत का सारा वो जाता है मोदी जी को, क्योंकि एक मोदी जी है जो देश को बदल सकता है और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको देख लिया एक है तो मोदी जी है। जय श्री राम हिंदुत्व को और सनातन धर्म को, क्योंकि आज सनातन धर्म की वजह से ये बंगाल की जीत हुई है। जय हो मोदी की, जय बंगाल, जय श्री राम, जय श्री राम।
2: तैयारियां यहां जोरों पे है, शाम में प्रधानमंत्री, अब से कुछ देर में लगभग 6 से 6:30 के बीच में प्रधानमंत्री यहां आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
0: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास हमारे लिए उनके पास।
1: यस, एंड स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम बेंगलुरु। An Indian Institute of Horticultural Research in Hesarghatta village near Bengaluru had organized an awareness campaign on a balanced use of fertilizer under Mere Gao Mera Gaurav initiative, and the farmers were briefed by the agriculture scientist about the precise quantity of fertilizer to be used according to the soil quality and nutrient management. We have a report.
4: Under Mera Gaon Mera Gaurav initiative, the Indian Institute of Horticultural Research, IIHR, reached out to the farmers to create awareness about the balanced use of fertilizers and encourage eco-friendly alternatives. During the intensive awareness campaign, the scientists of the research unit spoke about sustainable soil health management, scientific nutrient management, and utilization of eco-friendly alternatives to chemical fertilizers. During the technical sessions, the experts emphasized on soil testing as the foundation Commission for Precise Nutrient Management, the ICAR-IIHR technologies such as ARCA Microbial Consortium, ARCA Decomposer, Crop Specific Micronutrient Formulations, ARCA Fermented Coco Pit and ARCA Sasya Poshak Ras were demonstrated before the farmers. They highlighted the adverse effects of excessive chemical fertilizers and stressed on the need to adopt biofertilizers, green manure,

0: जा सकते हैं, और यही दोस्ती दरअसल कभी कभी किसी का जीवन संवारने का भी काम करती है।
1: महाराष्ट्र के बीड जिले का एक शहर है अंबाजोगाई। साहित्य, कला और सांस्कृतिक विरासत को आज के युग में भी इस शहर और यहाँ के शहरियों ने अच्छे से संभाला हुआ है। इसी अंबाजोगाई के कुछ मित्रों ने एक साथ आकर पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ किया कि कईयों की जिंदगी बदल गई। यहाँ के एक साहित्यिक अभियान में कार्यरत अभिजीत जोंधड़े ने

0: सदस्य हो गए थे। जिस उद्देश्य से हम एकत्र हुए थे वह पूरा हो चुका था। तब हमने तय किया कि इस कार्य को यही समाप्त नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही अन्य होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करनी है। इसी विचार से हमारा समूह और बड़ा होता गया। आज हमारे इस प्रयास से 5 छात्र इंजीनियर बन चुके हैं, 5 छात्र डॉक्टर बन चुके हैं और 2 छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। वर्तमान में लगभग 70 लोग हर महीने 200 रुपए यानी सालाना 2400 रुपए का योगदान देकर इस कार्य में जुड़े हुए हैं। इस काम के दौरान हमें समाज की कई समस्याओं और लोगों की कठिनाइयों को करीब से समझने का अवसर मिला। पास के ही गांव में एक लड़की थी, उसे 10वीं में 96% अंक मिले थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पढ़ाई रुकने और कम उम्र में शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इस बात का हमें पता चला, हमने उसकी मदद की। पहले उसने पॉलिटेक्निक किया और आगे फिर इंजीनियरिंग पूरा किया। आज वह लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी नौकरी कर रही है। जिन छात्रों को हमने मदद की वे आज हमारे समूह के सदस्य बन चुके हैं और स्वयं भी आर्थिक योगदान दे रहे हैं। लोग इससे अब जुड़ने लगे हैं और एक बहुत बड़ा काम हो रहा है।
1: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इस शेर की तरह इस मैत्री ग्रुप का दिन ब दिन विस्तार हो रहा है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
2: And now the story from Pananji. The Goa government has launched a month-long statewide health initiative to bring free Ayurvedic care closer to people. We have more from a correspondent.
3: Chief Minister Pramod Sawant has launched the Health with Ayurveda hashtag checked by Doctor 2.0 campaign, a major public health initiative. As part of this campaign, free Ayurvedic health camps will be organized from 5th of May to 5th of June, offering consultations, treatments and medicines through a network of over 190 doctors across government and private facilities. Services are being delivered through district hospitals, primary health centers, 70 private clinics and 41 Ayushman Arogya Mandirs, ensuring outreach even in remote areas. The campaign focuses on early detection and management of lifestyle diseases like diabetes, hypertension and obesity using traditional therapies. Citizens must carry Aadhaar for registration. Details of nearby centers are available on the goaonline.gov.in portal, with a dedicated helpline also in place. The government says the drive promotes a preventive, wellness-first approach to healthcare. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
4: दोस्तों, कच्छ का रण जहां प्रकृति अपने अद्भुत रंग बिखेरती है, हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है। इनमें फ्लेमिंगो की मौजूदगी इस इलाके को बना देती है और भी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व का उल्लेख करते हुए इन्हें पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताया है। एक रिपोर्ट।
5: स्थानीय भाषा में सुरखाब, हंज और राजवी रालाखा के बाराती जैसे नामों से पहचाने जाने वाले फ्लेमिंगो अब कच्छ की पहचान बन चुके हैं और यह गुजरात का राज्य पक्षी भी है। लंबी घुमावदार गर्दन, हल्के गुलाबी रंग के पैर, लाल रंग की विशिष्ट चोंच और आकर्षक पंखों के साथ इनकी अदाओं से पक्षी प्रेमी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पानी में एक पैर पर खड़े रहना, धीमी चाल से चलना और उड़ान भरते समय विमान जैसी भव्यता इनकी खास पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में फ्लेमिंगो की इसी खूबसूरती का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पक्षी कच्छ में पर्यावरण संरक्षण का एक सुंदर प्रतीक बन गए हैं।
6: पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती है। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूँ, इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत तो हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं, पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं।
5: कच्छ की अनोखी भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना और बड़ी संख्या में खूबसूरत पक्षियों के निवास का यह अद्वितीय संगम हर वर्ष मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवानी।
2: हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एम्बिशियस एंड फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव मिशन 32% इन द 2026-27 बजट The mission aims to increase the state's forest cover from 29.50%

0: बनारस घराने के वादक पंडित किशन महाराज, जिन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने 1973 में पद्मश्री और फिर 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ एक मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। हमारी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि।
1: Yes, and we are also remembering Jyotindranath Tagore, who was born on this day in 1849. He was the central figure of the Bengal Renaissance and the elder brother of Nobel laureate Rabindranath Tagore. A true polymath, he excelled as a playwright, musician, editor and painter. He is perhaps the most celebrated for being the primary mentor who nurtured his younger brother's genius, often composing music on the piano while Rabindranath wrote lyrics to the tunes.
0: और दोस्तों, आज जयंती है त्यागराज की, जिनका जन्म हुआ था आज ही की तारीख को 1767 में तंजावुर।

0: तमिलनाडु में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के कवि। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की और उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ आकाशवाणी में जैसे ही हम इसकी पुरानी इमारत में प्रवेश करते हैं तो एक तरफ हमें दिखाई देते हैं स्वामी हरिदास जो तानसेन के गुरु थे, और दूसरी तरफ त्यागराज, और फिर सीढ़ियों से ऊपर एक रास्ता जाता है।
1: Absolutely. And Tyagaraj, like Munishji was mentioning, was of course born on this day in 1767, often referred to as Saint Tyagaraj or Tyaga. He was a legendary composer and singer of Carnatic music. He is celebrated as one of the trinity of Carnatic music alongside his contemporaries Muthuswami, Dikshitar and Swami Shastri, a prolific composer and a profound devotee of Lord Ram. He is credited with thousands of devotional compositions, primarily in Telugu and Sanskrit.

0: बाबूजी मैंने आपके लिए चाय बनाई है, लीजिए।
1: तू तो रह नहीं दे अंसा, तेरी चाय नहीं जमती सबको पता है।
2: Yes, and we're also remembering Jotinder Singh Jyoti Randhawa, who is a prominent Indian professional golfer who reached a career-high world record ranking of 70 in 2008 and became the first Indian to top the Asian Tour Order of Merit in 2002. Most recently, in January 2024, he won the final stage of the Legends Tour qualifying school in Turkey to secure full playing rights on the European Senior Tour.
3: और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो आज्ञा दीजिए हमें, यानी मुझे मुनीश शर्मा को और हमारे साथी अभिषेक मुखोपाध्याय को, ये परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो चले आइए हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newsonair.gov.in, और हमें आप हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी सुन सकते हैं। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। असम और पुदुचेरी में एनडीए के सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के इतिहास रचने की ओर है और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 15 साल से सत्ता में मौजूद तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा की 294 सीटों में से 293 के रुझान मिल गए हैं। भाजपा 192 सीटों पर आगे है और 6 सीट पर जीत कर निर्णायक बढ़त बना ली है। तृणमूल

0: कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है, एक सीट जीतती है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सीट जीत ली है और एक सीट पर आगे है। अन्य दलों को 4 सीटों पर बढ़त प्राप्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 126 सीटों में से भाजपा और सहयोगी दलों ने 70 सीटें जीती हैं और 30 पर आगे हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों को 2 सीटें मिली हैं, 20 पर वो आगे हैं। अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली है और 2 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट सीट पर हरा दिया है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस समय भाजपा मुख्यालय में हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा मौजूद हैं। अनुपम, पश्चिम बंगाल और असम में पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है, पार्टी मुख्यालय में कैसा माहौल है?
1: जी लवलीन, पार्टी मुख्यालय में आनंद और उत्साह का माहौल है और जहां पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग लगाकर और सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहां उत्साह का माहौल है। और प्रधानमंत्री 6:30 बजे यहाँ, प्रधानमंत्री जी का यहाँ 6:30 बजे पहुंचने का अनुमान है और उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रीगण और भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे।
0: धन्यवाद अनुपम इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। टीवी के ने 234 सीटों में से 108 पर आगे है और 7 सीट जीत ली हैं। डीएमके और सहयोगी दलों को 7 सीटें मिली हैं, 64 पर आगे है। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 3 सीट जीत चुके हैं और 51 पर आगे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा आईयूएमएल सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को करारी शिकस्त देने की ओर अग्रसर है। 140 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं और 23 सीटों पर आगे है। कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल ने 9 सीटें जीती हैं और वो 13 सीटों पर आगे है। सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक 20 सीटें जीती हैं, 6 सीटों पर आगे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं केरल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर आगे है। भाजपा ने 1 सीट जीती है, 2 पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मदम ने 11,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की सभी 30 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। एनडीए गठबंधन ने 12 सीटें जीत ली हैं, 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईएनआरसी ने 9 सीटें जीत ली हैं, 2 पर उसकी बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीतनी है और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, डीएमके ने 1 सीट हासिल की है और 4 सीटों पर उसकी बढ़त है। निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 सीट जीत ली है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में 1-1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 1 सीट जीती है जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूसरे उपचुनाव में आगे चल रही है। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्रतियोगिता में बने रहने की नजर से महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: देखिए साहिद भाई,
1: जी वृंदावन।
0: हम अपने भाइयों के लिए मिले जुले लोकगीत लेकर आते हैं, और आज ऐसे ही कुछ प्यारे से लोकगीत लेकर आए हैं अपने भाइयों के लिए। सबसे पहले हम अपने भाइयों को सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

हवेली छज्जेदार बना लीजो। पुष्पा गोसाई की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये रागिनी। और इसी लोकगीत के साथ अब एक बार फिर आपको सुनवाते हैं रुबिया भारती की आवाज़ में ये लोकगीत।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये लोकगीत रूबिया भारती की आवाज में, और आगे बढ़ते हैं, अपने भाइयों को सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत, ऋषि पाल खत्ताना और मीनाक्षी पांचाल की आवाज में।

0: ऋषि पाल खदाना और मीनाक्षी पांचाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: जी
0: और वंदना बहन, अब अपने भाइयों बहनों को एक बार फिर ले चलते हैं और तू ही राम और उनके साथियों के जो है कि साज पे सुनवाते हैं ये एक नई लोकगीत।

0: अभी हम
1: श्रीराम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ये लोकगीत,
0: जी
1: और इसी के साथ वंदना बहन अब घड़ी कहती है कि अपने भाइयों बहनों से विदाई लें।
0: जी हाँ, और इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजन यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे मेरे सहयोगी
2: संचय जैन। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो आज के इस कार्यक्रम में जिन खेल गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी उसमें हम शामिल करेंगे क्रिकेट को, साथ ही साथ बात होगी एथलेटिक्स की, इसके अलावा शूटिंग, आर्चरी, अन्य खेल गतिविधियों पर भी होगी हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम को स्पेशल न्यूज के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं संचित की जो क्रिकेट का रोमांच है वो सभी के दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा चढ़ता है। और इस वक्त तो आईपीएल का रोमांच है और आईपीएल में मुकाबले जो है वो एक के बाद एक बेहद रोमांचक होते जा रहे हैं।
2: बिल्कुल कविता, कल दो अच्छे मैच खेले गए आईपीएल में। पंजाब जो कि पहले स्थान पे है हार गए, थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, बट पंजाब हार गए, उनकी बैटिंग नहीं चली और लगातार विकेट गिरती रही। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी कल हार का सामना करना पड़ा उन्हें। आज भी एक अच्छा मैच खेला जाएगा, हालांकि मुंबई और लखनऊ के बीच में दोनों बॉटम ऑफ द टेबल हैं, 9वें और 10वें स्थान पे, तो देखने वाली बात है कौन आईपीएल में जीवित रहेगा।
1: जी बिल्कुल, और अगर बात करें विस्तार से तो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 46वें मुकाबले में रविवार को गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रन बनाए। सूर्यांश शेडगे ने 29 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। वहीं मार्क्स स्टोइन्स ने 40 रन की पारी खेली। जेसन होल्डर ने 4 विकेट अपने नाम किए। साथ ही मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट चटकाए। 164 रन के टारगेट को गुजरात टाइटन्स ने एक गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। वॉशिंगटन सुंदर ने 6 लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मौजूदा सीजन में गुजरात की 6ठी जीत है। 12 अंकों के साथ गुजरात टाइटन्स ने प्लेऑफ की ओर जो है वो कदम बढ़ा दिए। वहीं पंजाब को इस सीजन में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। 13 अंकों के साथ पंजाब अभी भी पॉइंट टेबल में टॉप पर है। गुजरात टाइटन्स के लिए साई सुदर्शन ने 41 गेंद पर 57 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 23 गेंद पर नाबाद 40 रन बनाए। जॉस बटलर ने 22 गेंद पर 26 और निशांत सिंधु ने 15 रन बनाए। शुभमन गिल और जेसन होल्डर ने 5-5 रन बनाए। राहुल तेवतिया दो रन बनाकर आउट हो गए। अर्शद खान 8 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह और विजय

0: कुमार वैशाख ने दो दो विकेट लिए। मार्को यानसेन और मार्कस ने एक एक विकेट लिया। वहीं अगर बात करें आज खेले जाने वाले मुकाबले की, लेकिन जैसा मेरे साथी संचित ने बताया उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला है, लेकिन जेसन होल्डर जिन्होंने कल अपनी टीम को काफी अच्छे एक पोजीशन में पहुंचाया, जीत के बाद क्या कहना था लीजिए सुनिए।
1: You sum it up quite nicely. You know, I guess that's pretty much has been our template for the season, our seasons before as well too. You know, we've got some solid players. You know, and the beauty about how we've been playing is that, you know, it's not one individual doing it every single day. You know, different players are stepping up on different days. So, I think we're still arguing.

0: टीमें जीतने के लिए आई हैं संचित, तो जिस तरह से अभी आईपीएल का रोमांच जो है दिन दिन करके बदल रहा है, अगर पंजाब की बात करें तो काफी अच्छी पोजीशन में है पंजाब, हार गई लेकिन टॉप पर है। उसके साथ साथ आज का जो मुकाबला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों के लिए ही ये मुकाबला जो है बहुत ही करो या मरो मैच कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर मुकाबले खेले जा रहे हैं तो उसी में हम ये बताएंगे कि कौन से जो मैचेस हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं और क्या होने वाला है आज के मैच में।
1: जी बिल्कुल कविता, देखिए मुंबई और लखनऊ का जो मैच है इसमें दोनों ही टीम को जीतना बहुत जरूरी है। जो भी टीम ये मैच हारेगा तो ऑलमोस्ट समझा जाएगा कि वो आईपीएल 2026 से बाहर ही हो जाएगा। दोनों ही टीम स्ट्रगल करती आई हैं। लखनऊ की टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी है, वैसे ही मुंबई की टीम बहुत अच्छी है। इंडियन प्लेयर्स भरे हुए हैं लेकिन दोनों ही टीम ने इस साल एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं किया है, जिसकी वजह से वो 9वें और 10वें स्थान पर हैं।
0: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। एमआई और एलएसजी के बीच ये मुकाबला दुबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। और जिस तरह से दोनों ही टीमें खेल रही हैं, दोनों ही टीमों के लिए मुकाबले, जैसा मेरे साथी ने कहा, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी है कि करो या मरो के मैचेस हैं, क्योंकि आगे जाना है। तो आज की जो ये परफॉर्मेंस है वो इन्हें जीतनी ही पड़ेगी। और अब क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट टेबल है वो हम आपको बता दें, लेकिन पॉइंट टेबल में जैसा मैंने कहा कि पंजाब की टीम है वो टॉप पोजीशन पे बनी हुई है 13 अंक लेके। आरसीबी की जो टीम है वो 12 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। एसआरएच भी तीसरे पायदान पर है 12 अंकों के साथ। वहीं आरआर जो है वो यहां पर चौथे पायदान पर है। गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो वो 5वें पायदान पर है। और निचले पायदान पर दोनों टीमें एलएसजी और एमआई दोनों ही 9वें और 10वें पायदान पर है। तो देखते हैं कि संचित आज का जो ये मैच है इसमें क्या रहता है दोनों ही टीमों के लिए। और फिलहाल अगली जो खबर है टेबल टेनिस से जुड़ी उसके लिए चलते हैं अपने सहयोगी संचित के पास।
1: आइए अब बात करते हैं ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि लंदन में खेली जा रही है, उसके बारे में। भारतीय पुरुष ग्रुप स्टेज में पहले स्थान पर आकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। राउंड ऑफ 32 में भारत का मैच अब ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच मंगलवार 5 मई को खेला जाएगा। भारत ग्रुप स्टेजेस में अपने तीनों मैच जीतकर पहले स्थान पर रहा। वहीं ऑस्ट्रिया की बात करें तो वो भी अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहा। भारत और ऑस्ट्रिया में जो भी मैच जीतेगा वो स्लोवाक रिपब्लिक या फिर साउथ कोरिया साथ। वहीं महिलाओं की बात करें, राउंड ऑफ 32 में भारत का मुकाबला यूएसए से होगा और ये मैच भी मंगलवार 5 मई को खेला जाएगा। भारत और यूएसए का मैच में जो भी जीतेगा वो इंग्लैंड और यूक्रेन से खेलेगा। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि यूएसए भी ग्रुप स्टेज में पहले स्थान पर रहा था, मतलब कल एक लाजवाब मैच देखने को मिल सकता है। ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो ये लंदन में 28 अप्रैल को शुरू हुई थी और 10 मई तक खेली जाएगी। ये टेबल टेनिस खेल जगत की सबसे प्रमुख टीम प्रतियोगिता है। पुरुषों की टीम स्वेथलिंग कप के लिए खेलती है, वहीं महिलाओं की टीम कॉर्बुलियन कप के लिए। इस साल की प्रतियोगिता बहुत ही खास है और ये इसलिए खास है क्योंकि आज से ठीक 100 साल पहले लंदन में ही पहली बार टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेली गई थी 1926 में।
0: तो जिस तरह से संचित ने बताया बहुत ही खास है। और अभी सिचुएशन जो है वो अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के नजरिए से देखें तो लगातार जो टेबल टेनिस में मुकाबले हो रहे हैं अभी बहुत स्ट्रगल हमारे

0: जो प्लेयर्स हैं वो कई इवेंट्स में करते नजर आते हैं संचित, क्योंकि कुछ ही गिने चुने नाम है हमारे पास टेबल टेनिस में जो भारतीय जो टीम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी जो रिजल्ट है समटाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, लेकिन हर एक खिलाड़ी, जैसा मैंने कहा कि वो जीतने के लिए ही खेलता है, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को मिलता है जब भी किसी बड़े इवेंट में खेलने के लिए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल कविता, और टेबल टेनिस की टीम की जहां तक बात करें तो भारतीय टीम अच्छा खेलते आई है और दोनों पुरुष और महिलाओं की टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई है, तो देखने वाली बात है कि वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, उनकी आगे जाने की पूरी पूरी आशंका है। और देखते हैं अभी स्ट्रांग टीम्स जो कि चाइना कोरिया जैसी टीम्स हैं उनके साथ भी उनका मैच हो सकता है, सो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं।
0: जी बिल्कुल, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर, बात करते हैं हम यहां पर एथलेटिक्स की। गैब्रॉन में आयोजित हुई विश्व एथलेटिक्स रिले 2026 जो कि 2 और 3 मई को खेली गई, उसमें अगर भारतीय जो खिलाड़ी हैं, भारतीय जो एथलेटिक्स प्लेयर रहे हैं उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सारे मुकाबले जो हैं वो रविवार को खेले गए, और मुकाबलों के बाद कई देशों की टीमों ने आगामी वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। मिश्रित 4x100 मीटर और मिश्रित 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं के फाइनल के साथ ही बुडापेस्ट में होने वाली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 के लिए पहली टीमें तय हो गई हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक जो विज्ञप्ति है उसके माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। बुडापेस्ट 2026 के लिए क्वालिफिकेशन की अगर टीमों की बात करें तो मिश्रित 4x100 मीटर रिले में कनाडा, जर्मनी, जमैका, नाइजीरिया, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीर्ष 6 में रहकर क्वालिफिकेशन हासिल किया। वहीं मिश्रित 4x400 मीटर रिले में ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जमैका, केन्या, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जगह बनाई। अगर हम बात करें रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की इसमें तो मिश्रित 4x100 मीटर में जमैका ने 39.62 सेकंड का समय निकालते हुए अपना ही विश्व रिकॉर्ड बेहतर किया, जबकि कनाडा दूसरे स्थान पर रहा। मिश्रित 400 मीटर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने काफी अच्छा समय निकाला और प्रतियोगिता में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि जमैका ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता के जरिए बीजिंग में होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 के लिए कुल 72 जो टीमें हैं उन्होंने सीधा क्वालिफिकेशन हासिल किया। शनिवार को 48 टीमों ने जगह बनाई थी जबकि बाकी 24 टीमों का फैसला रविवार को हो चुका है। मेजबान देश जो थे बोत्सवाना ने पुरुष 400x400 मीटर रिले में शानदार जीत दर्ज करते हुए सबसे यादगार पल दिया। प्रमुख जो पुरुष 400x100 मीटर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एक काफी अच्छी जीत के साथ यहां पर जो प्रदर्शन है वो किया। और अगर भारतीय हम दल की बात करें तो भारतीय दल का जो प्रदर्शन है वो तो कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि कुछ जो सिचुएशन है भारतीय प्लेयर्स के लिए वो अच्छी नहीं रही। कई बार जो हमारे प्लेयर हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और इंजरीज मुझे लगता है एक खिलाड़ी के जीवन में आते जाते रहती है संचित, और कई बार जो सिचुएशन है यानी जब हमने कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को कहते सुना है कि मैदान पर चैंपियन जिस दिन उतरते हैं उस दिन ही डिसाइड होते हैं, तो कई बार जो परिस्थितियां हैं वो साथ नहीं देती, लेकिन भारत ने यहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अभी काफी जो तैयारियां हैं उनमें अभी भारत को देखना होगा कि वो किस तरह से आने वाले जितने भी चैंपियनशिप है उसमें अपना जो प्रदर्शन है उसे बेहतर करें। यदि बात करें हम यहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो गोल्ड, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जिन जिन टीमों को मिले, मेंस 4x400 मीटर बोत्सवाना को गोल्ड मेडल, साउथ अफ्रीका को सिल्वर मेडल और ऑस्ट्रेलिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मिक्स्ड 4x100 मीटर जमैका को मिला है गोल्ड मेडल, कनाडा को मिला है सिल्वर मेडल, यूनाइटेड स्टेट को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। मेंस 4x100 मीटर यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, वहीं साउथ अफ्रीका को सिल्वर मेडल और जर्मनी को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। विमेंस 4x100 मीटर जमैका ने जीता है गोल्ड मेडल, कनाडा ने लिया है सिल्वर मेडल, स्पेन को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। विमेंस 4x400 मीटर नॉर्वे ने लिया है गोल्ड मेडल, स्पेन ने लिया है सिल्वर मेडल और कनाडा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मिक्स 4x400 मीटर यूनाइटेड स्टेट ने जीता है गोल्ड मेडल, जमैका की झोली में आया सिल्वर मेडल और ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन फिर से वापस आते हैं हम अपने भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे, जो यहां पर एक पहचान भी नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि उस यादगार पलों में भी नहीं आ पाए। बहुत सारे प्लेयर्स से यहां पर उम्मीदें थी लेकिन इंजरीज की वजह से कुछ प्लेयर्स तो पीछे ही रह गए और कुछ के लिए एक्सपोजर जो है वो मिला, लेकिन एक्सपोजर का फायदा कितना मिल सकता है आने वाले जो चैंपियनशिप है उनमें हमने बात की है एथलेटिक्स

0: 400 मीटर मैन की टीम से, क्योंकि अमोद जैकब 300 मीटर के टाइम पे जब इंजर्ड हुआ उस टाइम इंडिया की टीम बेस्ट 3 में चल रही थी और हमारे जो बेस्ट दो रनर थे ना लास्ट के लिए रखे हुए थे उनके चांसेस काफी अच्छे थे।
1: तो यहाँ पर आपको कमी क्या नजर आ रही है, जैसे आपने कहा कि ये तीसरी बार था तो एक पैटर्न तो समझ में आता ही है और खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करते हैं, तो कमी क्या लगती है आपको?
0: इनका यानी कि इनका बड़ी बड़ी मीटों में जब कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन होता था उस समय घबरा गया, ये लग रहा है इस तरह से एक्सपोजर इनको और चाहिए थे, इनको और देना चाहिए था, इनको कंपटीशन बाहर देश में और खेलने चाहिए थे, कंपटीशन तो इतना टफ था कि वर्ल्ड के टॉप जितने टीमें थी मगर इंडियन टीम भी प्रैक्टिस कर रही थी, अब हो जाता कभी कभी, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम अभी एशियन गेम्स है कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें मुझे लगता है अच्छा करें, क्या पता।
1: एक कोच के नजरिए से आपको क्या लगता है किस तरह से इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी?
0: अभी जैसे एक्चुअली ऑफ सीजन था इन खिलाड़ियों का ना, अभी यानी सीजन अगर स्टार्ट हुआ है तो फील्ड में भी नहीं देखनी है, अब जैसे मेन इंडिया का टारगेट मेरे को जहां तक लगता है एशियन गेम्स का है, बस एक 4x4 की जो मैन की टीम थी उसका चांसेस था, बाकी इनका टारगेट एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स में जो होप है कि इंडिया 4-5 मेडल मिलेगी रिले में ही, क्योंकि एशियन लेवल में इंडिया का टीम अच्छा है, क्योंकि उसमें चाइना जापान है उसके बाद इंडिया ही है, अब देखते हैं होप करते हैं कि एशियन गेम्स हम अच्छा करें और ये टीम जो अभी एक्सपोजर मिल गया एक और चैंपियनशिप खेल के एक्सपोजर का फायदा वो एशियन गेम्स में उठा सकते हैं।
1: तो मतलब इस तरह के बड़े इवेंट्स के लिए अभी टीम इंडिया को तैयारी बहुत बाकी है आपका कहने का मतलब है?
0: हाँ अभी काफी अगर अच्छे लेवल पे करना तो काफी तैयारी बाकी है, मगर और जैसे टीम ऑस्ट्रेलिया टीम हो गई ये हो गई क्या भावना वहां पे हो रहा था बस वो दो सुनावा वो उनकी टीम भी नई टीमें थी अब अच्छा कर रही है, इंडिया भी अभी एक बार एक्सपोजर मिल गया आगे नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम ये जो क्वालिफाइंग वर्ल्ड रिले होती है उसमें मुझे लगता है अच्छा करेंगे, तो एक्सपोजर मिलना जरूरी था कि इंडिया को मिल रहा है और इंडियन हमारी फेडरेशन ने काफी इनको खिलाड़ियों में अभी 5 टीमें भेजी उन्होंने कि उम्मीद थी कि अच्छा करेंगे, कोई नहीं एक्सपोजर तो दे ही दिया उनको।

संचित, पांच टीमें जो है वो यहाँ पर रिले की गई थी, लेकिन पांचों ही टीमों ने कुछ खास जो प्रदर्शन है जैसा मैंने कहा नहीं किया, और जैसा दिनेश रावत जी ने कहा कि एक्सपोजर ही तो मिला है और एक्सपोजर मिलना जरूरी है खिलाड़ियों को, क्योंकि जब तक इस तरह के बड़े इवेंट में नहीं खेलेंगे हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हम हैं कितने पानी में। तो इस वजह से एक्सपोजर के लिए भी और प्रदर्शन को आंकने के लिए भी जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। अब जिस तरह से हमारी पांचों ही टीमें जो कि कुछ खास तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी एक जो अपना ही खुद का जो एक रिकॉर्ड था वो टूटा है यहाँ पर, नेशनल रिकॉर्ड, तो ये भी उनके लिए एक अच्छी चीज है कि एटलीस्ट एक जो मन को संतुष्टि देने वाली जो खबर है ना वो तो यहाँ से आई है कि अपना एक नेशनल रिकॉर्ड जो है हमारी टीम ने तोड़ा। लेकिन उसके बावजूद नेशनल रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर ये सोचना होगा कि हम अपने समय को और बेहतर कैसे करें, अपना जो एग्जीक्यूशन है टीम वाइज वो कैसे बेहतर करें खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि रिले इवेंट है तो साथ ही खिलाड़ियों के साथ भी तालमेल बिठाना और उनके साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और समटाइम मुझे लगता है संचित की रिले जैसी टीम में खिलाड़ी कई बार एक जगह पर भी आकर कई बार प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको ये सोचना है, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी है, कि प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब प्रैक्टिस की बात को छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं अपनी अगली खबर पे, और अगली खबर जो है वो जुड़ी है हमारी बॉक्सिंग से। तो चलिए बॉक्सिंग रिंग की ओर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि अंडर 17 और अंडर 15 बालक और बालिकाओं के जो मुकाबले हैं वो खेले जा रहे हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और जिस तरीके से ये मुकाबले हो रहे हैं उनमें अगर हम बात करें कल खेले गए मुकाबलों की, तो भारत की अंडर 17 महिला मुक्केबाजों ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन पांच प्रभावशाली जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। राखी जो कि 48 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी, शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही दौर में अपनी श्रीलंकाई प्रतिद्वंदी को RSC के जरिए हरा दिया। अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए ओवी 50 किलोग्राम ने ईरान पर सर्वसम्मति से 5-0 की जीत हासिल की, जबकि ममता जो कि 52 किलोग्राम में खेल रही थी अपनी थाई प्रतिद्वंदी को एक और शानदार 5-0 की जीत के साथ मात दे दी। लक्ष्मी की यदि बात करें तो 54 किलोग्राम में कोरिया के खिलाफ खेली और 5-0 के शानदार फैसले के साथ भारत की जीत की लय को बरकरार रखा और पूरे मुकाबले में अपना पूर्ण नियंत्रण प्रदर्शित किया। नव्या 57 किलोग्राम में खेल रही थी, वियतनाम के खिलाफ पहले ही दौर में RSC के साथ

0: जीत हासिल करके भारतीय दल के लिए शानदार दिन का समापन किया। वहीं लड़कों के वर्ग में अगर बात करें तो नीला नरेंद्र कुमार जो कि 46 किलोग्राम में खेल रहे थे, उन्होंने दमदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब के खालिद अल होसाह को पहले दौर में ही RSC से हरा दिया। वहीं दक्ष पवार 48 किलोग्राम को ताजिकिस्तान के फिरूजन ने कड़ी चुनौती दी और उसके बाद वो 0-5 से ये जो मुकाबला है वो हार गए। आज के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं अंडर 15, यदि बालिकाओं की बात करें और बालकों की बात करें तो काफी सारे जो मुकाबले हैं वो आज के दिन में हुए हैं, जिसमें 46, 49, 55 किलोग्राम जो मुकाबले हैं बालिकाओं के वो हुए हैं, जिसमें 46 में हंसिका अत्री जो है वो जीती है अपना मुकाबला। 49 किलोग्राम में खेल रही थी खुशी, जिन्हें RSC के माध्यम से जीत मिल गई। 55 किलोग्राम में खेली थी नित्या, जिनको हार का सामना करना पड़ा है कजाकिस्तान से। वहीं बॉयज की अगर बात करें तो समीर बोरा जो है वो जीते हैं 5-0 से। और यदि अब तक की मेडल की बात करें तो मुझे लगता है संचित, यहां पर जैसा हमने एक्सपर्ट के साथ बात की है, यहां पर हमारे 14 मेडल्स तो कंफर्म हो ही चुके हैं और अभी काफी जो खेल है वो बाकी है, क्योंकि आज के मुकाबले भी खेले जाने हैं जो कि भारतीय समय के अनुसार 4 बजे से शुरू हो चुके हैं, तो अभी का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। लेकिन हम ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने जो एक्सपर्ट है उनकी बातों को ना सुनवाएं, तो सीधे लिए चलते हैं आपको हम वेन्यू पर ही, जहां पर हमने बात की है कोच नितिन, अंडर 15 बालिकाओं के कोच हैं ये, उनसे हमने जाना आज की परफॉर्मेंस, आज की जो ताजा स्थिति है उसको लेकर क्या कहना है, लीजिए सुनिए।
1: सबसे पहले तो नमस्कार। आज जो हमारा अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप ये मुकाबले चल रहे हैं, इसमें आज हमारी 46 kg वुमेन्स में गर्ल्स में हंसिका अत्री, 49 kg खुशी राणा और 55 kg में नित्या पांडे, इनकी बाउट हुई थी। और इसके अलावा बॉयज में हमारा समीर बोरा, उसकी बाउट हुई थी। तो जो कि मुकाबले तो काफी अच्छे रहे और अभी इंटरेस्टेड मुकाबले थे। इसके साथ साथ दो गर्ल्स हमारी वॉन भी है, और अंशिका अत्री जिसका मुकाबला था उसका मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ था और 5-0 में वो आउटस्टैंडिंग जीती है। और खुशी राणा जो कि वियतनाम के साथ उसका मुकाबला था उसमें उसने RSC फर्स्ट राउंड कर पाया, वो जीती हुई है। उसने अपने अपने अपोनेंट को पहले राउंड में ही RSC कर दिया था, रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट कर दिया था। नित्या पांडे जो कि हमारी 55 kg में बॉक्सर है, वो लॉस हुई है हमारे कजाकिस्तान से, तो 0-5 से उसे लॉस का सामना करना पड़ा है। सेम इसमें जो एक हमारे समीर बोरा हमारे बॉक्सर हैं बॉयज वेट कैटेगरी में, तो उनका आज बाउट थी जो वो वॉन हुए हैं 5-0 से, वो वॉन हुए बाउट में और बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा उनका, बहुत अच्छा उन्होंने क्लीन स्वीप जीती है उसमें। हाँ, इवनिंग के अंडर 17 के जो मुकाबले हैं वो 4 बजे से स्टार्ट हैं। उनके कोचेस जो उनके अंडर 17 के कोचेस हैं उनके कोचेस चेंजेस हैं। अंडर 17 के मुकाबले हैं जिसमें आज हमारी अच्छी खासी बाउट है उसमें, तो वो भी 4 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। मेडल कंफर्मेशन अभी गर्ल्स में हमारी आज के बाउट के हिसाब से देखा जाए तो 3 मेडल तो हमारे कंफर्म है अभी, जो हम क्वार्टर फाइनल में जीत के आए हैं। जो गर्ल्स में अभी 14 मेडल अभी हमारे सेमी फाइनल में चले गए हैं बॉक्सर्स, टॉप 15 में से मतलब जो 15 वेट कैटेगरी है उससे 14 हमारे मेडल कंफर्म है। और बॉयज के जो मुकाबले हैं उसमें 1 मेडल हमारा कंफर्म हुआ है समीर बुरा का, और बाकी जो हमारी 5 बाउट है वो कल है, तो उसके बाद ही हम अभी का प्लान कर सकते हैं कि रणनीति लगाएंगे कल की तरह, कि कल हम किस तरह अपने बॉक्सर को खिलाएं, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे मेडल कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम हमारे मेडल आने के चांसेस हैं।
0: ये अंडर 15 काफी यंग प्लेयर हैं, एज ए कोच क्योंकि आप वहां पर हैं, आप कितने सेटिस्फाई हैं इनकी परफॉर्मेंस से?
1: एक्चुअली में ये बॉक्सिंग का जो स्टार्टिंग एज होती है उसका सबसे एक बॉक्सर का सबसे पहला कॉम्पिटिशन होता है अंडर 15। कई बॉक्सर तो उससे फर्स्ट टाइम मतलब बॉक्सिंग का पहला ही कॉम्पिटिशन है जो इंटरनेशनल लेवल में कॉम्पिटिशन होता है, तो कई बॉक्सर जो बिल्कुल बिगनर होते हैं नेशनल चैंपियनशिप के थ्रू आ रहे हैं, नेशनल ग्रास रूट प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास आते हैं। जो कैंप फेडरेशन जो हमारी BFI वो कैंप जब कंडक्ट करती है तो बहुत कुछ उनको भी सीखने को अच्छा मिलता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर आने का, बॉक्सर को एक जगह मिलती है जहाँ से अपनी वो काबिलियत अपनी कैलिबर अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है, तो बहुत अच्छा है।
0: तो प्रतिभा को दिखाने के लिए इस तरह के जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं हमारे भारतीय खिलाड़ियों को, बालक बालिकाओं को, वो सच में ही एक बिग मोटिवेशन होती है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा संचित, की जो अंडर 15 है ना, वो पहली स्टेज है इंटरनेशनल इवेंट को खेलने की। और यदि पहले ही इवेंट में, पहला ही इंटरनेशनल इवेंट अगर ये बच्चे खेल रहे हैं और उसमें अगर इनके मेडल

0: जहां 15 लोग गए हैं वहां 14 मेडल कंफर्म हो जाते हैं। तो आप लेवल ऑफ कंपटीशन देख लो इंडिया के प्लेयर्स का, क्योंकि बॉक्सिंग में तो इंडिया का नाम एक वक्त रहा है, और मुझे लगता है वो जो दौर था ना इंडियन बॉक्सर्स का, वो वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
1: जी बिल्कुल कविता, बॉक्सिंग में इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अंडर 15 और अंडर 17 के बच्चे, बालक और बालिकाएं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
0: जी तो अब चलते हैं हम आर्चरी की ओर, तीरंदाजी में भी क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट, चलिए सुनते हैं हमारे सहयोगी संचित जैन से।
1: आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 शंघाई चाइना में 5 मई से 10 मई तक खेला जाएगा। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि स्टेज 1 पुएब्ला मेक्सिको में खेला गया था और भारतीय आर्चर्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था। 10 में से भारत को सिर्फ एक गोल्ड मिला था। हम आशा करते हैं कि स्टेज 2 में भारतीय आर्चर्स बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर आर्चर्स की बात करें तो स्टेज 2 में कंपाउंड मेन में अभिषेक वर्मा, ओजस दियोतले, कुशल दलाल और साहिल जाधव खेलेंगे। वहीं रिकर्व मेन में अतानु दास, धीरज बोम्मे डिवारा, तरुणदीप राय और यशदीप भोगे खेलेंगे। वहीं कंपाउंड वेमेन में ज्योति सुरेखा वेन्नम, माधुरी धमगांवकर, प्रगति और अदिति स्वामी खेलेंगे। वहीं रिकर्व वेमेन में अंकिता बकात, सिमरनजीत कौर, कुमकुम महोड़ और दीपिका कुमारी खेलेंगे। मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि आर्चरी में इंडिविजुअल एलिमिनेशन मैचेस भी रहेंगे और टीम मैचेस भी रहेंगे। खिलाड़ियों के इंडिविजुअल मैचेस में रैंकिंग के हिसाब से टीम्स बनाई जाएंगी, और ये सारे मैचेस दोनों कंपाउंड और रिकर्व कैटेगरीज में खेले जाएंगे।
0: तो आर्चरी के बाद अब बात करते हैं इंडिया ओपन कंबाइंड इवेंट पोल वॉल्ट कंपटीशन, जो कि भुवनेश्वर में 2 और 3 मई को आयोजित किया गया। इसमें अगर बात करें भारतीय खिलाड़ियों की, तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि कर रहे थे कुलदीप कुमार, जो कि पहले भारतीय इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट प्रतियोगिता के पहले दिन इन्होंने 5.41 मीटर की राष्ट्रीय पुरुष पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। 21 वर्षीय कुलदीप ने अपने पहले ही प्रयास में 5.41 मीटर की ऊंचाई पार कर ली, जिससे उन्होंने देव कुमार मीना द्वारा बनाए गए 5.40 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं अगर गर्ल्स की यानी लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो बर्निका एलगोवन का शानदार प्रदर्शन रहा है यहां पर। तमिलनाडु की बर्निका ने 4.23 मीटर की छलांग लगाकर महिला पोल वॉल्ट में अपना ही पुराना रिकॉर्ड जो है उसे और बेहतर कर दिया है। तो ये आयोजन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित है, जिसमें इंडोर एथलेटिक्स को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो इस तरीके से यहां पर भारतीय जो दोनों ही पुरुष और महिला वर्ग है, उन्होंने अपना अपना परफॉर्मेंस बेटर किया है। और अब अगली खबर के लिए चलती हूं आपको संचित के पास।
1: इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन अल्माटी कजाकिस्तान में 2 मई से 11 मई तक खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में आज स्कीट मैन 75 और स्कीट वेमेन 75 कैटेगरी में मैच खेले जा रहे हैं। 5 में से 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। भारतीय पुरुष की जहां तक बात करें तो 3 राउंड के बाद आनंदजीत सिंह नरूका 24वें स्थान पे, बफतेग सिंह गिल 28वें स्थान पे, अहमद खान 31वें स्थान पे, अभय सिंह सेखों 48वें स्थान पे और गुजोत खंगुला 82वें स्थान पे है। वही स्कीट वेमेन की बात करें, 3 राउंड के बाद गनीमत सेखों 9वें स्थान पे, रेजा ढिल्लो 17वें स्थान पे, परिनाज ढालीवाल 27वें स्थान पे, वंशिका तिवारी 35वें स्थान पे और रश्मि राठौर 47वें स्थान पे आई हैं। अभी 2 राउंड और बचे हैं। हम आशा करते हैं कि भारतीय शूटर्स अपना प्रदर्शन बेहतर करें और ऊपर से ऊपर पदक लेके आए। अब इसी के साथ चलते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां पे थॉमस एंड ऊबर कप के फाइनल कल खेले गए। ऊबर कप में कोरिया ने चाइना को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया, और वही थॉमस कप में चाइना ने फ्रांस को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, भारत शनिवार को फ्रांस के हाथों हार गया था और थॉमस कप में ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया।
0: तो यहाँ पर लगातार जो खेलों का सिलसिला है वो हम आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर आप बात करें अगली खेल गतिविधि पर, तो यहाँ पर AFC अंडर 17 महिला एशियन कप 2026 में भारत का जो सफर है अब और कड़े दौर में पहुंच गया है। यंग टाइग्रेस कल यानी मंगलवार 5 मई 2026

0: को ग्रुप बी के अपने दूसरे मुकाबले में जापान से भिड़ेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हारने के बाद भारत ऐसी स्थिति में है जहां हर गोल मायने रखता है। गोल अंतर बेहद अहम है और पिछले मैच डे पर कई बड़ी जीत देखने को मिली, जिसमें जापान की लेबनान पर 13-0 की जीत भी शामिल है। ग्रुप सी में डीपीआर कोरिया ने चीनी ताइपे को 10-0 से हराया है। मंगलवार को ही ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना लेबनान से होने वाला है। और चलते चलते एक नजर यहां पर डीपीएल पे भी, क्योंकि दिल्ली प्रीमियर लीग जो 2025-26 खेली जा रही है उसमें आज जो मुकाबला होगा वो है दिल्ली एफसी वर्सेस गरवाल डायमंड। और अगर अंक तालिका की बात करें तो इस वक्त सबसे ऊपर पायदान पर जो टीम है वो है रॉयल रेंजर्स एफसी, और गरवाल डायमंड जो है वो दूसरे पायदान पर बनी हुई है। दिल्ली एफसी तीसरे पायदान पर, फ्रेंड्स यूनाइटेड चौथे पायदान पर, और नॉर्दर्न यूनाइटेड जो है वो है पांचवें पायदान पर। तो संचित, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त आ चुका है। अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ और सहयोगी
1: संचित जैन
0: के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजेपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईयूडीएफ रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
4: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
3: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वितरी कड़गम टीवी

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। शाहिद भाई, देखिए हमारे जो भाई हैं, हम उनको जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी कराएंगे और
1: जी
0: कुछ ऐसी
1: वंदना बहन।
0: बातों का भी जिक्र करेंगे, जैसे कि आज हमारा खनिक दिवस है, इस बारे में
1: हाँ
0: भी हम उनको जानकारी देंगे। तो खनिक दिवस की अगर बात करें तो कहते हैं ना कि हमारा जो देश है वो खनिज पदार्थों को बहुत, मतलब
1: बिल्कुल,
0: भरा
1: खनिज
0: पड़ा है,
1: संपदाओं से
0: भरा पड़ा है।
1: बिल्कुल प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलती है। वो
0: बिल्कुल,
1: मतलब
0: जिस
1: अभ्रक से लेके, कोयला से लेके, सोना चांदी, लोहा, सारे जितने भी आप कह लीजिए कि खनिज हो सकते हैं ना, करीब करीब सब मिलते हैं दुनिया भर में।
0: बिल्कुल, और जिसे प्राप्त करने के लिए खदानों में हजारों लाखों मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं।
1: हाँ,
0: जब
1: आप
0: जाकर
1: बात
0: ये
1: करें
0: सारी
1: कोयले
0: चीजें
1: की।
0: जब ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, तो इन्हीं मजदूरों की जो मेहनत को दुनिया के सामने लाने और उनको सराहने के लिए ये 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया
1: मनाया
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। जी
0: बिल्कुल
1: जी जी दरअसल बहन, ये जो है ना, अंग्रेज़ों के दौर में, यानी जब मुग़ल ख़त्म हो रहे थे, ये 17वीं 18वीं सदी का टाइम था। उस टाइम पे जो है कि बड़ी तेज़ी से खनन शुरू किया गया। पहले
0: जी
1: तो ब्रिटिश दौर में जो है कि भारत में की कृषि मसाले इन चीज़ों पे इनका दोहन किया गया। फिर अंग्रेज़ों की नज़र पड़ी हमारे जो है कि कोयले पे, क्योंकि उस
0: बिल्कुल,
1: वक्त
0: उसको
1: पश्चिम में जो है ना औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उद्योग लगाए जा रहे थे, और उसके लिए उनको चलाने के लिए जो है ना, तब पेट्रोल डीजल नहीं था,
0: जी
1: तो कोयला ही सबसे बड़ी जो है कि बड़ा साधन, सबसे बड़ा ईंधन था। तो यहाँ से जो है कि इसको निकालने का काम शुरू किया गया, और बड़े पैमाने पे उसमें जो है कि मजदूर लगाए गए। फिर उसी दरमियान जो है कि ये खनिक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई।
0: बिल्कुल, कोयला बनाना एक, कहते हैं कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं, बल्कि इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। भारत में जो कोयला खनन है उसकी शुरुआत 1774 में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप बता रहे हैं उस टाइम पे, और कहते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति चली गई थी तो उसमें कोयले का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। तो इसको आगे हमारे जो मजदूर हैं उनका मजदूर के शोषण और नरसंहार की भी कई घटनाएं सामने आई हैं, कि भाई वो दब जाते थे, उसमें
1: हाँ,
0: गिर
1: तब
0: जाते थे,
1: तब
0: सुरंग होती थी
1: दरअसल
0: वो।
1: मजदूरों के लेके कोई कानून नहीं था,
0: जी
1: ऐसी संगठन नहीं थे, तो उनसे

0: जो है उनका शोषण होता था, ठीक
1: जी
0: है। तो पहली बार जो है कि 1760 के आसपास ना इसकी शुरुआत हुई
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल
0: उनका उनका भी संरक्षण हो और उनको इस उद्योग का, इस इकाई का अभिन्न अंग माना गया।
1: बिल्कुल, कोयला तो महत्वपूर्ण था ही, और देखिए आज भी है हमारे देश में कोयले की काफी जरूरत है। और ऐसे ही हम एक और जानकारी अपने भाइयों को देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, जो कि कोयला भी हमारा ऊर्जा का स्रोत है,
0: जी हाँ
1: और
0: हाँ
1: आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा बचत और स्वच्छ ईंधन, तो ऐसी जानकारी हम दिलवा रहे हैं चंद्र कला जी से, और इनसे बातचीत कर रही हैं नीलम मदान। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना हम सबकी आंखों में है और मन में चाहत है उसे पूरा करने की। मगर विकासशील से विकसित भारत बनने का जो सफर है, क्या दूसरों के सहारे पूरा होगा? नहीं ना, इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर हों हर क्षेत्र में। और आज के समय का जो सबसे पेचीदा प्रश्न है, या मैं कहूं कि सबसे जरूरी प्रश्न है, वो है ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा की सुरक्षा और ऊर्जा की बचत। कैसे हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती चंद्रकला बवारी। आप संचार मंत्रालय से हैं। चंद्रकला जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद नीलम जी। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ऊर्जा के क्षेत्र में समस्या क्या है। समस्या ये है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता देश है। और ऊर्जा की समस्या ये है कि ऊर्जा जो है, अभी तक अधिकांश देश जो ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए वो जीवाश्म ईंधन, जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, उन प्राकृतिक ईंधनों पर निर्भर हैं। अब ये जीवाश्म ईंधन होते क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो मृत पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं, जो लंबे सालों तक वो पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं और उच्च तापमान और गैस के दबाव के कारण ये अवशेष कोयला बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं, प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं, तो ये है ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन। लेकिन इन संसाधनों की समस्या क्या है कि ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है।
2: मगर हम
3: और
2: तो बात कर रहे हैं कि नवीकरणीय,
3: बिल्कुल
2: क्या है?
3: और अब ये समय है कि यदि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो हमें नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को अपनाना होगा।
2: बिल्कुल सही कहा चंद्रकला जी आपने। देखिए, जो पहले गांव में शहरों में खाना बनता था, किस पे? चूल्हों पे बनता था। किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का प्रयोग करते थे, कोयले का प्रयोग करते थे। उससे पर्यावरण पे तो जो असर आ रहा है अभी भी हम सब जान रहे हैं, है ना? और साथ में जो उसके लिए लकड़ी की जरूरत होती थी तो वन कट रहे हैं, मगर उसके अलावा जो परेशानी थी वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन जैसे जैसे हम स्वच्छ ईंधन की ओर आ रहे हैं तो ये समस्याएं कम हो रही हैं। जैसे एलपीजी का जो बायोगैस है और सोलर ऊर्जा है, सरकार उसके लिए बहुत कोशिश कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है और बड़ी सारी योजनाएं चला रही है।
3: नीलम जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कि जो लकड़ी से वो जो भोजन चूल्हे में बनाते थे पारंपरिक तरीके से, लेकिन मैं इस चर्चा को एक सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम गांवों में बिजली की बात करते हैं, क्योंकि बिजली एक अच्छे जीवन के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। तो यदि बिजली की स्थिति की बात करें तो हमारी सरकार के प्रयासों से लगभग 2018 में ही हमने 100% ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया था।
2: बिल्कुल।
3: पर जब हम बिजली की उपलब्धता की बात करते हैं तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि गांवों में बिजली उपलब्ध तो है पर कितने घंटे उपलब्ध।
2: बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बिजली की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसान सिंचाई कर रहा है और फिर पंप नहीं चल रहा है तो कितनी सारी मुश्किलें हैं। और इस तरह से अगर ऊर्जा की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता निरंतर रहे तो बहुत खुशहाली, समृद्धि हम सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे एक किसान जो योजना है किसानों के लिए वो है पीएम कुसुम योजना। मतलब क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसे कहते हैं पीएम कुसुम योजना। और इसका मुख्य मकसद है किसानों के लिए सिंचाई के लिए डीजल और बिजली की निर्भरता से मुक्त हो जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं। वे तीन चीजें हैं। पहली है कि किसान अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगा ले और सरकार को भी बिजली बेच सकते हैं।

0: और दूसरी बात कि इसमें आपको भारी सब्सिडी मिलेगी, 60 से लगभग 90% तक की सब्सिडी पर आप सोलर पंप लगवा सकते हैं। और तीसरी है, जो पंप पहले से ही चल रहे हैं ना, उसको अगर आप सौर ऊर्जा पर हम शिफ्ट भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल नीलम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो पीएम कुसुम योजना है, सरकार ने इसकी एक घटक बी योजना भी शुरू की है, जिसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप योजना। ये योजना विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहां पर बिजली का ग्रिड अभी तक नहीं पहुंचा है, या जहां किसान सिंचाई के लिए महंगे जो डीजल पंप है उनका उपयोग करते हैं। तो इस योजना के तहत खेतों में सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन का मतलब होता है जो बिना बिजली के कनेक्शन वाले सोलर पंप हैं, उनको लगाने के लिए लगभग 60-90% तक की सब्सिडी दी जाती है। तो इससे न केवल किसानों का डीजल और बिजली का मासिक खर्च कम होगा, बल्कि इसके माध्यम से गाँवों में स्वच्छ ईंधन जैसे LPG, बायोगैस और सोलर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: हाँ बिल्कुल, कभी कभी क्या होता था चंद्रकला जी, जैसे दिन के समय सिंचाई कर ही नहीं सकते, बिजली नहीं आ रही है, तो ये समस्या जरूर हल होगी। और अब प्रश्न उठता है भाई, कैसे, कौन आवेदन करे? कोई अकेला किसान है, व्यक्तिगत किसान है, किसानों के समूह है, वो सब इन योजना से लाभ उठा सकती हैं।
1: कुसुम घटक भी योजना की जो बात मैं कर रही थी, ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, बल्कि ये शहरी और अर्ध शहरी जो क्षेत्र हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस तरीके से उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि अपनी उन डेयरी फार्म को या नर्सरी का जो संचालन करते हैं उसमें जो उनकी परिचालन लागत होती है उसको कम किया जा सकता है। पीएम कुसुम योजना के बाद में एक और योजना की बात करूंगी, वो है पीएम सूर्य घर योजना, यानी मुफ्त बिजली योजना। ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना देश के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लागू की गई है और इसका मुख्य मकसद है बिजली के भारी बिलों से राहत। तो इस योजना के अंतर्गत छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है और सरकार इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सिस्टम 78,000 तक की सीधी सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो कि सीधे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। तो जहां पर शहरों में ये योजना ऊंची इमारतों और घरों के लिए वरदान है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये कृषि के कार्यों के अलावा घरों को रोशन करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने में बड़ी मददगार साबित हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित किया है। तो इन गांवों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है और इसके लिए प्रति गांव 1 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी जा रही
0: है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, जो सौर पार्क योजना भी है सरकार की, जिसमें मतलब वो भी हरित ऊर्जा और विकास का आधार साबित हो रही है। जो ये योजना है वो भी भारत सरकार के जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसकी ये योजना है और इसे देश में जो बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो इसलिए इसे लागू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन, बिजली, निकासी की सुविधा और पानी जैसी जो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं हैं वो एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए योजना क्यों लाभकारी है, देखिए ये जो पार्क है अक्सर दूर दराज की जो बंजर है या कम उपजाऊ जमीन है उन पर बनाए जाते हैं, जिससे जो जमीन के मालिक हैं वो किसान होंगे ज्यादातर, उनको किराए के रूप में एक निश्चित आय मिल जाती है कि उनकी जमीन पर ये पार्क बन गया है। और जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं और ये शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को इन पार्कों से जो बिजली उत्पन्न होती है वो सस्ती और स्वच्छ बिजली उनको मिलती है, उसका लाभ मिलता है और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा नीलम जी आपने, ये जो सौर पार्क योजना है ना, इसका लाभ वो राज्य सरकार सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको देती है। तो जो संयुक्त उद्यम है या जो स्वतंत्र रूप से भी अपना जमीन है वो इन पार्क को स्थापित कर सकते हैं। तो प्रत्येक पार्क के विकास के लिए जो है 20 लाख रुपए प्रति मेगावाट या कुल लागत का 30% की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यदि आप एक सोलर डेवलपर हैं या अपनी बड़ी जमीन के पार्क के लिए देना चाहते हैं तो आप MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की आधिकारिक वेबसाइट या जो संबंधित राज्य की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है उसके पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के मुख्यालय में

0: ये करणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसकी पहल है। ये कार्यक्रम है अपशिष्ट से ऊर्जा, जिसका उद्देश्य है पशुओं का गोबर है, कृषि अवशेष है, शहरों का कचरा है, उसका उपयोग करके बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान है, जहां छोटे बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त खाना पकाने का ईंधन मिल जाता है और खेती के लिए उत्तम खाद भी मिल जाती है। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो कार्यक्रम जो नगर निगम है, उद्योगों का कचरा है, उसके प्रबंधन में जो नगर निगम है उसमें मदद करते हैं, जिससे औद्योगिक कचरे और सीवेज से बिजली या बायो सीएनजी तैयार की जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल नीलम जी, तो सरकार की एक योजना है गोबरधन योजना। गोबरधन योजना ये जल शक्ति मंत्रालय की स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू की गई योजना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गांवों में पशुओं के गोबर और कृषि अपशिष्ट तो कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करके उसे बायोगैस और जैविक खाद में बदलना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई तो बढ़ेगी, खाना पकाने के लिए सस्ती और स्वच्छ गैस भी मिलेगी और खेतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी मिलेगी। ये बिल्कुल उसी तरीके की है जो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया था और इससे जो है खेतों में जो यूरिया हम अभी तक इस्तेमाल करते आए थे उस पर निर्भरता कम होगी। तो इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान उठा सकते हैं, सहकारी समितियां उठा सकती हैं, ग्राम पंचायतें उठा सकती हैं और इसके आवेदन करने के लिए सरकार का जो पोर्टल है govardhan.nic.in पर जा सकते हैं या फिर अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क किया जा सकते हैं। बिल्कुल,
0: तो इस प्रकार की जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, धुआं मुक्त रसोई और बेहतर स्वास्थ्य, एक जो सोच थी वो साकार हो रही है और धुआं मुक्त रसोई है, यानी कि जहां पर सिलेंडर पहुंच नहीं सकते ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाके हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर ये जो चूल्हे हैं वो बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं, धुआं भी कम छोड़ते हैं, महिलाओं की सेहत में भी सुधार हो रहा है। तो ये जो स्वच्छ ईंधन का लाभ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार का यही प्रयास है। ऐसे ही राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम चल रहा है और एक जो सतत नई योजना अभी जो चली है वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। उसका भी मतलब है कचरे से वाहन ईंधन बने, नई कमाई हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। इन सब से जो चंद्रकला जी ये सरकार योजनाएं चला रही है, इनसे आपको क्या लगता है? आत्मनिर्भरता तो है ही, एक मजबूत नींव की तरह काम कर रही है। तो जैसे कि जहां पहले सिंचाई के लिए बिजली आने का इंतजार करना पड़ता था, महंगा डीजल खरीदना पड़ता था, अगर किसान ने अपनी बंजर जमीन पर सोलर पंप लगा लिया है, मुफ्त बिजली उसे मिल रही है, बची हुई बिजली सरकार को बेच रहा है तो उसे पेंशन मिल रही है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल नीलम जी, ये पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर की योजनाएं, बिल्कुल ये वाला लाभ तो किसानों को और हमारे ग्रामीण भारतीयों को पहुंचा ही रही है इसमें।
0: जी, और पर्यावरण और स्वास्थ्य की सेवा भी हो रही है और आत्मनिर्भरता का रास्ता है वो प्रशस्त होता जा रहा है। सरकार ने बड़े सुविचारित कार्यक्रम बनाए हैं, मगर जरूरी है कि हम सब भी उसमें आगे बढ़ें, उन्हें मन से अपनाएं और जितना भी हो सका, आपको बताया कि आप कहां आवेदन करें, आप जानकारी ले सकते हैं, आप अपने ग्राम पंचायत से मदद ले सकते हैं, पास में जो आपका क्षय ऊर्जा विभाग है, केंद्र है, वहां से आप मदद ले सकते हैं। जरूरत है आगे बढ़ने की।
1: बिल्कुल नीलम जी, एक चीज और जो मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहती हूँ वो है ऊर्जा की बचत। आपने ऊर्जा के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय योजनाएं, उनकी बात की, लेकिन अगर हम बजट की बात करें, बजट के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एक बार एक छोटा सा एक रिमाइंडर के तौर पर है ना, हम बता दें कि अगर रसोई गैस बचानी है तो खाना पकाते समय प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, बर्तनों को ढक करके खाना बनाएं, दाल चावल और जो दूसरे अन्य अनाज हैं उनको भिगा करके बनाएं और उबाल आने पर गैस की आंच को धीमा कर दें, अगर छोटा बर्तन है तो छोटे बर्नर में खाना बनाएं, बड़े बर्तन का इस्तेमाल ना करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, सभी जानते हैं, लेकिन एक बार अगर हम उसको याद दिलाते रहे तो वो फिर ध्यान में आ जाता है कि नहीं, हमें बचाना है। तो इस तरीके से हम 30-50% तक की गैस की बचत कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम वाहन चलाते हैं, अगर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं तो 30 सेकंड से अधिक तक अगर रुकना हो तो अपना इंजन बंद कर दें, है ना, टायरों में सही हवा भरें, कार पूलिंग करें, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, तो इससे ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा।
0: यानी कि छोटी छोटी चीजों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं, चंद्रकला जी का यही कहना है। और चंद्रकला जी, धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए।

0: आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा की बचत और स्वच्छ ईंधन।
1: जी
0: इस विषय
1: बिल्कुल।
0: पर चंद्रकला से नीलम मदान की बातचीत आप सुन रहे थे। बहन, ऊर्जा बचत और स्वच्छता सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक मिशन चला था स्वच्छ भारत, कि देश के चप्पे चप्पे को स्वच्छ और साफ रखा जाए।
1: जी हाँ, इसके बारे में अभी हम अपने भाइयों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले करवाते हैं मनोरंजन जयवीर भाटी की आवाज में ये रागनी।

आता जाल दिखाई देन लग्या। तिरले नाम तिरले है भूचाल दिखाई देन लग्या। ना बचने की जान युद्ध में हाल दिखाई देन लग्या। वो बूढ़ा भी समय रणभूमि में

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जयवीर भाटी की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था महाभारत का। और देखिए अभी अपने भाइयों को सूचना देते हैं कल का जो हमारा फोन इन कार्यक्रम है उसके बारे में, कि कल हमारा जो फोन इन कार्यक्रम है वो 6:30 से 7 बजे तक और 7:05 से 7:30 बजे तक लगातार चलेगा। तो आप हमारे स्टूडियो में फोन करके सीधे हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। और विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 23 42 10 82, 23 42 10 83। तो ये तो हमारे कल के फोन इन कार्यक्रम की सूचना थी। और देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारी सरकार ने लोगों को जागरूक किया है कि आप अपने घर के आसपास किस तरह से अपने गांव मोहल्ले सड़कों
1: जी,
0: और
1: हर साल
0: शहरों
1: जी
0: को किस तरह साफ करें, किस तरह गंदगी ना फैलाएं, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा किस तरह अलग अलग करें, इन सब बातों का ज्ञान हमारी सरकार को, तो आप भी थोड़ा सा योगदान दें तो सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करें ताकि ज्यादा परेशानी उनको ना करनी पड़े।
1: जी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सूखा और गीला कचरा जो है वो अलग अलग हो। और देखिए, जो मिशन है ना, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था, उसका मकसद ही है कि हर सार्वजनिक स्थल, वो छोटी जगह हो बड़ी जगह हो ना, अपने आसपास हर जगह, यानी पूरे भारत को स्वच्छ चमकता दमकता बनाने का ये संकल्प बिठा के रखें और उसी के अनुरूप जो है ना प्रतिदिन कार्य करें। और
0: बिल्कुल, और
1: उसका सही तरीका यही है कि आप अपने घर से शुरुआत करें।
0: बिल्कुल देखिए गांव और शहर, आपका घर, ये सब चीजें अगर साफ सुथरी रहेंगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा और हमारा देश भी बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी
0: और इसी के साथ हम अपने भाइयों से लेते हैं विदा। ग्राम संसार सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवी के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। AIADMK और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की AINRC ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा एनडीए की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछले महीने हुए और आज सुबह से उनके मतों की गिनती जारी है और हम पल पल अपडेट आप तक ला रहे हैं। क्या रुझान है, क्या परिणाम है, इन पर अपडेट देते हुए हम विशेषज्ञों से चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा नाम है सोनू सूद और मेरे साथ मेरे इंग्लिश के को एंकर हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। वैभव, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
3: सोनू, वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम दैट वी आर ब्रिंगिंग यू लाइव फ्रॉम आकाशवाणी एंड वी वेलकम इन दिस प्रोग्राम अ वेरी स्पेशल गेस्ट सर्जना शर्मा मैम। वेलकम टू दिस शो।
4: थैंक यू सो मच।
2: सो सर्जना जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में।
4: आभार सोनू जी।
2: जी, और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में ये सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी TVK ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में UDF स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से ये 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम 2 सीटों पर आगे है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे है। असम की बात करें तो असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से वे 90 सीटें पर जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वह 11 सीटें जीत चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं।
3: टॉकिंग अबाउट केरलम, द कांग्रेस लेड द चार्ज विद 63 सीट्स व्हाइल द IUML एडेड 21 गिविंग द अलायंस अ डोमिनेंट एज अक्रॉस द स्टेट। अदर UDF पार्टनर्स इंक्लूडिंग केरला कांग्रेस फैक्शंस एंड स्मॉलर एलाइज ऑल्सो चिप्ड इन अंडरलाइनिंग अ ब्रॉड बेस्ड मैंडेट फॉर द कोअलिशन। लेटेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट चीफ मिनिस्टर एंड CPIM लीडर Pinarayi Vijayan has defeated VP Abdul Rashid of Congress in Dharmadam constituency by more than 19,000 votes.
2: सर्जना जी, क्या कहेंगी आप, ये जो विधानसभा चुनाव आए हैं, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, इन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा है जिस तरह का एक स्वीपिंग विक्ट्री लगता है कि बीजेपी को मिलने वाली है, उस तरफ अग्रसर है, 200 से अधिक सीटें, किस तरह से देखती हैं आप?
4: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति, अगर आप इतिहास देखें, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 30 ईयर तक कांग्रेस रही, फिर 34 CPM रही और फिर 15 साल TMC रही और एक बार जो सत्ता से गया वो लौट के नहीं आया। और जबकि TMC ने तो बाकी अपनी दोनों पार्टियों की तुलना में बहुत कम समय, 15 ईयर, आधा ही उन्होंने किया था
2: जी।
4: पर ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बीजेपी के लिए और इतनी बड़ी है कि इसको आइडियोलॉजी वोटों से

ज्यादा आइडियोलॉजी की हम एक जीत कहेंगे, एक आइडियोलॉजी की जीत है, और विरासत के साथ विकास, जो बीजेपी का एक नारा है विरासत के साथ विकास, उसको भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सब की बात कही, और रक्षा महिला सुरक्षा की बात कही, इसके अलावा कहा कि हम आपको जो घुसपैठिए जो सीमा सुरक्षा की जो बात कही, ये बहुत सारे मुद्दे थे जो कि बीजेपी के पक्ष में गए। और दूसरा जो बीजेपी की चुनावी रणनीति जो स्ट्रैटेजी थी, जमीन पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक जिसको बोलते हैं कि पन्ना प्रमुख तक से बात करने की जो रणनीति है बीजेपी की, और संस्कृति से जुड़ा, जो अभी आज देखिए, आज मोदी जी जब बीजेपी मुख्यालय में गए हैं तो पूरी तरह से भद्र

भारत माता की भारत माता की। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है।

मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जय पराजय, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में

जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। ये असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोड़ोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर

ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते दो साल के ट्रेंड को देखिए, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली। और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होए गए छे, साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को

बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े, आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है।

सवेरा एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को, भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठ

के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 2500 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है, हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार

लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी, तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग

अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल और कलिंग यानी आज का ओडिशा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है।

0: ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन तीन सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशंस था, उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा।
1: अभी हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुन रहे थे। सर्जना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और मुझे और वैभव श्रीवास्तव को अब इजाजत दीजिए। 9:15 बजे हम फिर जनादेश 2026 लेकर आपके बीच होंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: सिर्फ सरकारा जा विज्ञानिका का काम नहीं है, सगो हर उस इंसान का फर्ज है जो इस धरती ते रह रहा है। जेकर असी अज अपनियां सुख सहूलतां विच थोड़ा जिहा संजम वरतांगे तां ही असी अपनी आउण वाली पीढ़ी नूं इक रोशन अते सुरक्षित भविख दे सकांगे। कुदरत दे स्रोत साडी लोड़ पूरी करन लई काफी हन, पर साडे लालच लई नहीं। इस लई आओ असी सब मिलके इह संकल्प करिए कि असी ऊर्जा दी सही वरतों करांगे अते इस दी बचत करांगे, क्योंकि ऊर्जा दी बचत ही सच्ची तरक्की दी कुंजी है। साडी अज दी इक छोटी जिही कोशिश कल दे वड्डे हनेरे नूं रोक सकदी है। ऊर्जा बचाओ, भविख बचाओ।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ।

माई मैं मन को मान ना त्याग्यो। भाई दविंदर सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। ते आओ हुण सरवण करदे हां अगला शब्द भाई गोपाल सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच।

रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। भाई गोपाल सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। हुण सरवण करदे हां भाई निर्मल सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच ए शब्द।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

जी श्रोताओं, खेल कोई भी हो, सिकंदर वही कहलाता है जो बाजी को पलटना जानता है। और कहते हैं ना कि हार हमें और भी मजबूत बनाती है। उस हार से सबक लेकर कमियों को दूर करना है और बन जाना है अपने सफर का, अपनी जिंदगी का सिकंदर, क्योंकि दुनिया उसे ही याद रखती है जो इतिहास रचना जानते हैं। इसीलिए अगर किसी भी मोड़ पर असफलता मिले तो रुके नहीं, बल्कि दोगुनी मेहनत से इस असफलता को सफलता में बदलने का संकल्प लें, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।

बिल्कुल श्रोताओं, गम से कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि हार को हराना है, यही मजबूत इरादा रखना है। जिंदगी को जितने भी पॉजिटिव नोट पर आप जिएंगे, ये जिंदगी उतनी ही रंगीन होती जाएगी। जिंदगी सफर ही कुछ ऐसा है जहाँ हर पल नया गीत है, और इस गीत को गुनगुनाते जाना है, खूबसूरत बनाना है जो हमारे ही हाथ में है, क्योंकि जिंदगी के इस रास्ते पर अगर थम गए तो फिर कुछ भी नहीं है।

बिल्कुल श्रोताओं, रुकना नहीं है, थमना नहीं है और बस चलते ही जाना है। इसी गीत के साथ हमारा आज का गीत मालिका का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, यानी कि हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहाँ पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में

0: गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में NDA उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
1: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली NDA की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी NDA सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव MA बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।

0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। यूपीआई से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार 3री बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

उन्होंने आज की जीत को भारत की जमहूरी और आईनी अकदार से मंसूब किया। कांग्रेस की क्यादत वाले मुतहदा जमहूरी महाज ने केरलम में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में शानदार कारकर्दगी के साथ अपना खाता खोला। असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 2, जबकि एनसीपी की सुनेत्र पवार ने को रिकॉर्ड फर्क से जीत हासिल की। और इंतखाबी नतायज से घरेलू स्टॉक मार्केटों में खुशी की लहर दौड़ गई। सेंसेक्स में जबरदस्त इजाफा हुआ और निफ्टी 24,100 से तजावुज कर गया। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में 294 रुकनी रियासती असेंबली चुनाव में भारी अक्सरियत हासिल करके तारीख रकम की है। आसाम में हुक्मरान बीजेपी की क्यादत वाले एनडीए ने मुसलसल तीसरी मर्तबा तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 99 सीटें जीतकर इकतदार में मजबूत वापसी की है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके अपने पहले ही चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी की ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की क्यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की हुकूमत में वापसी मुतवक्के है। जिमनी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड और महाराष्ट्र में 1-1 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें हासिल की हैं। एनसीपी ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोटों से 1 सीट हासिल की है। बीजेपी मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बड़ी कामयाबी की तरफ गामजन है। उसने 294 रुकनी असेंबली में 148 की अक्सरियत का निशाना उबूर कर लिया है। रियासत में आजादी के बाद पहली मर्तबा बीजेपी हुकूमत बनती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 15 बरस इकतदार में रहने के बाद शिकस्त का सामना है। ये चुनाव वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी एसआईआर के बाद होने वाला पहला इंतखाब है। कुल 293 असेंबली हलकों में से अब तक 213 हलकों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 154 सीटें जीत ली हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 54 सीटें हासिल की हैं। इलाकाई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। अब तक 80 सीटों के रुझानात के मुताबिक बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों पर सबकत बनाए हुए है और दीगर 1 सीट पर आगे है। मगरबी बंगाल की वजीर आला और टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी बाबानीपुर हलके में बीजेपी के अपने हरीफ सुवेंदु अधिकारी से पीछे हैं, जबकि सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर भी सबकत हासिल बनाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत मैत्रा ने ब्रह्मपुर हलके में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। आसाम में अब तक 119 हलकों के नतायज का ऐलान हो चुका है, जिनमें बीजेपी ने 81 सीटें जीत ली हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आसाम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ ने 10 सीटें हासिल की हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने 14 हलकों में जीत हासिल की है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ और रायजोर दल ने 2-2 सीटें हासिल की हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने 1 सीट जीती है। बाकी 7 सीटों के रुझानात के मुताबिक बीजेपी 1 सीट पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। बीजेपी के रहनुमा और मौजूदा वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने जालुकबारी हलके से जीत हासिल की है। केरलम में कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबकत बनाए हुए है, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें हासिल करके यूडीएफ को रियासत भर में मजबूत बढ़तरी दिलाई है। यूडीएफ के दीगर इत्तेहादियों, जिनमें केरला कांग्रेस के मुख्तलिफ धड़े और छोटे इत्तेहादी शामिल हैं, ने भी कामयाबी हासिल की, जिससे इत्तेहाद के हक में बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत का इजहार होता है। ताज़ा नतीजों के मुताबिक वजीर आला और सीपीआईएम रहनुमा पिनराई विजयन और धर्मादम हलके में कांग्रेस के वीपी अब्दुल रशीद को 19,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने नेमम हलके में सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा वी सिवंकुट्टी को 4,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की क्यादत वाली टीवीके

0: बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी।
1: KV Prasad, sir, the Honourable Prime Minister talking about development and the trust on tomorrow's hopes that the people have and how they have entrusted those hopes in the form of votes to the BJP. How do you see this change in power for the people of Bengal, especially for the constituencies which were just at the border, which were facing issues, as Praful Ketkarji rightly said, that the fall of this government, the TMC government, came or started around 1.5 years back when the government of Sheikh Hasina fell, and there were so many repercussions on one particular community, but there was no comment or no action taken by the TMC, or not even a comment from them. How do you see that changing now? And with this, we will also like to tell everyone that Suvendu Adhikari has clearly talked about the fact that not just Hindu majority areas, but every other areas too, have clearly voted for the BJP for this change. Sir, your views.
2: Well, the biggest thing I would see is for the Bharatiya Janata Party that it has to hit the ground running without delay, number one, because the task, the mandate that people have given them shows the kind of hope they carry in this new government. They've elected a government on the set of promises the government has, the Bharatiya Janata Party, right from the top leadership, led by the Prime Minister himself during his entire campaign and everybody else. So that's one thing. And secondly, what the Prime Minister has articulated, those are the factors on which the BJP will be there. Infiltration, of course, has been big in the campaign, and these are some of the factors. And improving relationship with the neighbor state is now, of course, an aspect that got into the domestic politics too. So we'll have to see how it takes the course forward. But I said, they'll have to hit the ground running without delay.
3: प्रफुल जी, एक और स्टेट जो तमिलनाडु में आज जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं। डीएमके जो वहां पर सत्ता में थी उनको नहीं मिली है मेजॉरिटी, और एआईएडीएमके जो दूसरी ड्रेविडियन पार्टी थी जो डीएमके से पहले सत्ता में थी उनको भी नहीं मिली है। जो नई पार्टी है टीवी के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की, उनको जो मिडवे मार्क है उससे केवल 10 सीटें पीछे है वो। सो पहले तो बताएं कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है, एक नई पार्टी जो 2 साल पहले ही बनी थी उसमें क्या देखा है वोटर्स ने, और कैसे देखते हैं पोस्ट पोल क्या अलायंस होगा?
4: देखिए सोनू जी, मैं थोड़ा सा उसको और उल्टे तरीके से देखता हूँ। डीएमके और एआईडीएमके मिलकर जितनी सीटें है उतनी टीवीके को है। सेकेंडली, फर्स्ट टाइम एवर, मतलब अभी तक जो भी पार्टी वहां पे जीतती थी वो अपने दम पर 30-32% ही वोट लाती थी
3: जी।
4: बाकी अलाइज के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेती थी। वो नंबर्स तमिलनाडु में जो दिखते हैं ना, हम जनरली दो बड़ी द्रविडियन पार्टीज में देखते हैं, लेकिन यदि हम पीएमके, एमडीएमके, ये छोटे छोटे दल वहां के देखे तो उनका हरेक का अपना 2-5% का वोट शेयर है, दे एड अप। दैट हैजंट हैपेंड दिस टाइम। टीवीके के पक्ष में 35% वोट शेयर है, द पार्टी कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
3: बिल्कुल।
4: तो ये जो है ये क्लियरली दिखाता है कि तमिलनाडु का वोटर जयललिता और करुणानिधि जी के निधन के बाद ऑप्शंस देख रहा था। उन्होंने एक बार पनाईसामी के नेतृत्व में एआईडीएमके को ट्राई किया, स्टालिन को ट्राई किया, लेकिन दोनों द्रविड़ियन पार्टीज वो एस्पिरेशंस और वो लीडरशिप नहीं दिखा पाए। करप्शन, पैसे का पूरे चुनावी प्रक्रिया में उपयोग, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज तमिलनाडु की डिवाइडेड।

0: nobody understands this. You know, virtually Udayanidhi Stalin is controlling the film industry, or wo film industry ka rift hai, Vijay coming from the same field. He is giving a new hope for Tamil film industry. इसीलिए हम देखते हैं कि मलेशिया से, सिंगापुर से तमिल फिल्म केवल तमिलनाडु में नहीं चलती है. वो बाहर जो तमिल डायस्पोरा बैठा हुआ है उसके भी एस्पिरेशन उन्होंने एड्रेस किए. तो ये सारे फैक्टर मिलाकर एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर बंगाल की चर्चा होती है. तमिलनाडु में भी एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर करप्शन चार्जेस में जेल में गए हैं. तो ये सारे फैक्टर एडअप होने के कारण लगभग 17% यूथ आज तमिलनाडु में है. दे वेर लुकिंग फॉर यू नो लुकिंग एट विजय एज अ होप. वो दिखने के बाद बाकी रैलिंग हुआ है ऐसा मुझे अभी इनसाइड में लगा.
1: एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी है.
0: डीएमके के खिलाफ सेंटीमेंट था, वो किसके पक्ष में जाता है ये समझ में नहीं आ रहा था. विजय हैज डेफिनेटली
2: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी, एज यू वर सेइंग दैट द एरोगेंस ऑफ द इनकम्बेंट पार्टी और व्हिच हैज नाउ बिकम द पार्टी व्हिच वाज रूलिंग तमिलनाडु हैज शोन the people that yes they were looking for a change and now they have exercised their right that yes we need that change in the form of a new face. Let's go over to our Chennai correspondent Sushil Tiwari. Sushil ji, welcome to the show. What is the sentiment on the ground? How happy, excited, elated are the people with this win of TVK and what are their hopes and aspirations? I believe
1: सुशील जी आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी शायद प्रॉब्लम है. आपके पास आते हैं मिस्टर प्रसाद, आप कैसे देखते हैं तमिलनाडु में जो ये रिजल्ट आया है? हालांकि अब एग्जिट पोल से कुछ आभास होने लगा था और उसके अकॉर्डिंग ही लगता है रिजल्ट आया है, लेकिन इसका कारण क्या है आपके आप पर्सपेक्टिव हमें
3: देखिए. मैं एक चीज जो प्रफुल्ल जी ने कहा उसको आगे बढ़ाता हूँ. आप अगर देखिए 2016 का जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वो पहली मर्तबा हुआ कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री कट गई थी, कोई नुमाइंदगी नहीं थी क्योंकि स्टालिन इंडस्ट्री से नहीं आए थे और जो उम्मीद थी रजनीकांत चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव से ठीक पहले पीछे हट गए थे. उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा. और उसके बाद
1: और कमल हासन की पार्टी
3: थी लेकिन उसका कोई खास हुआ नहीं. और भी थे नेमम, और भी दो चार लोग हैं नाइमम जो वहाँ पे वो थे लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था. कैप्टन विजयकांत के जाने के बाद डीएमडीके का भी. तो जब इस बारी ये हमारे टीवीके के विजय मैदान में आए और दो साल पहले तो उन्होंने पार्टी बनाई लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी. अगर आप देखें उनकी जो फैन क्लब्स है उस फैंस क्लब को उन्होंने एक्टिवेट किया सोशल वर्क के लिए. तो एक तरह से पूरा अपना पैंट बनाई लोगों के बीच में और वेलफेयर वर्क किया. उसके बाद उनको स्थानीय चुनाव में लड़वाए तो उसमें से सीटें निकल के आने लगी. तो एक तरह से उनको पता था कि राजनीति क्या होनी है. और सबसे बड़ा मानता हूँ कि जब एक तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिक्स शुरू से देखिए, अन्नादुराय के टाइम से देखिए, कामराज के टाइम से देखिए, सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी. करुणानिधि खुद, MGA रामचंद्रन, जयललिता, सब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आए. तो वो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्ट वापस जुड़ा है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में. दूसरा, ये एक युवा होने के कारण नया उम्मीद लेके लोग उनके साथ आए हैं. और तमिलनाडु में जितने राजनीति मैंने कई सालों से देखी, ये ज़रूर था उनके पास कि एक विकल्प जरूर ढूंढते थे, कोई तीसरा विकल्प दोनों द्रविड़ियन पार्टी से अलग.
1: चेन्नई से सुशील तिवारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं. सुशील जी, बताएं कि तमिलनाडु में जो ये एक कहें कि बहुत ही क्रांतिकारी सा बदलाव आया है, एक नई पार्टी जो उभर के आई है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरह का माहौल है और क्या आशाएं हैं?
4: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत, आप अगर इसे एक नजरिए से देखें तो युवाओं की और जेंजी की इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका है. जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कई चर्चाओं में कि जो 14 लाख के आसपास पहली बार के वोटर्स थे उनमें युवा वर्ग में बहुत जबरदस्त क्रेज था विजय का, और जिसकी हम लोग बार बार विभिन्न मौकों पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स की एक लार्जर देन लाइफ इमेज होती है. वो हमने देखा कि जो तमिलनाडु की राजनीति है उसमें शुरुआत में जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स, जो पेरियार आंदोलन था, वहां से लेकर के राजनीति, जो सिनेमा घर है वो एज ए क्लासरूम सोशल इविल्स को लेकर के और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो

0: उठाते रहते थे और अगली पीढ़ी में वही लोग नेता बन करके आए, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उसको एक्सपेंड किया अगली पीढ़ी में। वो जो पर्दे पर वो जो करते हुए दिख रहे थे गरीब तबके के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, वो उन्होंने सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों के जरिए किया। और इस बार उसी अटैचमेंट का लाभ जो है वो विजय ने अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने में किया। तो 30 साल के आसपास तक के जितने 1 करोड़ से ऊपर मतदाता थे उनमें उनका जबरदस्त क्रेज रहा, सोशल मीडिया में जबरदस्त क्रेज रहा। तो एक तो उनके जीतने के पीछे एक ये वजह भी थी, प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स थे, जो एक वॉइड था, जो एक खालीपन था, जो फिल्मी सितारों का जिस तरीके से कहा जाए कि उस तरीके से पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ विजयकांत ने जरूर शुरुआत की थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो रजनीकांत, कमल हासन सबने प्रयास किया लेकिन इस तरीके का कनेक्ट वो यूथ के साथ नहीं बना पाए। वो पीढ़ी भी पुरानी थी, नई पीढ़ी के सितारे के तौर पर विजय ने जबरदस्त कनेक्ट किया। तो एक तो ये रहा और दूसरा हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से युवा सड़कों पर जो विसल पोड़ू, जो तमिल में कहते हैं कि सीटी बजाओ, उनका जो नारा था, उनकी जो सिंबल था वो भी सिंबल भी था, वो जबरदस्त हर तरफ सीटी बजाते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सड़कों पर आतिशबाजी हो रही, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं विजय की एक झलक पाने के लिए,
1: जोश बहुत है
0: पार्टी वर्कर्स के पास। तो इतने बड़े समूह की आकांक्षाओं को भी साकार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकार की असफलता जो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, और जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें हो रही थी कि एक तरीके से पूरा कब्जा हो रहा था, तो वो उस चीज से मुक्ति दिलाने का विजय वादा करके आए। और AIADMK में उस तरीके का करिश्मा नहीं रहा, लोगों को वो कनेक्ट विजय के साथ हुआ, स्पेशली यूथ को।
1: तो
0: बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडियो में प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो AINRC और सहयोगी दल 17 सीटें जीत चुके हैं और एक पर आगे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 6 सीटें मिली हैं। TVK 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। सो जो 16 का जो मैजिक नंबर है वो ऑलरेडी जो BJP और AINRC है उन्होंने हासिल कर लिया है। दोबारा उनकी सरकार बनेगी, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है?
2: देखिए, जो 2016-17 के बाद BJP ने वहां पे एक जो एक्सपेरिमेंट किया, वहां की एक स्थानिक पार्टी को साथ में लेकर सरकार बनाई, उसको मर्ज नहीं किया BJP में, उस पार्टी की आइडेंटिटी बनाए रखते हुए BJP ने अलायंस किया। ये BJP दक्षिण के राज्यों के लिए एक अलग सा प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी। पुदुचेरी में वो सफल हुआ है और लगातार दूसरी बार NDA को वहां पे जीत मिली है। यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज जो अपने जो सुनने वाले हैं उनको बतानी है कि यदि हम AINRC और BJP और उसके अलाइज, इनका सबका वोट परसेंटेज देखते हैं तो ये बहुत छोटी विधानसभा है इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि BJP ऑन इट्स ओन हैज 13% वोट शेयर हियर। तो वहां पे जो केमिस्ट्री होती है किसी भी अलायंस को जीतने के लिए कि वोट ट्रांसफर बहुत अच्छा हुआ है और इस वजह से लगभग 23-24% के साथ AINRC और BJP, तो वो वोट परसेंट उनका लगभग हम कह सकते हैं कि 35-36% के आसपास होने के बाद भी उन्होंने आराम से वहां पे मेजोरिटी हासिल की है। AIADMK उनके साथ में है ही, उसने भी 1.5-2% वोट ऐड किया है। उसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो DMK और कांग्रेस इनका मिलाकर लगभग 30% तक का वोट शेयर है। कांग्रेस 17% पर है, DMK 13% पर है, लेकिन फिर भी वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अंदरूनी केमिस्ट्री नहीं है।
3: एब्सोल्युटली,
2: ये समझना बहुत जरूरी है पुदुचेरी के मामले।
3: वेल, लेट्स अंडरस्टैंड मोर एज टू व्हाट आर द सिचुएशंस इन पुदुचेरी। वी गो ओवर लाइव टू आवर कॉरेस्पोंडेंट इन पुदुचेरी, द आकाशवाणी कॉरेस्पोंडेंट बिबिन एस नाथ। बिबिन जी, वेलकम टू द शो। व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड? हाउ डू यू सी दिस विक्ट्री ऑफ द BJP ऑफ नेशनल इश्यूज being considered by the people, the national leaders being considered by regional people or regional areas, and them giving a chance to the BJP once again in Puducherry? How the best Puducherry vision of 2021 has borne fruit?
4: Thank you. Good evening. In my perspective, actually, at the heart of the victory in Puducherry, rather than the double engine government,

0: Yeah, identity was a very, very sentimental issue since 2000.
1: Absolutely.
0: Actually, from
1: From
0: AGP's
1: way back,
0: agitation,
1: 80s, the
0: ASU
1: 1980s.
0: agitation, then AGP. The way, again, many a times we do not understand. 102 is a huge number in 100, 126
1: Absolutely.
0: assembly. But again, I will insist on chemistry. AGP, Bodoland Party, and BJP together has 102 seats, and again BJP just 37%. All these two parties have brought in 10% more.
1: True that.
0: So it is shifting not just in their area where BJP is contesting. So when the chemistry is right, you convert seats more with lesser percentage. That is the formula that BJP is using everywhere.
2: इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने अपने उसमें कहा संबोधन में कि अब जो टी गार्डन के वर्कर्स हैं वो भी हमारे लिए वोट करें, तो जो अभी तक जो जो भी ऐसे ऐसे सेगमेंट्स थे जो प्रो बीजेपी नहीं थे, जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉइट भी किया जाता है कल्चरल आइडेंटिटी या रीजनल, जैसा बंगाल में भी हमने देखा, तो वो भी अब इस बात को स्वीकार रहे हैं कि नेशनल पार्टी भी उनके लिए बेहतर हो सकती है।
0: असम में और बंगाल में दोनों जगह पर मैंने देखा, खास करके बीजेपी ने अनुसूचित जाति जनजाति दोनों वर्गों में और खास करके टी गार्डन में पहली बार उनको वोटिंग राइट में इंक्लूजन तो एक हिस्सा है ही
2: जी
0: जिसका
2: जी
0: सेंटिमेंटल,
2: जी
0: पहली बार उनको लैंड राइट मिला है। सी
2: जी
0: आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन उनको वहां पे एज अ लेबर लेकर गया थे, तो उसके कारण टी गार्डन वर्कर्स को लैंड राइट नहीं थे, अभी उनको पट्टा मिला है। दैट हैज बीन द गेम चेंजर, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस डिडंट पे अटेंशन टू। वो मुझे लगता है, और वो तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये केवल आयुष्मान भारत की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में पट्टा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में सीए और डिलिमिटेशन में कैसी दिक्कतें आई जो असम में इंप्लीमेंट हो गया, तो
1: एब्सोल्युटली
0: वो एक मैसेज है। और तीसरा सबसे बड़ा मुझे जो फैक्टर लगता है, अगेन टुडे नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बंगाल इज वन स्टेट वेयर सेवन पे कमीशन इज स्टिल नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो रिजेंटमेंट है, बहुत लोग पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी तो करते हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी को जो सेंटर के बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर। तो असम में ये और असम और बंगाल में ये मुझे लगता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो एक्सप्लॉयटेड स्टेट मशीनरी के थ्रू फील करते थे, उन्होंने डिसाइसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है।
2: और
1: एब्सोल्युटली
2: अगर हम केरला की बात करें मिस्टर प्रसाद, तो वहां पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट थी, अब वो इस चुनाव में अपना जो स्थान है वो बरकरार नहीं कर पाई है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया है। सो इसको आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या जो एक लेफ्ट की सरकार एक जो बची हुई थी एक राज्य में, अब वो भी नहीं रहेगी, तो इसको भी आप एक बहुत बड़ा एक बदलाव मानते हैं?
3: जी, राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एक लेजिस्लेटिव प्रेजेंस उनका खत्म हो गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कम्युनिस्ट का
2: जी
3: आइडियोलॉजी या वो, उसमें फर्क पड़ा है लेकिन एक कम प्रेजेंस नहीं लेगा लेजिस्लेटिव, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज है जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स हम कहते हैं केरला में, जैसे तो ऑल्टरनेट करते थे, वो वापस आ गया, क्योंकि पिछले बारी वो टूटा था बहुत सालों बाद कि लेफ्ट की सरकार रिपीट हो गई थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, अभी वो आगे चल के पता लगेंगी हमें।
1: एब्सोल्युटली, बट केवी सर, एज वी वर टॉकिंग अर्लियर, यू सेड दैट यू बीन कवरिंग इलेक्शंस एंड यू बीन सीइंग द पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया फॉर सो लॉन्ग नाउ, डेकेड्स, हैज द लेफ्ट कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ द वोटर सेंटिमेंट? नाउ वी सी इन वेस्ट बंगाल, वी सी इन असम, नाउ वी सीन इट इन केरला, हाउ द लेफ्ट हैज कंप्लीटली बीन साइडलाइन्ड बाय द पीपल एंड टाइम एंड अगेन, आर देयर नो इश्यूज विद द लेफ्ट? Or the left has completely lost track of what the people want?
3: I don't say they're lost completely, but just that what the issues that they're picking up are not gaining traction. A, probably they're not able to reach out to the segments in the manner in which they were reaching out earlier. The landscape has changed, and they have not adapted to the changing landscape. You have to understand that every generation there will be new things coming up. So if you can't use the same old methods of mobilization, mass mobilization, which used to be the criteria for left parties in India, that has changed.
2: और प्रफुल्ल जी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अभी पोस्ट पोल आप किस तरह का वहां पर अलायंस बनता हुआ

0: देखते हैं किस तरह की नेगोशिएशंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सरकार बनने के लिए।
1: टीवी के मोटा मोटा मानकर चलते हैं, अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से 107 108 सीट तक सेटल डाउन होगा। और इसलिए कोई और अल्टरनेट गवर्नमेंट बनने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो टीवी की गवर्नमेंट बनाएगी। विजय इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इवन बिफोर व्हेन बोथ द पार्टीज वर ट्राइंग टू निगोशिएट विथ हिम। वो तो बात ही इसी तरीके से कर रहा था कि जिसको मेरे पास आना है वो आए, मैं तो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हूं। तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज सपोर्ट बेस। अब चैलेंज उसके सामने दो तरीके के हैं। एक, वो किस तरीके से, क्योंकि उसने एंटी डीएम के पॉलिटिक्स को तमिलनाडु में लाया है, ये पक्का है। लेकिन क्या वो आज छोटी पार्टीज को साथ में लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में है, या एआईडीएमके के साथ इसमें बीजेपी और सेंटर कितना रोल प्ले करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। बिकॉज विजय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इन टॉकिंग टर्म्स विद द बीजेपी एंड एआईडीएमके ऑल्सो। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है कि उसने लगभग सारे उसके कैंडिडेट्स फ्रेश है, किसी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड
0: जी जी
1: गवर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्टेट लाइक तमिलनाडु इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर हिम।
0: और प्रफुल्ल जी, 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए। भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। इसमें क्या कुछ खास रहा इस उपचुनाव में?
1: देखिए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार
0: जी
1: की सीट है, हाईएस्ट
0: एब्सोल्युटली,
1: मार्जिन से
0: बारामती
1: जीती है
0: की।
1: बारामती की। तो अजीत पवार के निधन के बाद वो सीट वेकेंट हुई थी, इसलिए वहां पे बायपोल हुआ है। मुझे नागालैंड की विक्ट्री बीजेपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लगती है। नागालैंड में अपने दम पर बीजेपी ने एनपीपी और वहां की स्थानिक पार्टियों को हराकर वो सीट जीतना, ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से भी है।
2: के वी सर, योर व्यूज ऑन द विक्ट्रीज ऑफ द बाय इलेक्शंस सो फार एंड हाउ डज इट।
3: वेल, नॉर्मली वी सी बाय इलेक्शंस द गवर्नमेंट ऑफ द डे गेट्स टू कैरी द बाय इलेक्शंस। सो इफ यू लुक एट द लॉस इन कर्नाटका, बीजेपी हैज, सॉरी, कांग्रेस हैज,
2: कांग्रेस हैज,
3: इन गुजरात
2: बीजेपी,
3: बीजेपी
2: जी,
3: एंड ऑफ कोर्स एज
2: महाराष्ट्र अगेन बीजेपी,
3: महाराष्ट्र, बट महाराष्ट्र लेस ऑफ अ कॉन्टेस्ट बिकॉज देर वॉज मोर आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, पीपल हैड
2: एब्सोल्युटली
3: नॉट कंटेस्टेड दैट सीट। That is a very common trend in Indian politics. Nagaland is the sole exception if you look at it this way. But otherwise, the broader trend that the state assembly elections by polls usually go with the government of the day is more or less in place.
0: समय समाप्त हो रहा है, सो अब हम इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे। प्रफुल्ल जी, प्रसाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने जो आज जनादेश आया है उसका विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए किया।
3: धन्यवाद।
0: और अब मेरी तरफ से और मेरे को एंकर वैभव श्रीवास्तव की तरफ से आपको नमस्कार। जनादेश 2026 की इस विशेष चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी।
4: जनादेश 2026,
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
4: जनादेश 2026,
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।

0: ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलागा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 96 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके 50 सीटें जीत चुकी है। एआईएडीएमके 42 सीटें जीत चुकी है। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और दवेड़ मुन्नेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलागा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं। उधर पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस 30 सीटों में से 29 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं। एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है और डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों और की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेड सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड की कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक के बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलपमेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगिरी दक्षिण से कांग्रेस के समर्थ समनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 6ठे ओवर में बिना किसी नुकसान के 64 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. Ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Kerala, United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signaling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance or NDA government led by N. Rangasamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Shubhendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress, TMC, in the first election after the Special Intensive Revision, or SIR, of electoral roll. With this win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. out of a total of 293 assembly seats. Results have been declared for 213 constituencies so far. BJP has bagged 154 seats, while Trinamool Congress has won 54 seats. Congress and regional Aam Janata Union Party, AJUP, secured two seats each, and CPM clinched one seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Ahom Gana Parikhar, AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats. All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. BJP leader and incumbent Chief Minister Hemant Biswa Sarma has won from Jalukbari constituency, defeating Congress rival Bidisha Niyog. Party leader Hitendranath Goswami defeated Assam Congress President Gaurav Gogoi in Jorhat seat. In Kerala, Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's-led Tamarag Vetriyakaragam, TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 96 seats and is leading in 11 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 205 results have been declared, while trends are available from other 29 seats. According to the Election Commission, ruling DMK, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 50 seats and is leading in 10 seats, while its rival All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, AIADMK, has won 42 seats and is leading in 5 seats. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said that today is a historic and unprecedented day and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at the BJP headquarters in Delhi this evening, Mr. Modi said that today heralds a new dawn for the nation and people have placed their trust in India's great democracy, politics of performance and trust in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
1: Jai parajay, loktantr aur chunavi rajniti ka ek swabhavik hissa hota hai. Lekin panch pradeshon ki janta ne pure विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है. लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है. और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है.
2: Home Minister Amit Shah today said that the historic victory for the BJP in Bengal is the result of the sacrifices, struggles and martyrdom of the party's countless workers. On the other hand, senior Congress leader Rahul Gandhi has thanked the people of Kerala for a truly decisive mandate in the assembly polls. In a social media post, Mr. Gandhi congratulated every UDF leader and worker for a hard-fought and well-run campaign. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर. डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, वक्त हुआ है 10:10. आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज लुत्फ लेते हैं चंद खूबसूरत सी गजलों का. कलाकार हैं संजय भटनागर.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने लुत्फ लिया चंद खूबसूरत सी गजलों का। कलाकार रहे संजय भटनागर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी बता रही है 10:30 और पूरे 10 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग रंजन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं सरोद पर बजाया राग रागेश्री। कलाकार हैं विश्वजीत राय चौधरी। आइए सुनते हैं ये रचना।

राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना सरोद पर बजाया राग रागेश्वरी। कलाकार रहे विश्वजीत राय चौधरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने

0: 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईए डीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after Special Intensive Revision SIR of electoral roll. With a win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 271 constituencies so far. BJP has bagged 197 seats, while Trinamool Congress has won 68 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad, AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front, AIUDF, clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. BJP leader and incumbent Chief Minister Hemant Biswa Sarma has won from Jalukbari constituency, defeating Congress rival Bidisha Nyog. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's-led Tamaraga Vetri Karagam, TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has 105 seats and is leading on 2 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 229 results have been declared, while trends are available from other 5 seats. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munnetra Karagam, DMK, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 28 seats and is leading on 2 seats, while its rival All India Anna Dravida Munnetra Karagam, AIADMK, has won 46 seats and is leading at 1 seat. PMK has won 2 seats, Indian National Congress, INC, has won 5 seats, BJP, DMDK and AMMKMNKZ bagged 1 seat each. CPI, CPIM, VCK and IUML bagged 2 seats each. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said that today is a historic and unprecedented day and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Keralam. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi this evening, Mr. Modi said today heralds a new dawn for the nation and people have placed their trust in India's great democracy, politics of performance and trust in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: And with that, we end this news bulletin.

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज के साथ।
1: कहाँ जा रहे हो? महफिल की रौनक खत्म हो जाएगी तुम्हारे चले जाने से।
2: गरीब अमीरों की महफिल की रौनक नहीं, हमेशा तमाशा बना है।
1: ठहरो अनी, लौट आओ हमारे मेहमान बनकर, हम बुला रहे हैं, आओ ना। थैंक्स, हम आपसे कुछ मांगे तो इनकार तो नहीं करते।
2: जी नहीं।
1: फ्रेंड्स, आज की शाम और खुशगवार हो जाए इसलिए हमने अनिल साहब से एक वादा लिया है कि वो हम सबको एक गाना सुनाएंगे।
2: सर, मुझे तो एक ही गीत आता है और वो गम का गीत इस खुशी की महफिल में कैसे गा सकता हूँ?
3: वो खुशी क्या है अनिल, जिसमें गम शामिल ना हो?
4: नाकाम सिंह।

तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। जी हाँ, रफ़ी साहब की एक खूबसूरत सी आवाज़, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा क्योंकि संदेशों ने बता दिया कि ये गीत आप सभी को बहुत पसंद आया है। अहमद फूलवाले इस समय साहब हमारे साथ हैं, विजय चौहान हैं, और साथ हैं फारूक अली साहब भी, जो कह रहे हैं आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर खान साहब आपका भी, और मुकेश भट्टा साहब आप सभी का। और आज के जो गीत हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे गीत लेकर आऊँ जिन लोगों को, यानी कि जिन्होंने ये गीत गाए हैं, उन्हें अगर हम गीतों का या फिर कहें आवाज़ का बादशाह कहें, या फिर कहें कि आवाज़ की दुनिया की वो महारथी रही, तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, अगर हम भारतीय संगीत की दुनिया में बात करें तो लता जी, आशा जी और रफ़ी साहब, इन्हें कौन नहीं जानता। इनके नाम अगर मैं कहूँ संगीत में या गीत में, तो सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। तो बस सोचा आज क्यों ना इन सभी के चंद खूबसूरत से गीत आप सभी को सुनाऊं। रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने पहला ये गीत सुना था, और अब सुनते हैं लता जी की आवाज़ में। ये भी बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश है आक्रमण से। और इसी बीच बहुत सारे हमारे साथी दोस्त जुड़ रहे हैं, तो भाई कोई भी रोचक सी बात ऐसी जो आपको याद है रफ़ी साहब के बारे में, या फिर लता जी के बारे में, या आशा दीदी के बारे में, जो लगता है कि हमें नहीं पता और हमारे सभी लिसनर्स को पता होनी चाहिए। भाई इतने खास, इतने दिग्गज इन शख्सियतों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो अपने तक ना रखिएगा, संदेशों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा वो खास बात या फिर वो खास याद जो आज भी आपके जहन में जिंदा है।

जी हाँ, खूबसूरत से इन कलाकारों के जब गीतों को सुनने की बारी आती है ना, तो भाई कान और रूह दोनों को ही बेहद सुकून मिल जाता है। और सुकून तो हमें भी आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेशों को पढ़कर और जानकर मिल रहा है। देखिए, इसी भी दिलावर खान साहब ने भी हमें जो है मैसेज भेजा है, और लिखते हैं कि हमारा शिकायत रहती है हमारी कि आप हमारा फैमिली का पूरा नाम क्यों नहीं पढ़ते। तो भाई यहाँ मैं कह दूँ दिलावर साहब कि अगर आप एक ही लाइन में सारे नाम लिख कर भेज देना तो हमारे लिए ईजी रहता है। इतने प्यारे और इतने सारे संदेश आते हैं कि सभी का अगर हम नाम पढ़ेंगे, आपके शहर का नाम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे हमारे साथी दोस्त कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। फिलहाल दिलावर खान साहब है, हसीना नैनो है, और साथ में है एलिजा, नायाब और लट्टू। उम्मीद करते हैं नाराजगी खत्म हो गई होगी। फारूक अली साहब लिखते हैं, लता दीदी को खाने में जो हरी मिर्च है वो बहुत पसंद थी, वो इसका इस्तेमाल किया करती थी। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की है फारूक अली खान साहब ने, कस्बा गन्नौर यूपी से, बहुत बहुत शुक्रिया। यही मैं कह रही थी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे उनकी ज़िंदगी के जुड़े हुए फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता होते। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने कलाकारों के बारे में या फिर अपने ऐसी दिग्गज हस्तियों के बारे में सब जानते हैं। इसी बीच अनिल मोहन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सतीश अनेजा साहब हैं, और वेलकम करते हुए

कह रहे हैं आशा जी के लिए, तो भाई हमने कहा कि आज हम उन्हें भी शामिल करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनका जो गीत है वो छोड़ दें। दोस्त मोहम्मद साहब भी इसी बीच हमारे साथ हैं और लिखते हैं कि लता जी, रफ़ी साहब और अगर आशा जी की बात आए तो फिर भाई कुछ शब्द अगर हम कहें उनके लिए तो वो शब्द भी कम पड़ जाए। इसी बीच हमारे साथ राजेश शर्मा भी हम जुड़ी हुई हैं और साथ है राजेश वर्मा, भारती नागनपुरे, स्वर्ण सिंह, सादिक अली, राजेश वर्मा और एक बार फिर से मैं बताऊं अनिल मोहन साहब है। और आपका पसंद का जो कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत और इस प्रोग्राम को लेकर आज मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त वंदना। और चलिए रफ़ी साहब की एक और जो खूबसूरत आवाज़ को सुनते हैं, उसके बाद आशा जी की तरफ भी हम रुख करेंगे।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

भाई चलिए, हमारा कार्यक्रम तो सफल रहा क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी दोस्तों ने बोला कि जो गीत हैं और जो प्रोग्राम है उन्हें पसंद आ रहा है, और छोटे अंसारी साहब भी लिखते हैं वंदा जी, नाम भी अच्छे लग रहे हैं और प्रोग्राम भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बोधराज खोरवाल साहब भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, मंटू शर्मा है हमारे साथ, और साथ है हमारे रियासत हुसैन, और सतीश अनेजा जी भी इसी बीच हमें सुन रहे हैं, रश्मि पांड्या हैं, और फारूक अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जैसे कि हमने कहा था कि आज का जो प्रोग्राम है डेडिकेटेड हमारी तीनों जो शख्सियत है उन सभी को है, तो आइए एक और खूबसूरत सी अब ये पेशकश आशा जी की आवाज़ में।

जी हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इसका अंदाजा जो है ना मुझे आपके संदेशों से हो रहा है। इसी बीच रश्मि पंड्या जो है हमें लिखती हैं, ओ प्यारी सखी पंद्रह जी, ओहो हमें राजकोट गुजरात से वो गुलाब भेजती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि। और फारूक अली खान साहब कहते हैं कि आरजे वंदना जी प्रोग्राम के गीत पसंद आ रहे हैं और उम्दा प्रोग्राम है और आप बहुत ही अच्छे से पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और सतीश अनेजा साहब ने भी हमें संदेश भेजा है और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए जो एक समय ऐसा था कि कुछ गीत, चूंकि लता जी पहले से स्थापित कलाकार थीं, तो उन्होंने कुछ गीत रिकमेंड किए थे आशा ताई को कि उनसे गवाए जाएं, और बहुत समय के बाद आशा जी को बाद में पता चला कि जो गीतों की जो रिकमेंडेशन है वो लता जी ने उनके लिए की थी। तो भाई बिल्कुल, जब बहनें हैं और एक स्थापित बहन है तो यकीनन इतना करना तो बनता ही है, और उन्होंने अपना फर्ज भी निभाया। इसी बीच स्वर्ण सिंह, राजकुमार दौदी और बहुत सारे संदेशे हमारे पास पहुंच रहे हैं, उन सभी को हम शामिल करते चलेंगे जो लिख रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करें अगर हम दिल्ली की, तो दिल्ली का जो मौसम है अचानक से बहुत सुहावना हो गया है, और ऐसे में लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मेरे जहन में आया, जो इस मौसम या फिर कहूँ इस समय को बहुत ही अच्छे से, अगर मैं कहूँ कि बताता है या बयां करता है। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सी पेशकश लता जी की आवाज़ में।

भाई ये जो गीत है देखिए, इसका कुछ ऐसा असर पड़ा कि इतनी ज्यादा बारिश है कि इसी बीच हमारे कई साथियों ने लिखा कि उन्हें जो प्रोग्राम है वो सुनने में भी दिक्कत हो रही है और हमें भी संदेशों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है। छोटे अंसारी साहब इसी बीच लिख रहे हैं कि नाम जो है हमने जो है बहुत अच्छे से लिया, हमने बहुत बढ़िया से छोटे अंसारी साहब आपका नाम लिया, आपके परिवार का नाम लिया, नाराज होने की तो इसमें कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी। रश्मि पंड्या ऐसी भी हमारे साथ लिखती हैं कि वंदना जी लता जी की आवाज़ की अगर हम बात करें तो बहुत ही सुरीली और बहुत ही मीठी आवाज़ रही है, पर आशा ताई की आवाज़ को थोड़ा और अलग माना जाता है, और वाकई क्यों नहीं माना जाएगा, उन्हें पॉप क्वीन भी कहा जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दोनों ही आवाज़ें, या फिर कहें तीनों ही, आज जो हम बात करें रफ़ी साहब की आवाज़ें ऐसी टक्कर की हैं कि आप किसी एक को किसी दूसरे के साथ जो है कमती बढ़ती, या फिर कहते ना इसको आकलन नहीं कर सकते, सभी अपनी अपनी विधा में अपने अपने क्षेत्र के महारथी रहे हैं। स्वर्ण सिंह भी इसी बीच हमें सुन रहे हैं और साथ में बिट्टू गंगेजा हमें सुन रहे हैं, साथ में है सुरेश, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, रियासत हुसैन भी हैं, मंटू शर्मा साहब भी हैं, जिनका संदेश हम तक पूरी तरह से नहीं आया और वो क्या कहना चाह रहे थे ये बात हमें स्पष्ट तरीके से पता नहीं चल पाई। हाजी मंजर साहब इसी बीच और साथ हैं हमारे साथ हसीना जी भी, और चलिए इसी बात पर एक और खूबसूरत सी आवाज़ रफ़ी साहब के साथ लता दी की आवाज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातः 4:50 पर आप सभी की सेवा में एक बार फिर से हम उपस्थित होंगे, लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 105 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK ने 46 सीट जीते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
3: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhavanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
2: BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after Special Intensive Revision SIR of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 281 constituencies so far. BJP has bagged 203 seats, while Trinamool Congress has won 72 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each, CPM clenched 1 seat. As per trends available so far for 12 seats, BJP is surging in 3 while Trinamool Congress is leading in 9. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its ally Assam Gana Parishad AGP has won 6 seats and Bodo

दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन आवाजों से जिन्होंने ना सिर्फ गाने गाए बल्कि जिंदगी के हर एहसास को सुरों में ढाला। आज का सफर है एक ऐसी आवाज के नाम जो मासूमियत, रोमांस और युवा जोश की पहचान बन गई। आज हम बात कर रहे हैं गायक शैलेंद्र सिंह की।

श्रोताओं, जब इस तरह की गानों की बात आती है और इस तरह के गाने हम सुनते हैं तो सीधे सीधे हमें शैलेंद्र की याद आती है। 4 अक्टूबर 1952 को जन्मे शैलेंद्र सिंह का संगीत से रिश्ता जो है वो बचपन से जुड़ गया था। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट थे और यही माहौल उन्हें संगीत की ओर ले गया। लेकिन हर सफर आसान नहीं होता, सपनों को सच करने के लिए भी संघर्ष की राह से गुजरना पड़ा और यही शैलेंद्र की सादगी को पॉलिश कर गया।

मुंबई की गलियों का एक युवा लड़का अपने सुरों के दम पर पहचान बनाने निकला था और फिर किस्मत ने उसे मिलवाया उस शख्स से जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, शैलेन सिंह का पहला बड़ा ब्रेक आया राज कपूर की फिल्म बॉबी से, जिसका गाना आपने सुना था कार्यक्रम की शुरुआत में। तो श्रोताओं, ये वो फिल्म थी जिसने हीरो हीरोइन गायक फिल्म स्टार सबको सुपरस्टार बना दिया था और उसके गाने आज भी हमारे दिलों में उसी तरह राज करते हैं जैसे वो अभी अपनी हों, सगे हों और चहेते हों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत शैलेन की आवाज़ में। उसके बाद शैलेन की बहुत सारी बातें करेंगे और वो सादगी की भी हम बात करेंगे जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, जो कैसे पॉलिश हुई इस इंडस्ट्री में आके सिल्वर स्क्रीन पर। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम सुरों का सफरनामा।

वाकई दोस्तों, जब भी शैलेन की आवाज हम सुनते हैं तो एक ऐसी खास कशिश हमें सुनाई देती है जो कानों में रस घोलती है। उन्होंने एक फिल्म आई थी बॉबी, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के लिए गाना गाया और वो गाना था मशाल तुम्हें। आज भी दिलों में वो बसता है लोगों के। यही वो गाना था जिसने शैलेन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया।

वाकई दोस्तों कुछ गाने ऐसे हैं जिन्होंने शैलेंद्र सिंह को हर दिल अजीज बना दिया, उस फनकार को उस लाइन में लाकर खड़ा कर दिया जहां से सिर्फ और सिर्फ सितारों की चमक दिखती है। बॉबी फिल्म का मैं शायर तो नहीं, मासूमियत और प्यार का बेहतरीन एहसास था। हम तुम्हें कमरे में बंद हो जब ये गीत आता था तो युवाओं का रोमांटिक एंथम बन जाता था। गाना आए या ना आए, हल्का फुल्का मजेदार अंदाज भी देखने को मिला और प्यार भी कभी कभी तो युवाओं की फीलिंग्स को बखूबी बयान करता है। दोस्तों शैलेंद्र की आवाज में एक अलग ही फ्रेशनेस थी जो बाकी गायकों से उनको

तो श्रोताओं, सुना आपने किस तरह से एक आवाज जो खनक के साथ गानों को अपनी आवाज में ऐसे पिरोती है कि बस दिल खुश हो जाता है, और कुछ इसी तरह कुछ यही बात शैलेन की आवाज में भी थी, और वो आवाज आज भी हम सबको प्रभावित करती है। दोस्तों, कहते हैं सफलता का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। 80 के दशक में नए गायकों की एंट्री और बदलते म्यूजिक ट्रेंड्स ने शैलेन की करियर को प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्टेज शोज और लाइव परफॉर्मेंस के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहे, और यही असली कलाकार की पहचान होती है।

श्रोताओं, सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी भले ही उनको बहुत सारे अवार्ड्स नहीं मिले हो, लेकिन जो दर्शकों के, उनके चहेतों के, उनके फैंस के दिलों में उनकी आवाज़ गूंजती है ना, वो किसी अवार्ड से कम नहीं है और उनकी आवाज़ किसी अवार्ड की मोहताज नहीं है। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा जो सम्मान मिला, दर्शकों का प्यार, युवाओं की पहचान और 70 के दौर में यादों का वो अमर स्थान, उनकी आवाज़ आज भी रेडियो, स्टेज और यादों में जिंदा है और जिंदा रहेगी, क्योंकि जब वो उनके गीत बजते हैं, मैं जिसे गीत की बात करें, मैं शायर तो नहीं बजता है, तो दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। शालीन सिंह सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक एहसास है।

रब ने बना दी जोड़ी, और आवाज़ भी रब ने बनाई थी शैलेंद्र सिंह की। तो दोस्तों ये तो था सुरों का सफरनामा गायक शैलेंद्र के नाम, जिनकी आवाज़ में वो जादू है जो हम पर आप पर एक अलग जादू बिखेरता है। आई होप ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई आवाज़ के साथ, एक नए सफ़र के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है।

0: ही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुद्दुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुद्दुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance, NDA government, led by N. Rangaswamy's All India NR Congress, AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
2: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhavanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kulnan Laha reporting from Kolkata.
3: BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress, TMC, in the first election after Special Intensive Revision, SIR, of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on 1 seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party, AJUP, secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad, the AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. actor turned politician Vijay has led the Tamila Vetri Kadag.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

श्रोताओं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन एरा के गानों सहित गीत सुनहरे। अभी आपने मन्ना डे की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ भी एक खूबसूरत सा गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यायार लाइव न्यूज 24/7।

चुनाव में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अगला गीत कार्यक्रम गीत सुनहरे में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में

0: भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and MNC TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally RUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's led Tamila Vetri Kadagam is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 107 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 233 results have been declared while trends are available from one seat. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munetra Kadagam, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 59 seats. seats and is leading on one seat, while its rival All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has won 47 seats. PMK has won 4 seats, Indian National Congress has won 5 seats, BJP, DMDK and AMM, KM and KZ bagged 1 seat each, CPI, CPIM, VCK and IUML

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, ये आकाशवाणी दिल्ली का ही IR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतनी हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरला में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर

दोस्तों, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत और गजल का अपनी दोस्त सरिता के साथ। और अभी आपने सुनी देवयानी मजुमदार की आवाज़ में ये खूबसूरत सी नज़्म। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप कहीं देश दुनिया से हमें सुन रहे हैं, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर से या दुनिया के किसी भी कोने से, आप हमें अपने ईमेल भेज सकते हैं। जी हाँ, इस रात की तन्हाई में अगर हमारे साथ अपनी बात आप साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com iprradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ये वो माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने दिल की बात बांट सकते हैं अपनी दोस्त सरिता के साथ।

अभी आपने सुनी अहमद और मोहम्मद हुसैन की खूबसूरत आवाज़ में ये गज़ल। लीजिए अगली पेशकश है शंकर एहसान लॉय की आवाज़ में और साथ ही साथ एक और गीत पेश किया जाएगा जगजीत सिंह जी की आवाज़ में। तो आनंद लीजिए बैक टू बैक खूबसूरत गीतों का, गजलों का।

दोस्तों आप आनंद ले रहे हैं गीत और गजलों के कार्यक्रम का। लीजिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगली पेशकश सुभाष आनंद की आवाज़ में। और इसी के साथ गीत गजल कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी दोस्त सरिता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल, यह आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः 4 बजने को है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म, जी हाँ, ये वक्त है कार्यक्रम नादब्रह्म का। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री सुधा रघुरमन का रागम कंबोजी में गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 मई 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन के बारे में। प्रातः 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति गीत का। भारतीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30। आप भक्ति संगीत का आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम वंदना सुनकर। प्रातः 6:10 का वक्त रहेगा वंदना कार्यक्रम का। प्रातः 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों पर। प्रातः 6:45 का वक्त रहेगा श्री रामचरित मानस से पाठ का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 46।

संगीतिका, इस कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं प्रातः 7:10 पर। 7:30 से लेकर 8 बजे तक आप आनंद लेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। प्रातः 8:45 स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है। आज आप सुनेंगे विश्वजीत रॉय चौधरी का सरोद वादन। 9:15 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान पत्रिका। मिट्टी दी महक का वक्त रहेगा प्रातः 9:30 आपकी फरमाइश का 10:10 और सब रस का वक्त रहेगा प्रातः 11:10। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दलों को एक सीट मिली। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जाकुलबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उनकी निर्णायक वापसी का संकेत है, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि डीएमके ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं, आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन के बारे में।
1: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ

0: हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। ये करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए, पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद पद्मासन लग चुका है, अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। बद्ध पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।
2: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं।

0: अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, लीजिए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 होने को है। ये वक्त है कार्यक्रम स्वर रंजनी का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर